एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58:40 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा, वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अतुलित बलधामम हेम शैलावतेहम तनुजवन कृशानुम ज्ञान नाम अगगण्यम सकल कुंडधानम वानराणावधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामी।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही

0: इनमें से एक के भी अभाव में धर्म धर्म न होकर अधर्म हो जाता है। अहिंसा अथवा जीव दया अनेक प्रकार के सुखों को देने वाली मानी गई है। संसार में सभी प्रकार के प्राणी हैं, छोटे बड़े, शिष्ट अशिष्ट, शिक्षित अशिक्षित, पुरुष स्त्री और पशु पक्षी भी। सभी की रक्षा करो, किसी को दुख मत दो। कारण, सभी सुख चाहते हैं, दुख नहीं। दुख से सभी दूर भागते हैं और सुख का सानिध्य सर्वथा चाहते हैं। अतः सुख के इच्छुकों का कर्तव्य है कि किसी को भी दुख नहीं दें। अहिंसा धर्म या जीव दया धर्म के पालन से जीवात्मा को अद्वितीय सुख होता है। अब्राहम लिंकन ने कीचड़ में फंसे हुए सुअर को बाहर निकालकर अपूर्व आनंद पाया था। सभी प्राणी जीने की इच्छा करते हैं, मरने की नहीं। जब दुखी भी मरना नहीं चाहते हैं, तब सुखी क्यों मरने के लिए सन्नद्ध होने लगे? आयु जीवन सभी को प्रिय है और अनायु मृत्यु सभी को अप्रिय है। भगवान महावीर का जियो और जीने दो संदेश ही सार मत है। धर्म के नाम पर हिंसा का समर्थन अन्याय और अत्याचार है। हिंसा मूलक क्रियाएं सर्वत्र दुखद ही हैं। इसलिए हिंसा से बचें, अहिंसा को अपनाएं। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तब किसी के जीवन को लेने का भी हमें क्या अधिकार है? ये बात मांसाहारी, शिकारी, धर्मांध व्यक्ति, भूले भटके भी कभी विचारते नहीं हैं। अपने तुच्छतम स्वार्थ के लिए वे चाहे जिसके प्राण ले लेते हैं। जैसे सुख सुविधा पूर्वक जीने का हमें अधिकार है, वैसे ही अन्य प्राणियों को भी जीने का अधिकार है। महात्मा कबीरदास के शब्दों में, जब कीड़ी और कुंजर दोनों को ही साईं ने बनाया है, तब हमें क्या अधिकार है कि हम उनको अनदेखा करके उनका अस्तित्व ही मिटा दें? भगवान महावीर ने समयम गोयमा पमाए, अर्थात हे गौतम, एक क्षण भी प्रमाद मत कर, बल्कि भावना कर कि एक क्षण भी मेरा संयम के बिना नहीं बीते। जितने भी मुमुक्षु अथवा मोक्षगामी हुए, उन्होंने अहिंसा के प्रथम साधन संयम का आश्रय अंगीकार किया। संयम के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना संयम नहीं। सांस चलने का नाम जीवन नहीं है, बल्कि जीवन तो संयम को स्वीकारने का नाम है और औरों की सांस चलते रहने देने का नाम है। जो जितना शारीरिक, मानसिक और वाचनिक संयमी होगा, वो उतना ही सुख के समीप होगा और दुख से दूराती दूर होगा। संयम सदृश स्व पर उपकारक अहिंसा का दूसरा अमोघ साधन तप है। जैसे अग्नि में तप कर स्वर्ण कीट कालिमा रहित होता है, वैसे ही आत्मा भी तपस्या के द्वारा बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनता है। तपस्या की अग्नि में जब आत्मा कर्मों की समिधा डालता है, तब एक दिन वो निष्काम निष्कर्म जीवन मुक्त अहर्त बन जाता है। इच्छाओं के विरोध का नाम तप है। पृथ्वी का पुरुष, पृथ्वी के पशु पक्षियों, नरक के नारकियों, स्वर्ग के देव देवताओं से सिर्फ इसलिए ही बड़ा है कि वो संयम को स्वीकार कर जी भर कर तप करके परमात्मा पद को पा सकता है। मनुष्य योनि के सिवाय अन्य योनियों में अहिंसा, संयम और तप स्वीकार कर पाना संभव नहीं। अन्यत्र बोध विवेक उतना नहीं, क्षमता सामर्थ्य और सुविधा भी इतनी नहीं। हम चाहते हैं कि जीवात्मा कर्मों के फेर में पड़कर फुटबॉल वॉलीबॉल न बना रहे, चार गतियों के चक्रव्यूह से निकल सके, तो अहिंसा और संयम के साथ तप को भी स्वीकारे।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विचार धर्म के तीन अंग, आलेख कृष्णचंद्र जैन और वाचन स्वर था राखी कटारा का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस कांड।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना लता मंगेशकर, लक्ष्मी शंकर, रविंदर, हरिओम शरण और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: धर्म के तीन अंग हैं, अहिंसा, संयम

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थीं, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। ये सुनकर कैकेयी के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

रितमानस खान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग जिसे स्वरों में परोया था ए हरिहरन और साथियों ने एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

से कुछ देर बाद यानी 6:50 पर हमारे श्रोता कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे। विषय रहेगा शंकर का शाक भाजी उगाए और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। 6:55 प्राप्त सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 7 बजे हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का और 7:18 प्राप्त सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से। का 31 मिनट पर कार्यक्रम का समय रहेगा, कार्यक्रम होगा ब्रज माधुरी। कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे। आज का प्रसंग रहेगा श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन। आलेख गोविंद शर्मा का और प्रस्तुति होगी RK त्रिपाठी की। बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ फिल्मी नगमे। 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। बाल साहित्य में पद कथा के शक्त हस्ताक्षर डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। आलेख डॉक्टर दिनेश पाठक शशि का होगा और वाचन स्वर होगा राजेश कुमार शर्मा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे OP सिंह। नमस्कार 15 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबोहवा। 9:30 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम में बातचीत शल्य क्रिया में लेजर तकनीक का प्रयोग। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विजेंद्र तिवारी और आपसे भेंट करेंगे OP सिंह। साथ ही 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 11 बजे का समय रहेगा फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का। 12 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। 12:30 पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम का। आज कलाकार होंगे भगवान दास अज्ञानी, आप प्रस्तुत करेंगे रांझा गायन। साथ ही 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा कार्यक्रम वनिता लोक। आज की चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और डिजिटल फ्रॉड से महिलाओं की सुरक्षा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कहानी पछतावा पूर्णिमा। 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, अपने देश में जहां पर की अधिकतर जनता शाकाहारी है, वहां तो सब्जियों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इतना होते हुए भी हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में सब्जियों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत कम है। ऐसे में देश की उत्पादकता को देखते हुए संकर साग भाजी उत्पादन ही एकमात्र विकल्प बचता है, जिसको लगा कर के हम करीब 25 से 40% तक अधिक पैदावार ले सकते हैं।

0: बल्कि उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता होने से बाजार में अधिक मूल्य भी मिलता है, जिससे कि 40 से 50 प्रतिशत अधिक आय अर्जित होती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि संकर साग भाजी उत्पादन प्राप्त करने के लिए स्वस्थ बीज, समुचित मात्रा में खाद पानी, आवश्यक कर्षण क्रियाएं समय पर और तरीके से की जाएं, जिससे कि उत्पादन से अधिक लिया जा सके। चूंकि संकर का बीज मूल्य अधिक होता है, इसलिए इसकी फसल को उगाने के लिए अत्यधिक सावधानी और कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ती हुई बाजार मांग, उपयोगिता की रुचि इसमें अधिक होने लगी है, इसलिए संकर साग भाजी उत्पादन से अवश्य ही कृषकों को अधिक आय अर्जित होगी। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं सब्जियों के क्षेत्र में कई हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले जो फसलें हैं और उनमें बीज की क्या मांग है और उर्वरक में उनको कितना देना है, इसके बारे में आप जान लें। सबसे पहले टमाटर को लेते हैं। इसकी रोपाई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है और बीज की मात्रा इसमें 120 से 150 ग्राम लगती है एक हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए, और उस पौध से आप एक हेक्टेयर की रोपाई कर सकते हैं। नत्रजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 150 किलोग्राम, पोटास 100 किलोग्राम लगता है, और जो सड़ी गोबर की खाद है वो 25 टन प्रति हेक्टेयर देनी पड़ती है, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। बैंगन को अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, जिसमें 200 से 250 ग्राम बीज की नर्सरी एक हेक्टेयर की रोपाई के लिए पर्याप्त रहती है। इसमें भी टमाटर की तरह ही 200 किलोग्राम नत्रजन, 150 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर जरूरत पड़ती है, और 25 टन खाद को रोपाई से पहले ही खेत में दे दिया जाता है, और इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। मिर्च की रोपाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है, 200 ग्राम बीज इसमें लगता है, और इसमें भी खाद और उर्वरक उतना ही टमाटर बैंगन की तरह, और इसमें जो आपसी दूरी है वो 75 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। प्याज जो किस्म है, इसको नवंबर दिसंबर में रोपा जाता है, 4 किलोग्राम इसका बीज लगता है संकर बीज, और 150 किलोग्राम नत्रजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 150 किलोग्राम पोटास इसमें दिया जाता है, 20 टन सड़ी गोबर की खाद, और इसमें 15x10 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों को लगाते हैं। फूलगोभी सितंबर अक्टूबर में रोपाई की जाती है, 300 ग्राम बीज लगता है, 150 किलोग्राम नत्रजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास की जरूरत पड़ती है, और इसमें 20 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर खाद की जरूरत पड़ती है, और 45x45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों की रोपाई की जाती है। पत्ता गोभी को दिसंबर फरवरी में इसकी रोपाई करते हैं, 300 से 350 ग्राम बीज लगता है, 150 किलोग्राम नत्रजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास देना होता है, और इसमें 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद रोपाई से काफी पहले दे दी जाती है, और 60x30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों को रोपा जाता है।
1: अभी आप कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विषय था शंकर साग भाजी उगाए और वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

और आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का ये पहला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म चितचोर से। स्वर है यश उदास का।

समय आप आनंद ले रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत का आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म महबूबा में, और आइए सुनते हैं शैलेंद्र सिंह, लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम है चलते चलते।

शैलेंद्र सिंह, लता मंगेशकर और साथियों के गाए फिल्म चलते चलते के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में, राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने की तैयारी। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने लखनऊ में बैठक कर विस्तार से चर्चा की। बागपत में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश।

0: और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। एक रिपोर्ट।
1: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पीलीभीत में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से शारदा और देवहा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पूरनपुर, सदर, कलीनगर और बीसलपुर तहसील क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ट्रांस शारदा क्षेत्र में फसलें और संपर्क मार्ग डूबे हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बस सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर कल लखनऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में यूपी रोडवेज और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बीच बस सेवाओं के विस्तार और नए मार्गों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच पहले से संचालित 25 मार्गों के अलावा बिहार ने 14 नए मार्गों पर परिवहन की बसों के संचालन का प्रस्ताव दिया है।
2: 25 रूटे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के पहले से संचालित था और उसका एक्सटेंशन करने का बात थी 10 साल के लिए, और 14 नए रूट बिहार की तरफ से प्रस्तावित किया गया है। कुछ उसमें हम लोगों ने और भी अतिरिक्त रूट बढ़ाने के लिए कहा है। प्रतिदिन जो है लाखों लोग बिहार से उत्तर प्रदेश आते हैं, लाखों लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में जाते हैं, तो सबके आवागमन की सुविधा रखना हम सबका दायित्व है। इस पर हम सब लोगों ने एक एक बिंदुओं पर निर्णय किया है।
0: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि केंद्र सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए सरकार ने यह पाबंदी हटाई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल वाराणसी से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रीय पोषण माह का इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। बागपत में रविवार की मध्यरात्रि के बाद हुए एक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। यह हादसा जिले के खेकड़ा थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा गांव टोल के पास तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कैंटर ने श्रद्धालुओं से भरे वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सवारी वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। एडीजी मेरठ भानु भास्कर ने बताया कि हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया।
3: बहुत ही दुखद है और मृतकों एवं घायलों के परिवार के साथ परिजनों के साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम की लगातार बातचीत चल है। ये सभी लोग मूलतः जो है बदायूं जनपद के थे। वो राजस्थान में पूजा अर्चना के लिए 2 सितंबर को गए थे। 5 दिन बाद पूजा अर्चना पूरी करके वापस आ रहे थे तभी दुर्घटना हुई है। बदायूं प्रशासन बदायूं पुलिस जो है लगातार इनसे संपर्क में है और जितनी सुविधा मुहैया हो सकती है वो कराई जा रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को

0: 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में भी मुड़िया धुरे की गांव के पास कल देर शाम एक रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में लखनऊ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों में पहला स्थान मिला है। स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। इसके लिए 1,50,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। एक रिपोर्ट।
1: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी 1 में उत्तर प्रदेश के 6 शहरों ने स्थान बनाया। इनमें लखनऊ ने देश में पहला, आगरा ने चौथा, गाजियाबाद ने 9वां, कानपुर ने 11वां, प्रयागराज ने 13वां और मेरठ ने 22वां स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की वार्ड लेवल रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कैटेगरी 1 में राजधानी लखनऊ के वार्ड 70 ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं कैटेगरी 2 में प्रयागराज के वार्ड 31 ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में झांसी, मुरादाबाद और नोएडा टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: लखनऊ में केरल के प्रमुख मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रेस सूचना ब्यूरो के अधिकारियों के साथ अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन RDSO का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एयर ब्रेक, फटीक टेस्टिंग तथा धातु एवं रसायन प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर अत्याधुनिक रेलवे प्रौद्योगिकियों और परीक्षण सुविधाओं की जानकारी ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसके निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज किया है। बेंगलुरु में कल उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
2: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और MCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अनुक्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने की तैयारी। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने लखनऊ में बैठक कर विस्तार से चर्चा की। बागपत में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा, भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना

0: करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वंदे ब्रज वसुंधरा, ब्रज की या पावन धरा को नमन करें, वंदन करें। आज आपको सुनवा में गोविंद शर्मा के लिखो यह रूपक ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे। प्रसंग है राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन को। प्रस्तुत करता है आर के त्रिपाठी।

ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे क्रम के अंतर्गत आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र द्वारा तैयार रूपक सुनिए श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन। आलेख प्रोफेसर गोविंद शर्मा का है, संयोजक हैं श्री कृष्ण शरद और प्रस्तुतकर्ता श्री राम किशोर त्रिपाठी।

0: जानती हो प्रिय श्यामा के सौंदर्य और प्रियतम श्याम के प्रेम के सम्मिलित स्वरूप ये श्री राधा वल्लभ लाल कौन है?
1: जानती हूँ, ये हैं भक्ति काल के सुप्रसिद्ध आचार्य महाप्रभु हित हरिवंश गोस्वामी के उपास्य ठाकुर राधा वल्लभ लाल, जो वृंदावन में विराजमान हैं
0: और जिनके नाम से एक पृथक संप्रदाय श्री राधा वल्लभ संप्रदाय अस्तित्व में आया।
1: वैसे तो प्राय सभी संप्रदाय एवं मत अपने संस्थापक आचार्य गुरु के नाम से ही प्रसिद्ध हैं, जैसे निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, कबीर पंथ, नानक पंथ आदि। किंतु ये एक ऐसा संप्रदाय है जो अपने आराध्य के नाम से विख्यात है।
0: श्री हित हरिवंश गोस्वामी अपने समय के बड़े चमत्कारी महापुरुष थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की विलक्षणताएं शैशव काल से ही प्रकट होने लगी थीं। उनका जन्म भी ब्रज में मथुरा के निकट बाद नामक गांव में हुआ था। तब उनके पिता राजज्योतिषी पंडित व्यास मिश्र अपनी धर्मपत्नी श्रीमती तारा रानी के साथ ब्रज यात्रा कर रहे थे।
1: श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के श्रेष्ठ सिद्धांतकार श्री दामोदर दास सेवक जी ने अपनी वाणी में इसका उल्लेख किया है। मथुरा मंडल भूमि आपने जहां बाद प्रकटे जग धनी, शुभ वत्सर शुभ रिच विचार, माधव मास ग्यास उजियार, तारा जननी जनक ऋषि व्यास, व्यास मिश्र को लाड़िलो।
0: वैशाख मास का शुक्ल पक्ष था और पावन तिथि एकादशी मदरितु के माधव मास में अवतरित होने के कारण ही श्री हरिवंश का व्यक्तित्व और कृतित्व सभी विमोहक और आकर्षक थे।
1: पंडित व्यास मिश्र सहारनपुर जनपद के देवबंद नगर में रहते थे। हरिवंश का शैशव और यौवन वहीं व्यतीत हुआ था। बचपन से ही उनके चमत्कार दृष्टिगोचर होने लगे थे। कहा जाता है कि केवल 6 महीने की आयु में ही उन्होंने अपने काव्य श्री राधा रस सुधा निधि के श्लोकों की रचना कर ली थी।
0: बालकपन में ही उन्हें श्री राधा रानी ने अपने नाम के मंत्र की दीक्षा दे दी थी और हित उपनाम भी। 7 वर्ष के हित हरिवंश खेलते खेलते कुएं में कूदकर वहां से एक कृष्ण मूर्ति निकाल लाए, जिसका नाम रंगीलाल रखकर उन्होंने अपनी विशिष्ट पद्धति की सेवा उपासना आरंभ की।
1: इस प्रकार तो श्री राधा वल्लभ लाल उनके दूसरे सेव्य हैं।
0: हाँ, अपनी इष्ट और गुरु श्री राधा के स्वप्नादेश से श्री हरिवंश 32 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देववन से वृंदावन को चल दिए। उनके मार्ग में पड़ने वाले चिरथावल नामक गांव के एक ब्राह्मण को भी श्री राधा ने सपने में आज्ञा दी कि वो अपनी 2 कन्याओं का विवाह श्री हरिवंश से करके अपने सेव्य विग्रह श्री राधा वल्लभ को भी समर्पित कर दे।
1: इसकी चर्चा भक्तमाल की भक्ति रस बोधिनी टीका में श्री प्रियादास जी ने कुछ भिन्न रूप से की है। वे लिखते हैं, आए गृह त्याग राग बाड़ियो प्रिया प्रीतम को, विप्र बड़ भागी हरि आज्ञा दई जानिए, तेरी उभय सुता व्याही देव लेउ मेरो नाम, इनको जो वंश सो प्रसंस जग जानिए।
0: अपनी दोनों नव दुल्हनों और श्री राधा वल्लभ लाल के विग्रह को लेकर श्री हित हरिवंश संवत 1591 में वृंदावन पधारे। तत्काल मंदिर की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल को लता कुंज या पर्ण कुटीर में विराजमान कराया होगा। महाकवि चाचा वृंदावन दास ने यही कहा है, ब्रजवासिन मिल आदर करियो, प्रभु डोला रवि जा तट धरियो, लता भवन में प्रभु पधराए, अनुरागी सब दर्शन आए।
1: अब तो वे पाषाण निर्मित एक सुंदर मंदिर में विराजमान हैं।
0: हाँ, परंतु कहा जा सकता है कि ये उनका 5वां या 6ठा मंदिर है।
1: सो कैसे?
0: श्री हित हरिवंश जी के वृंदावन आगमन के समय नरवाहन नामक एक दस्युराज का ब्रज में आतंक था। ब्रजवासी उसे अपना शासक और उसकी आज्ञा को बादशाह के हुक्म से अधिक मानते थे।
1: किंतु वो श्री हित जी के मधुर व्यक्तित्व और उपदेशों से प्रभावित होकर उनका शिष्य सेवक बन गया।
0: श्री हित महाप्रभु के आवास गृह के एक भाग में श्री राधा वल्लभ

0: का मंदिर था। इसमें उन्हें प्रतिष्ठित कर संवत 1591 की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को पाटोत्सव किया गया।
1: तब तो सुंदरदास कायस्थ का बनवाया लाल पत्थर का कलात्मक मंदिर श्री राधा वल्लभ का दूसरा मंदिर था।
0: हाँ, यदि नता भवन या प्रण कुटीर के मंदिर को मंदिर न माने तो। वैसे सामान्य रूप से ठाकुर जी के विराजने के भवन को मंदिर ही कहा जाता है, किंतु वास्तुशास्त्र और स्थापत्य की दृष्टि से मंदिर की एक विशिष्ट रचना शैली होती है।
1: सुंदरदास कायस्थ का परिचय क्या है?
0: अकबरी दरबार के नवरत्नों में अब्दुल रहीम खान खाना का नाम तो प्राय सभी जानते हैं। वे हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं में काव्य रचना भी किया करते थे। उनके नीति विषयक दोहे ब्रजभाषा के श्रेष्ठ नीति साहित्य की निधि हैं।
1: नीति कवि होने के साथ वे श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे। उनका एक दोहा मुझे याद आ रहा है, ते रहीम मन आप नो कीनो चारु चकोर, निसवासर लाग्यो रहे कृष्ण चंद्र की ओर।
0: खानखाना अब्दुल रहीम बड़े उदार विचारों के सच्चे मुसलमान और नेक इंसान थे। उनके दीवान थे सुंदरदास कायस्थ, जो दिल्ली के प्रतिष्ठित नागरिक भी थे। वे श्री हित हरिवंश महाप्रभु के कनिष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ गोस्वामी के शिष्य थे।
1: श्री हित महाप्रभु के नित्य निकुंज में पधार जाने के पश्चात तो उनके सबसे बड़े पुत्र श्री वनचंद्र गोस्वामी उनकी गद्दी पर विराजमान होकर श्री राधा वल्लभ जी के प्रधान सेवाधिकारी बने थे।
0: अपने पूज्य पिताश्री की भांति श्री वनचंद्र गोस्वामी जी भी बड़े प्रतापी और प्रभावशाली थे। उनके सहस्त्रों शिष्य थे। वैसे तो गोस्वामी जी वृंदावन से बाहर जाते नहीं थे, किंतु कभी कभी प्रेमी शिष्यों का आग्रह उन्हें बाहर जाने को विवश कर देता था। ऐसे ही एक शिष्य के विशेष अनुरोध पर वे दिल्ली पधारे। वहां उनके अनुज श्री गोपीनाथ जी के शिष्य सुंदरदास कायस्थ ने उन्हें अपने आवास पर आमंत्रित कर पदरावनी की थी।
2: आपके श्री चरणन में सेवक की जो तुच्छ भेंट है, यह स्वीकार करवे की कृपा करें प्रभु।
3: जी जी, कहा है सुंदरदास जी?
2: महाप्रभु, ये 1,00,000 रुपयान की थैली है।
3: अरे, इतने धन को हमें कहाँ प्रयोजन है भैया?
2: जय जय महाप्रभु, ये श्री राधा बल्लभ लाल की सेवा को है। जैसे आप निश्चिंत है कि श्री श्री जी की सेवा को और श्री वृंदावन वास करें, व्यवस्थावश आपको श्री धाम से बाहर ना जाना पड़े। जब भी कमी होएगी जे दास और भेज तो रहेगा।
3: सुंदर दास भैया, महज जनन को जे कथन सत्य है कि धन और प्रभुता पे मति मंद है जाए है भैया।
2: जय जय महाप्रभु, दास से कोई अपराध है को का?
3: आप समझ रहे हो सुंदर दास कि हम धन संग्रह हेतु श्री धाम त्याग के बाहर भ्रमते रहे हैं। अरे, भक्तन को प्रेमाग्रह ही हमें जाके ताई विवश करे है भैया। हमारे प्रभु रामकृष्ण भक्तन के आग्रह पे बिनके घर में पधारते हैं। श्री जी की सेवा हेतु कोई कमी ना है भैया। तुम धर रखो अपने धन को, हम तो अब छड़वर में यहां ना रहेंगे।
2: अरे, मेरी बुद्धि को का है गो, होम करते हाथ जल गए। जय जय महाप्रभु रुष्ट है के चले गए। वे जब तक प्रसन्न ना होंगे मैं अन्न ग्रहण ना करूंगा।
0: इस प्रकार सुंदरदास के अन्न त्याग कर केवल दूध पर रहने का समाचार जब श्री गोपीनाथ गोस्वामी को मिला तो उन्होंने अपने शिष्य को वृंदावन बुलवाया और उसे लेकर अपने अग्रज श्री वनचंद्र गोस्वामी जी की सेवा में पहुंचे। गोस्वामी वनचंद्र जी बड़ी प्रीति पूर्वक सुंदरदास से मिले।
3: आओ सुंदरदास, श्री जी की कृपा से सब कुशल तो है?
2: जय जय महाप्रभु, गुरुदेव की कृपा बिन कुशल कहाँ। हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर।
4: सुंदर दास ने जो धन आपके श्री चरण में समर्पित कियो है आप बाकू स्वीकार करके श्री जी की सेवा में लगाएंगे तभी ये अन्न ग्रहण करेंगे।
3: ना ना भैया, हमें लेना हो तो छोड़ के चो आमते हम।
2: जय जय महाप्रभु, दास तो वह धन को संकल्प श्री राधा बल्लभ लाल की सेवा हेतु कर चुको है। आप अन्य भाती की सेवा में नाय लेना चाहो तो वाते मंदिर बनवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा के पश्चात मैं ठाकुर जी के वर्ष भर के उत्सवन को दर्शन तथा आनंद प्राप्त करूं, ये वरदान मोहे दो।
3: ठीक है भक्तवर।
1: भक्त सुंदरदास ने मंदिर बनवाना

0: आरंभ कर दिया।
1: हाँ, सो भी बड़े प्रेम और उत्साह से। अब व्यय की सीमा केवल 1 लाख ही नहीं रही, वह मुक्त हस्त होकर खर्च करने लगे। दुर्लभ लाल पत्थर मंगाया गया जो बादशाह की विशेष आज्ञा से मिलता था।
0: वृंदावन में सैकड़ों साल बाद बनने वाला ये पहला विशाल और भव्य देवालय था। अन्य मंदिर तो इसके बाद बने हैं।
1: हाँ, संवत 1641 में यह बनकर पूरा हुआ। बीच में विघ्न भी आई।
0: कैसे विघ्न? सुंदरदास ठीक तो रहे?
1: वे तो ठीक रहे, परंतु संसार में विघ्न संतोषी खलों की कोई कमी तो नहीं। जे बिन काज दाहिने बाएं, कुछ चुगलखोरों ने खान खाना से चुगली कर दी कि आपका दीवान सुंदरदास कायस्थ आपके खजाने से धन चुरा कर वृंदावन में बहा रहा है।
0: खान खाना पर इसका कोई प्रभाव पड़ा क्या?
1: हाँ पड़ा, खान खाना तो खान खाना ही था। सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और सुंदरदास को पत्र लिखा कि तुम मेरे दीवान हो तो मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल ही मंदिर बनवाना, जितने धन की आवश्यकता हो खजाने से मंगा लेना।
0: वाह, इसे कहते हैं उदारता और संभाव। मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ
1: तो सुंदरदास ने श्री राधा बल्लभ लाल की प्रतिष्ठा पर कथा कीर्तन प्रसाद साधु वैष्णव भोजन का वृहद आयोजन किया
0: और 1 वर्ष तक वृंदावन वास करके साल भर के उत्सवों के दर्शन का आनंद प्राप्त किया।
1: श्री वनचंद्र गोस्वामी ने उन्हें मंदिर के सामने ही निवास स्थान दे दिया था। वहां रहकर सुंदरदास ने सभी वर्षोत्सव देखकर आनंद सहित निकुंज गमन किया। श्री वनचंद्र जी की आज्ञा से मंदिर के बाहरी प्रवेश द्वार के सामने उनकी समाधि बना दी गई।
0: ऐसे सुंदर प्रथम वृंदावनी मंदिर और सुंदर समाधि के दर्शन तो वहाँ चलकर करने चाहिए।
1: पर अब वे सब कहाँ रहे हैं? खंडहर ही बताएंगे कि इमारत बुलंद थी।
0: वृंदावन दिल्ली के निकट मथुरा जनपद में ही है।
1: दिल्ली आगरा मार्ग पर दिल्ली से केवल 147 किलोमीटर दूर और मथुरा से 15 किलोमीटर यमुना के दाहिने तट पर स्थित है वृंदावन।
0: वहाँ ठहरने और भोजन की तो समुचित सुविधा है ना?
1: जहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यात्री जाते हों, वहाँ भला क्या कमी हो सकती है? अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृहों से लेकर अनेक आश्रमों एवं धर्मशालाओं और रेल मोटर टैक्सी आदि यातायात की सुविधाओं से भरपूर है वृंदावन। मथुरा में भी सारी सुविधाएं हैं, वहाँ भी रहा जा सकता है। अपने मित्र प्रोफेसर शर्मा वहाँ हैं, वे सहायता करेंगे।

0: ये कौन सा स्थान है?
1: ये सामने राधा वल्लभ घेरा है। प्रवेश द्वार से भीतर चलने पर सामने ही श्री राधा वल्लभ जी के नए पुराने दोनों मंदिर है। आओ देखें और दर्शन भी करें।
2: ये सामने ही है पुराना मंदिर, लाल पत्थर का, दो मंजिल का। सामने का द्वार गौरव आदि तो ठीक हालत में है।
1: हाँ।
2: अकबर कालीन अन्य मंदिरों जैसा ही स्थापत्य है।
1: पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इमारतों में है। कुछ दिन पूर्व इसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार किया गया है। ध्वंस से पहले ये काफी सुंदर रहा होगा। मथुरा एक डिस्ट्रिक्ट मेमोयर के लेखक F.S. ग्राउस ने इसे अकबर काल में वृंदावन में निर्मित मंदिरों की श्रृंखला में अंतिम और अति सुंदर बताया है। समझे ना? पूर्वाभिमुख मंदिर का बाह्य द्वार 34 फुट चौड़ा है, जो 3 मंजिल में है। पहली और तीसरी हिंदू स्थापत्य तथा बीच की मुस्लिम स्थापत्य का सुंदर नमूना है। देखिए, है ना?
3: बिल्कुल, बहुत सुंदर है ये।
1: भीतर लदाब वाला विस्तृत कक्ष है, जो 63 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा है। उधर उत्तर और दक्षिण की ओर बने निचली मंजिल के वातायनों के चारों ओर हिंदू कला की और ऊपर मुस्लिम मेहराबदार कला की नक्काशी है। नीचे की मंजिल में स्तंभों से रचित 3 मध्यवर्ती मार्गों में 2 के ऊपर जीने बने हैं, और जो ऊपरी मंजिल तक है
2: जी।
1: मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणी रहा होगा। ये मंदिर उस काल के समन्वयशील स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण था।
3: बिल्कुल सही शर्मा जी, आप शेष तो यही बता रहे हैं। मुगल और हिंदू स्थापत्य कला का सुंदर मिश्रण है।

0: शिखर और गर्भगृह का पिछला भाग तोड़ दिया गया है।
1: बादशाह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति से व्रज के अनेक मंदिरों का ध्वंस किया गया। संवत 1726 में उसने एक फरमान जारी कर व्रज के मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया था। उनमें एक ये भी था।
2: तो फिर उस समय श्री राधा वल्लभ जी कहाँ रहे?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। संवत 1726-27 में श्री राधा वल्लभ जी को व्रज के कामवन में ले जाया गया और संवत 1841 तक वे वहां एक मंदिर में विराजमान रहे। फिर कामा में उसे आज भी राधा वल्लभ जी का मंदिर कहा जाता है।
0: अच्छा। फिर उनको वृंदावन कब लाया गया?
1: संवत 1841 के जेठ मास में कामा में मुसलमानों का उत्पात हुआ, जिसके फलस्वरूप आसोज के महीने में उन्हें फिर वृंदावन ले आया गया।
2: अच्छा, तभी से वे इस नए मंदिर में विराजमान हैं। क्या ये पुराने मंदिर से लगा ही हुआ है?
1: जी, उस समय यह नया मंदिर बन रहा था, जो एक साल बाद संवत 1842 में पूर्ण हुआ। हितचंद्र प्रकाश नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख है। लल्लू गुजराती हित आयो, श्रीजी मंदिर सरस बनायो, संवत 1842-40 बरस हिजान, श्री राधा वल्लभ लाल को मंदिर थरप्योवान।
2: अच्छा, ये बताइए कि ये लल्लू गुजराती कौन थे?
1: लल्लू भाई गुजरात के भड़ोच नामक नगर के निवासी दयालदास के सुपुत्र थे। वे राधा वल्लभी गोस्वामी घनश्याम लाल जी के शिष्य थे और श्री राधा वल्लभ जी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी।
0: अच्छा शर्मा जी, ये बताएं कि कामवन से लौटने के बाद इस मंदिर की पूर्ति तक ठाकुर जी कहां विराजमान रहे?
1: राधा वल्लभी गोस्वामी श्री हित रूप लाल जी कृपा पात्र रूप राम कटारे ने अपने निवास के लिए एक विशाल हवेली बनवाई थी, जो घेरे के ठीक सामने है, तो वो उधर। श्री राधा वल्लभ जी एक बरस तक उसी में विराजमान रहे। संवत 1842 के कार्तिक मास में वे वर्तमान नए मंदिर में प्रतिष्ठित किए गए। आइए चलें, इसमें चलते हैं।
0: चलिए।
2: पत्थरों से बना ये दो मंजिल वाला मंदिर भी कितना सुंदर और विशाल है।
1: हाँ, ये हवेली के रूप में बनवाया गया है। जगमोहन और प्रशस्त आंगन, छज्जे तथा दालान है। ब्रज के प्राय सभी पर्वतीय देवालय इसी शैली के हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: अभी ठाकुर जी का पर्दा लगाया है, जो थोड़ी देर में खुलेगा।
2: अच्छा।
1: वृंदावन में लोकोक्ति प्रसिद्ध है, राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ।
0: ऐसा क्यों? क्या इसका कोई कारण है?
1: हाँ, इसका भी कारण है। वृंदावन के रसोपासक संप्रदायों में इसे अपने सेव्य की सेवा कहा जाता है। प्रेम से जो लाड भरी परिचर्या की जाती है ना, उसे पूजा न कहकर सेवा कहते हैं।
2: अच्छा।
1: श्री हित महाप्रभु ने 5 आरती और 7 भोगों की अष्टयाम सेवा प्रारंभ की थी, इसी कारण बार बार पर्दा और पट बंद रहते हैं। ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार आदि भी इसी भांति कराया जाता है। आइए अब मिलते हैं मंदिर के सेवायत अधिकारी श्री राधेश लाल गोस्वामी जी से।
3: अब आपको हम संक्षेप में बताएंगे मंगला से लेकर शयन तक का वर्णन। सबसे पहले मंगला 6:30 बजे हो रही है आजकल, तो भगवान के भोग लगेंगे। मंगला आरती से पहले माखन मिश्री मलाई इत्यादि ये कंपलसरी है, प्लस में चाय जितना भी 56 भोग लगाइए। ये माखन मिश्री और मलाई इत्यादि तो होना आज भी लगता है और सदा से लगता आया है। इसके बाद में प्रभु की मंगला आरती होगी। मंगला के बाद में भगवान जाएंगे वन विहार की लीला करने के लिए। वन विहार के बाद में फिर स्नान कुंज में आएंगे। स्नान में फिर पहले प्रिया जी के स्नान होंगे। हर कार्यक्रम पहले प्रिया जी का शुरू हो जाएगा, लाल जी का बाद में हो जाएगा। तो प्रिया जी के स्नान के बाद में लाल जी के स्नान होंगे, फिर उनको धूप दीप दिखाए जाएंगे, धूप आरती को बोलते होंगे। धूप आरती के बाद में फिर आएंगे श्रृंगार आरती। श्रृंगार आरती से पहले पटबंद हो जाएंगे, यहाँ चांदी के पटबंद हो जाते होंगे। फिर उसमें श्रृंगार भोग लगता है। श्रृंगार भोग में पकवान होते हैं, लड्डू मछली बालू चाही मछली इत्यादि इस तरह की जो पकी हुई तली चीज है वो भोग लगेंगी। उसके बाद में फिर दर्शन खुले रहेंगे लगातार 11:30-12 बजे तक। 12 बजे तक जो है राजभोग आएंगे। राजभोग में प्रभु के जो है वस्त्र आभूषण जितने भी श्रृंगार के थे।

ये सब उतर जाएंगे, बहुत हल्का श्रृंगार रह जाएगा, पटका अटका जितना भी बंधन है वो सब बंधन खुल जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। उसके बाद में फिर जाएंगे भोग मंदिर में, यहाँ जो विराजमान है यहाँ नहीं रहेंगे, भोग मंदिर भोग कुंज अलग है भोजन कुंज, तो वहाँ पुण्य स्वयं पधारेंगे, वहीं पर दाल भात चावल खीर कड़ी मीठे फुल्का मीठा चावल और मूंग इत्यादि दस बारह बस्ती जो है वो आज

0: कीर्तन क्या यहाँ रोजाना होता है?
1: ये कीर्तन नहीं है, ये समाज गायन है जो प्रतिदिन दोनों समय ठाकुर जी के समक्ष किया जाता है।
0: अच्छा
2: अच्छा शर्मा जी, ये बताएं कि मंदिर में कुछ उत्सव भी तो होते होंगे।
1: हाँ, कुछ क्यों, बहुत कुछ होते हैं।
2: अच्छा
1: अरे भाई, बरस तो वैसे ही सात बार और नौ त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अत्यंत उत्सव प्रिय है। यहाँ प्राय नित्य कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता है, ऋतुओं के भी विशेष उत्सव होते हैं।
2: इसके अलावा कुछ और उत्सव भी तो होते होंगे।
1: हाँ हाँ, अक्षय तृतीया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, दिवाली, होली आदि ऐसे उत्सव हैं जिन्हें निमित्तोत्सव माना जाता है।
2: अच्छा,
1: पाठोत्सव तथा आचार्यों के जन्मोत्सव भी इन्हीं में आते हैं। सांझी का उत्सव तो पूरे पखवाड़े तक चलता है।
0: अच्छा,
1: इस उत्सव में हजारों लाखों श्रद्धालु भक्तजन श्रद्धा भाव से आते हैं।
3: मेरा नाम है रमेश कुशवाहा, नाउ आई लिव इन कैलिफोर्निया साक्रामेंटो, एंड आई एम जस्ट विजिटिंग ओवर हियर बिकॉज महाराज जी गोविंद दास जी इज सिक एंड आई वांटेड टू स्टे विथ हिम फॉर अ व्हाइल, स्पेंड टाइम विथ हिम, एंड दैट्स व्हाई आई केम हियर। Every time, every year, I almost come to Vrindavan to darshan of Radha Vallabh ji.
2: अच्छा शर्मा जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि इन सब के अलावा कुछ ऐसे उत्सव और भी हैं जो आप हमें विशेष रूप में बताना चाहें।
1: राधाष्टमी यहाँ की विशेषता है, खिचड़ी गायन का समाज और ठाकुर जी की विभिन्न झांकियां। किसी दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी श्री बाके बिहारी का रूप धारण करते हैं, तो किसी दिन बलदाऊ जी बन जाते हैं।
2: अच्छा,
1: कभी उन्हें सखी बना दिया जाता है, तो कभी राधा कृष्ण का युगल स्वरूप। फिर खिचड़ी प्रसाद भी अद्भुत होता है जिसमें ऋतु के अनुकूल मेवा, केसर, गरम मसाले डाले जाते हैं। ये एकदम खुश्क होती है, दूर दूर के भक्त इसे प्रसाद रूप में मंगाते हैं।
0: अच्छा,
1: अरे एक विलक्षण उत्सव को तो हम भूल ही गए।
0: वो क्या?
1: जो केवल इसी मंदिर में मनाया जाता है।
0: अच्छा, वो क्या?
2: वो बताएं हमें उसके बारे में।
1: वो मैं बताता हूँ आपको, श्री राधा वल्लभ लाल का ब्यावला।
0: हाँ,
1: सखी भाव के उपासक श्री राधा वल्लभ लाल और राधा रानी को दिन दूल्हे दिन दुल्हन मानते हैं।
4: आपने आनंद लियो ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन को। आलेख हो प्रोफेसर गोविंद शर्मा और प्रस्तुत करता है आर के त्रिपाठी। यही के संग आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास

0: परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के तीन महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे तीन मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू जेएनपीटी से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की तीन रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
4: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं।

0: अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
3: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
5: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों

0: में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, हॉर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satyaniketan area of national capital. And India set to feature in 4 gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And now

0: अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ फिल्मी नगमे। हम लाए हैं फिल्म लैला मजनू से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथी।

किशोर कुमार, मोहम्मद रफीश, मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म अमर अकबर एंथोनी में। और आइए सुनते हैं यश उदास, आशा भोसले और साथियों को। फिल्म का नाम है छोटी सी बात।

0: रफ़ी, आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म नागिन में, और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।
1: दिल में दर्द रहता है।

लता मंगेशकर और मुकेश की गाए फिल्म 10 नंबरी के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता। विषय है बाल साहित्य में पद्य कथा के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। आलेख डॉक्टर दिनेश पाठक शशि का है और वाचन स्वर है राजेश कुमार शर्मा का और प्रस्तुति है OP सिंह की।

लेकिन अगर हम डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो उन पर ये बात लागू नहीं होती। यूं तो दिनकर जी का काव्य विविधता लिए हुए है। राष्ट्रीय चेतना और भारतीय अस्मिता के अमर कवि के रूप में वे विश्व विख्यात हैं। इतना ही नहीं, विषय वैविध्य उनके काव्य की विशेषता है। जीवंत डायरी लेखन के लिए वो आज भी जन मन में मौजूद हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में सन 1908 को जन्मे दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए, जो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। बिहार सरकार में उच्च पदों पर रहते हुए वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर सुशोभित रहे तथा उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी रहे। उनकी लिखी गई 61 पुस्तकों में से उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। वहीं कुरुक्षेत्र के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तथा भारत सरकार सहित अनेक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित दिनकर जी यूं तो भूषण के बाद वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं, किंतु उन्होंने बाल साहित्य भी रचा है। ये बात कुछ लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है। दरअसल उनके बाल साहित्य रूप का मूल्यांकन उस रूप में नहीं हो पाया जिस रूप में होना चाहिए था। कहा जाता है कि जिस भाषा के साहित्य में बाल साहित्य का अभाव हो, उस राष्ट्र एवं भाषा के साहित्यकारों को जागरूक नहीं माना जा सकता, क्योंकि बच्चे ही देश के भावी कर्णधार होते हैं। स्वस्थ बाल साहित्य केवल बच्चों का मनोरंजन ही नहीं करता, अपितु उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और उन्हें एक अच्छा देशभक्त नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होता है। ये बात दिनकर जी अच्छी तरह जानते थे, तभी तो उन्होंने विविध साहित्य रचना के साथ ही बाल साहित्य को भी अपने लेखन में स्थान दिया। आवश्यक नहीं कि प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ साहित्य ही किसी साहित्यकार को प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक बने। उत्कृष्ट साहित्य की अल्प मात्रा भी साहित्यकार को शिखर सम्मान दिला सकती है, उसे अमर कर सकती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में मात्र 3 कहानियां लिखी, जिनमें से मात्र एक कहानी उसने कहा था, इसने उन्हें विश्व प्रसिद्धि दिलाई। उसी तरह दिनकर जी की भी बाल साहित्य की मात्र 3 पुस्तकें ही प्रकाशित हुई हैं, किंतु उसने कहा था की तरह उनकी एक पुस्तक सूरज का ब्याह की एकमात्र रचना चांद का कुर्ता उन्हें हिंदी बाल काव्य के इतिहास में अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। बाल साहित्य से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी ने अपने आलेख में दिनकर जी का उल्लेख करते हुए लिखा है, जिन दिनों सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा हो बसंत और खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी जैसी वीरता और ओज से भरी कविताओं के साथ ये कदम्ब का पेड़ और पानी और धूप सरीखी कविताओं में प्राकृतिक सुषमा उकेर रही थी। उन्हीं दिनों दिनकर की बाल कविताओं ने धूम मचा रखी थी। अगर उनकी कविताओं को छोड़ भी दें तो उनकी सिर्फ एक कविता चांद का कुर्ता ही उन्हें हिंदी बाल कविता के इतिहास में अमर बनाने के लिए काफी है। दिनकर जी की बाल साहित्य की जो 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, सूरज का ब्याह, मिर्च का मजा, धूप छांव। सूरज का ब्याह बाल काव्य संग्रह में दिनकर जी की मात्र 9 बाल कविताएं हैं, जिनके शीर्षक हैं चांद का कुर्ता, सूरज का ब्याह, मेमना और भेड़िया, खरहा और कुत्ता, ज्योतिषी तारे गिनता था, चील का बच्चा, चतुर सुअर, बर्र और बालक, बालक हम्बीर तथा मिर्च का मजा। बाल काव्य संग्रह में कुल 7 कविताएं हैं, मिर्च का मजा, पढ़क्कू की सूज, चूहे की दिल्ली यात्रा, अंगद कुदान, कर्र करो या कुर्र, मामा के लिए आम, झब्बू का परलोक सुधार। सही मायने में ये कविताएं पद्य कथाएं हैं, जिनमें पद्य के रूप में पूरा संवाद चलता है। बाल मन भी पहले कविता की तुकबंदी की ओर आकर्षित होता है और फिर कहानी की ओर। दिनकर जी की सभी बाल कविताओं में ऐसी रोचक कथाएं पिरोई गई हैं, जिन्हें पढ़कर बच्चों को कविता और कहानी दोनों का आनंद प्राप्त होता है। सूरज का ब्याह कविता में उषा के साथ सूरज की शादी की अफवाह फैल जाती है, जिसे सुनकर सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। उड़ी एक अफवाह

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के लिए लिखना इतना सहज नहीं होता जितना बड़ों के लिए लिखना। बाल साहित्य लेखन में दक्ष होना हर एक साहित्यकार के लिए संभव नहीं होता।

पुर की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मूर करेंगे नाच गीत, कोयल सुहाग के गाएगी, लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पांत पांत डोली। जीव जंतुओं में खुशी की बातें चली रही थीं, तभी जल के अंदर से एक वृद्ध मछली ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए जीव जंतुओं को चेताया कि तुम सब सूरज के ब्याह की खुशियां तो मना रहे हो, लेकिन क्या तुम में से किसी ने ये सोचा है यदि सूरज का ब्याह हो गया तो कितना अनर्थ हो जाएगा? क्योंकि अभी तो केवल एक ही सूरज है। उस अकेले की गर्मी के कारण सब व्याकुल हो उठते हैं। शादी के बाद जब सूरज के और भी बच्चे होंगे, तब उन सब की गर्मी को कैसे सहेंगे? इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान जलचरो, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो। ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात न भूलो, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के ही मारे हम, विपद कौन कम सहते हैं। गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किया, 10-5 पुत्र जन्माएगा। सोचो तब इतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा? इसलिए मछली सबको समझाती है कि अच्छा है सूरज कुआरा है, वंश विहीन अकेला है। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। इस प्रकार दिनकर जी ने सूरज का ब्याह कविता की पंक्तियों को एक कहानी के रूप में पिरोते हुए पद्य कथा का बच्चों को आनंदित करने वाला स्वरूप प्रदान कर दिया। चांद का कुर्ता दिनकर जी की ऐसी पद्य कथा है जो किसी समय बच्चे बच्चे की जुबान पर रहती थी। इस पद्य कथा के बारे में समालोचक प्रकाश मनु ने हिंदी बाल कविता का इतिहास पुस्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी दर्ज की है। सुभद्रा जी की तरह हिंदी बाल कविता को लोकप्रिय विन्यास देने का बड़ा काम रामधारी सिंह दिनकर, आरसी प्रसाद और गोपाल सिंह नेपाली ने किया। इनमें रामधारी सिंह दिनकर का कद निसंदेह सबसे बड़ा है। एक दौर था जब उनकी चांद का कुर्ता कविता हर बच्चे की जुबान पर नाचती थी और आज भी उतनी ही ताजा लगती है। बाल कविता के समूचे इतिहास में चांद पर इतनी अच्छी बाल कविता शायद ही लिखी गई हो। चांद का कुर्ता बाल कविता में चांद अपनी माँ से संवाद करता है कि उसे इस जाड़े के मौसम में ठंडी हवाओं और सर्दी से बचने के लिए ऊन का झिंगोला सिलवा दो या फिर कोई भाड़े का कुर्ता ही लेकर दे दो। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। माँ चांद की बात सुनकर चिंतित हो उठती है, क्योंकि चांद पूरे महीने में एक भी दिन एक आकार का नहीं रहता। चांद की 16 कलाओं को ध्यान में रखते हुए लिखी गई दिनकर जी की ये बाल कविता भी माँ और चांद के संवादों से सुंदर पद्य कथा के रूप में पूर्ण होती है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखला ही पड़ता है। अब तू ही ये बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। पड़कू की सीख बाल कविता में दिनकर जी ने एक पढ़ने वाले कोलू के बैल के मालिक के बीच सुंदर कथा संवाद कराए हैं। पड़कू जी कोलू में जुते बैल को देखकर आश्चर्य करते हैं कि ये बैल बिना मालिक के ही कैसे सारे दिन घूमता रहता है। यदि ये घूमना बंद कर दे तो कैसे पता चलेगा? इसी जिज्ञासा के वशीभूत पड़कू मालिक से इसका राज पूछ बैठते हैं। मालिक रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए बताता है कि उसने बैल के गले में जो घंटी बांध रखी है, जब तक वो बजती रहती है तो उसे पता चलता रहता है कि बैल घूम रहा है। इस पर पड़क्कू उनसे प्रश्न करते हैं कि यदि बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रहे तो? अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? इस पर मालिक कहता है, अभी बैल ने तुम्हारी तरह पढ़ाई नहीं की है। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पड़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। यहां सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतख पढ़ पाया है। इस प्रकार इस बाल कविता में दिनकर जी ने हास्य का पुट समाहित किया है, किंतु रचना की दृष्टि से
ये भी पूरी तरह बाल पद्य कथा के रूप में ही पूर्ण होती।

0: है। बर और बालक बाल कविता में एक बालक का अपनी माँ के साथ सुंदर संवाद ही है, जिसमें दिनकर जी ने दुष्ट के स्वभाव की विवेचना बड़े ही सहज सरल रूप में कर दी है। एक बच्चा सोते हुए बर्र को छू देता है, बर्र उसे डंक मार देता है, उंगली से खून बहता देखकर बच्चा चीख उठता है। बच्चे की चीख सुनकर रोटी बनाना छोड़कर भी माँ दौड़ी चली आई। रोटी को तवे में छोड़ बाहर की ओर दौड़ी, रोना सुन माता का हृदय अधीर हो उठा। उंगली को आंचल से पोंछ पांछ माता बोली, मेरे प्यारे लाल, ये औचक ही क्या हुआ? बच्चे ने कहा कि माँ, मैंने तो एक बर्र को बड़े प्यार से छुआ था, किंतु उसने मुझे डंक मार दिया। माँ ने कहा कि पुत्र, यही तो दुष्ट की पहचान है कि वो प्यार करने वाले को कष्ट देते हैं और कठोर से डरते भी हैं। माता बोली, लाल, मेरे खलों का स्वभाव यही, काटते हैं कोमल को, डरते हैं कठोर से। काटा बर्र ने, तूने प्यार से छुआ था उसे, काटता नहीं जो जरा दबा देता जोर से। निष्कर्षतः दिनकर जी की प्रत्येक बाल कविता की संरचना एक पद्य कथा के रूप में ही दृष्टव्य है, चाहे वो मेमना और भेड़िया हो, चाहे खरहा और कुत्ता, ज्योतिषी तारे गिनता था, या फिर चील का बच्चा। सभी की बनावट पद्य कथा के रूप में करने की महारत दिनकर जी को हासिल है। मिर्च का मजा बाल काव्य संग्रह की सातों बाल कविताओं में यद्यपि हास्य का पुट है, किंतु हैं सभी बाल पद्य कथा ही, जिनमें परोक्ष रूप से बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सीख भी समाहित है ही। और ये तभी संभव है जब कोई रचनाकार स्वयं बच्चे के नजरिए से बाल मनोविज्ञान पर पकड़ रखता हो, बच्चों की अभिरुचि के अनुकूल रुचिकर कथा वस्तु को मनोहारी रूप में प्रस्तुत करे। और ये दायित्व दिनकर जी ने बखूबी निभाया है। दिनकर जी को यदि बाल साहित्य में पद्य कथा के सशक्त हस्ताक्षर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, विषय था बाल साहित्य में पद्य कथा के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर रामधारी सिंह तिनकर, आलेख डॉक्टर दिनेश पाठक शशि का था और वाचन स्वर था राजेश कुमार शर्मा का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से अनुप्रसारित करेंगे।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और आजमगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा संवाद कार्यक्रम के तहत किए गए उद्बोधन का सीधा प्रसारण बरेली स्थित रोहिलखंड विश्वविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत कर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना और नए भारत के संकल्प से जोड़ना रहा। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, 2047 के विकसित भारत में युवा ही अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से खेलों के स्तर में जिस तरह से सुधार आया है वो किसी से छुपा नहीं है। वहीं खिलाड़ियों का भी ये कहना है कि बीते 12 वर्षों में खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों को मिलने वाले सहयोग में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा,
2: विकसित भारत का संकल्प जो 2047 का है, ये युवाओं के कंधे पर ज्यादा है। युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है। आने वाले समय में पूरे देश के साथ साथ बरेली भी खेलों में और आगे बढ़े।
1: गत दिनों बरेली में नकटिया नदी के पुनर्जीवन को लेकर कैंटोनमेंट बोर्ड ने अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने की। उन्होंने कहा कि नदी को साफ करने के साथ ही इसके आसपास के क्षेत्र को भी विकसित किया जाएगा, ताकि नकटिया नदी को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाया जा सके। इस अभियान का मकसद न सिर्फ नदी को प्रदूषण से मुक्त करना है, बल्कि जल संरक्षण और पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाना है। वन एवं

0: पर्यावरण राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ी मुहिम चलाकर 40 करोड़ पेड़ एक ही दिन में लगाए गए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था। वन मंत्री ने कहा कि नदियों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है, जिसके तहत नकटिया नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की आमद की खुशी में बरेली जिले में ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में 2 दिनों तक जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन किया गया। एक दिन पुराना शहर और दूसरे दिन नए शहर से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जुलूस में शामिल लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और उनके बताए रास्ते पर चलने का संदेश दिया। जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया। विभिन्न स्थानों पर लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों के लिए पानी, शरबत एवं अन्य व्यवस्थाएं की। ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर शहर के अलग अलग इलाकों में सजावट भी की गई। मस्जिदों और प्रमुख स्थानों को रोशनी से सजाया गया। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट डाइवर्जन समेत अन्य व्यवस्थाएं की गयी। 2 दिनों तक चले आयोजन के दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्द की तस्वीर भी देखने को मिली। कई जगह हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस का स्वागत किया और एक दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं दी। इससे शहर की गंगा जमनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द का संदेश सामने आया। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल गत दिनों बुधवार बरेली पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने बरेली प्रथम जोन, द्वितीय जोन की विद्युत आपूर्ति व बिल वसूली की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ता संतुष्टि और निर्बाध बिजली आपूर्ति विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ट्रिपिंग, फॉल्ट और ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायतों का तत्काल समाधान करने को कहा। समीक्षा बैठक में चेयरमैन ने कहा कि बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में लाइन लॉस और राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उपभोक्ताओं से मिलने वाले फीडबैक पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने बिलिंग व्यवस्था में सुधार पर भी जोर दिया। फोटो बिलिंग प्रोब और फोटो बिलिंग प्रतिशत बढ़ाने के साथ स्मार्ट मीटर वाले क्षेत्रों में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उपभोक्ता की बिल संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 1912 पोर्टल को प्रभावी बनाने और बिल सुधार कैंप लगाकर मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं आजमगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नरेंद्र प्रताप का।
1: आजमगढ़ जिले में 80वां आजादी का पर्व 15 अगस्त को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर में सरकारी इमारतों को सजाया गया और झंडारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस पूरे जनपद में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। हरियोद कला केंद्र में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान द्वारा ध्वजारोहण पश्चात उनकी अध्यक्षता में सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर पर ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात संगोष्ठी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की समर वेदी में प्राणों की आहुति देने वाले अमर सेनानियों, जननायकों को नमन करते हुए देशभक्ति पर उनके आदर्शों व मूल्यों को रेखांकित किया गया। महिला स्वावलंबन, आर्थिक सशक्तिकरण एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आजमगढ़ जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सोशल मोबिलाइजेशन अभियान में 6000 समूहों का गठन कर आजमगढ़ प्रदेश में तीसरे स्थान पर आ गया है। परिवार संतरीकरण एवं सोशल मोबिलाइजेशन अभियान को मिशन मोड में संचालित किया गया। अभियान के पहले अप्रैल 2026 तक जहां मात्र 350 समूह में लगभग 6000 महिलाएं जुड़ी थी, तो वहीं डीएम के प्रभावी व सतत निर्देशन में मात्र 3 महीने में मई, जून, जुलाई 2026 यह संख्या बढ़कर 6000 समूह में 1 लाख महिलाओं तक पहुंच गया। अर्थात सोशल मोबिलाइजेशन अभियान के अंतर्गत लगभग 5650 समूह तथा 94000 महिला सदस्य बढ़ी। जिले में अगस्त महीने के अंतिम दिनों में हुई वर्षा से किसानों के चेहरे खिल गए। जिले में धान की फसल को पानी की आवश्यकता थी, जो वर्षा के पानी से पूरी हो गई। आजमगढ़ जिले में पर ड्रॉप मोर माइक्रोक्रॉप इरिगेशन योजना 2026-27 के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 कृषकों ने प्रतिभाग किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा योजना अंतर्गत कृषि फसलों के प्रयोग हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का महत्व, प्रमुख घटक एवं उपयुक्त सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के बाद हाई वैल्यू फसलों के चयन, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के माध्यम से फसलों में फर्टिगेशन की विधि तथा विभिन्न उपयुक्त उपकरणों के समावेश के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही आधुनिक कृषि

0: तकनीकी एवं जल संरक्षण के महत्व पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। आजमगढ़ जिले में मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 स्वाइन फ्लू के 4 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। जिला सर्विलांस अधिकारी को लखनऊ एवं वाराणसी स्थित चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त रिपोर्टों पर जनपद स्तर पर सत्यापन कर लिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर्यन वर्मा ने बताया कि सत्यापित मामलों में लगभग 1 वर्षीय बालिका, 36 वर्षीय महिला, 45 वर्षीय पुरुष तथा 64 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। इनमें 2 मामले शहरी क्षेत्र तथा 2 मामले ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। सभी संबंधित प्रकरणों में जिला सर्विलांस टीम द्वारा आवश्यक निगरानी एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में मेडिकल कॉलेज, मंडली जिला चिकित्सालय तथा तरवा, लालगंज एवं अतरौलिया स्थित 100 सहायक चिकित्सालयों में H1N1 के दृष्टिगत वार्ड एवं बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अस्पतालों में जांच, उपचार, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता तथा जरूरत पड़ने पर उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि H1N1 को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग अवश्य करें। खांसते एवं छींकते समय मुंह और नाक ढकें तथा हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। फ्लू जैसे लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। बच्चों, गर्भवती माताओं और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना अथवा सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों अथवा चिकित्सकों से परामर्श लें। आजमगढ़ जिले में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर माताओं, बहनों और बेटियों को दिए गए निःशुल्क बस यात्रा के उपहार पर आजमगढ़ मंडल के व्यापक प्रसार देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं सिटी बस सेवा की बसों में 27, 28 एवं 29 अगस्त 2026 तक 3 दिनों के लिए महिलाओं को एक सहयात्री सहित निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई। आजमगढ़ मंडल के सभी 7 डिपो बलिया, बेलथरा, मऊ, दोहरीघाट, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर एवं सहागंज के अंतर्गत बड़ी संख्या में महिलाओं एवं उनके सहयात्रियों को इस सुविधा का लाभ उठाया। 3 दिनों में लगभग 2.5 लाख महिलाओं एवं सहयात्रियों ने 3 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की निःशुल्क बस यात्रा की।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में आज आपने सुनी बरेली और आजमगढ़ जिलों की हलचल। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।
3: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मथुरा रिफाइनरी मथुरा। मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी,
5: पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदार और समर्पित प्रतिष्ठान,
4: विकास का आधुनिक मंदिर,
5: पर्यावरण प्रबंधन के लिए एशिया की पहली ISO 14001 रिफाइनरी।
4: मथुरा रिफाइनरी
5: विशाल इकोलॉजिकल पार्क को सहेजे,
4: ब्रज के फ्लोरा एवं फोना का जीता जागता नमूना,
5: ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण को सदैव समर्पित।
4: मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी।
6: श्रोताओं, जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है? वायु। और जब वायु ही प्रदूषित हो जाए तो आज बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण सांस लेना दूभर हो चला है। इस प्रदूषण को बढ़ाने में लगे हैं मानकों से परे दौड़ रहे वाहन। मानकों के मुताबिक अधिकतम दौड़ चुके वाहन भी वर्कशॉप में मरहम पट्टी करवाकर सड़कों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। ऐसे बूढ़े वाहन अपनी काली खांसी से हवा में जहर घोल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान इन बढ़ते वाहनों का ही है। शहर में प्रदूषण की दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या ओवरलोडेड ट्रक, टेम्पो और पुराने वाहन है। बंधुओं, इन वाहनों से अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है। लोड अधिक और इंजन पुराना होने के कारण ये अधिक धुआं छोड़ते हैं। एक अनुमान के अनुसार एक 4-पहिया वाहन 10 किलोमीटर चलने पर करीब 140 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 210 ग्राम हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड छोड़

0: होते हैं। वहीं डीजल इंजन करीब 1 ग्राम मिश्रित गैसें भी वातावरण में छोड़ते हैं। वाहन से निकलने वाले धुएं में जितना अधिक कालापन होगा, वह वाहन उतना ही अधिक पार्टिकुलेट मैटर वातावरण में छोड़ता है, जिसे माइक्रोन में मापा जाता है। माइक्रोन के कण सांस के साथ शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वाहन में उपयोग किए जा रहे ईंधन में यदि मिलावट है तो धुएं में सस्पेंडेड पार्टिकल्स की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है। बंधुओं, ट्रैफिक सिग्नल पर जब वाहन चालू खड़ा रहता है तो व्यर्थ ईंधन जलता है। साइलेंसर से कुछ पेट्रोल डीजल भी टपकता है, जिसे अनवर्ण हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। साधारणतः दुपहिया वाहन प्रति 8 किलोमीटर चलने पर 10 ग्राम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़ते हैं। शहर में कई ऑटो टेम्पो आसान उपलब्धता के चलते पेट्रोल डीजल की जगह केरोसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑटो टेम्पो साधारण वाहनों की अपेक्षा दुगना प्रदूषण फैलाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वाहनों के इंजन की उम्र अधिकतम 15 वर्ष होती है। इसके बाद परिवहन विभाग को इनका नवीनीकरण नहीं करना चाहिए। इंजन की क्षमता जवाब देने के बाद वह प्रदूषण में सहायक होता है। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का धुआं डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। बंधुओं, वाहनों से निकलने वाले धुएं के ये कण और गैसें पादपों के छिद्रों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, को बंद कर देते हैं। इससे पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रिया में रुकावट पैदा होती है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर छोटे पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं। बंधुओं, विशेषज्ञों के अनुसार यदि स्वस्थ मनुष्य 20 से 30 साल तक ऐसे दूषित वातावरण में रह लेता है तो उसे दमा की शिकायत हो सकती है। अस्थमा के रोगी में अस्थमा की तीव्रता बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रदूषण उत्प्रेरक का काम करते हैं। बंधुओं, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें पहल करनी होगी। सड़क मार्ग के दोनों ओर यदि 5 से 10 मीटर के क्षेत्र में पेड़ पौधे और झाड़ियां लगा दी जाए तो 70% तक प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। पेड़ पौधे वाहनों के धुएं में निकलने वाले तत्वों को सोख लेते हैं। शहरीकरण के बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हम आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। एक ही संस्थान के कर्मचारी वाहनों का पूल बना सकते हैं। इससे पेट्रोल की बचत के साथ साथ वायु प्रदूषण भी कम होगा। सप्ताह में हम एक दिन ऐसा तय कर सकते हैं जिस दिन बहुत जरूरी परिस्थिति नहीं होने तक वाहन नहीं चलाएं। इस प्रकार श्रोताओं, हम प्रदूषण को नियंत्रित करने में अपना सहयोग दे सकते हैं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मथुरा रिफाइनरी मथुरा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। विषय था वायु प्रदूषण और पर्यावरण। आलेख और वाचन था डॉक्टर LC अग्रवाल का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम में बातचीत। शल्य क्रिया में लेजर तकनीक का प्रयोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर विजेंद्र तिवारी और आपसे भेंट कर रहे हैं OP सिंह।
1: स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, ऐसा कहते हैं कि स्वास्थ्य है तो सबसे बड़ा धन है। हम स्वस्थ हैं तो जीवन की कोई भी जो हमारी ख्वाहिश है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में स्वास्थ्य को बड़ी नियामत यानी ईश्वर की कृपा के रूप में हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा भी है। लेकिन कई बार जीवन शैली की अनियमितता, भागदौड़ का जीवन, स्ट्रेस, तो बहुत सारी समस्याएं जीवन में स्वास्थ्य को परेशान करती हैं। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसमें सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। तो आजकल चूंकि विज्ञान काफ़ी आगे बढ़ गया है, मेडिकल साइंस में भी

0: बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं। तो एक सामान्य सर्जरी में लेज़र का जो प्रयोग है वो आजकल हमारे दिन प्रतिदिन के उसमें काफ़ी हो गया है। ये क्यों आवश्यक है, इसके क्या फायदे हैं और इससे क्या सुविधाएं और क्या आसानी हमारे जीवन में हो सकती है, ये कुछ आज मिले जुले से प्रश्न हम रखेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार तिवारी साहब, आप वरिष्ठ सर्जन हैं मथुरा के बीएल तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल के आप कर्ता धरता हैं। डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार सर
0: जी। तो जब भी सर्जरी की बात आती है तो थोड़ा सा सेहरनसी अभी भी होती है कि भाई अरे सर्जरी कैसे कराएंगे, तो पहले तो यही बताइए कि जो ये सर्जरी है, कई बार हालांकि डॉक्टर बताते हैं तो ही करानी पड़ती है, डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन फिर भी एक आम आदमी के उसमें रहता है कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, क्या सर्जरी आज भी मुश्किल है?
1: सर पहले तो मैं ये बताऊं कि बहुत प्राचीनतम समय से जो मेडिसिन फैकल्टी है उसकी नींव ही सर्जरी रही है
0: जी,
1: चाहे वो आयुर्वेद के समय से रही हो सुश्रुता जी के टाइम से, चाहे वो कल रही हो, चाहे वो आज हो या वो कल होगी
0: आने वाले समय में।
1: जी आने वाले समय में सर्जरी एक ऐसा मोड है जो कंप्लीट क्योर देता है कि उसके बाद फिर यूजली वो चीज़ दोबारा नहीं होती और करनी तब पड़ती है जबकि उसका कोई और इलाज होता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी ब्रांच है जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो तब यूज होती है जब कोई और इलाज काम नहीं करता, प्लस इसके बाद में वो बीमारी 90% केसेस में दोबारा नहीं होती है। तो आज की डेट में पहले थोड़ा सा डर होता था कि दर्द का दर्द होता था, बेहोशी के कुछ खतरे होते थे, सर्जरी में खून बहने के यानी रक्त स्राव के खतरे होते थे, बाद में दर्द के पट्टी ड्रेसिंग करने के कुछ इन्फेक्शन के खतरे होते थे। पर आज के ज़माने में चीज़ें इतनी एडवांस्ड हो गई हैं कि ना तो दर्द होता है लगभग, ना ही ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि खून के रोकने के लिए जो मशीन्स हैं, जो नए अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, वो सभी आज की डेट में लगभग हर जगह अवेलेबल हैं। तीसरा, एनेस्थीसिया यानी बेहोशी के रिस्क आजकल लगभग ना के बराबर है। सर्जरी में रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आने लगे हैं। सर्जरी डे बाई डे एडवांस्ड होती चली जा रही है, जैसे कि लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन सर्जरी इवॉल्व हुई जो लगभग पिछले 20 साल से बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हुई है, इसे हम की होल सर्जरी भी कह सकते हैं। मकसद ये था कि भाई छोटा चीरा लगेगा तो जख्म जल्दी भरेगा, दर्द कम होगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, मरीज को निशान कम दिखेगा, उसे बेहतर फील होगा। उसी सिलसिले में कुछ फील्ड में अब लेजर आई है
0: जी। मेरा प्रश्न भी यही था कि जो लेजर आजकल हम बहुत प्रयोग सुन रहे हैं उसका, तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है इसको हम किस तरह से अपने श्रोताओं को बता सकते हैं कि ये जो प्रणाली है ये है और इसके ये फायदे हो सकते हैं इसमें?
1: सर लेजर एक तरह से लाइट बीम है, एम्पलीफाइड, जो बहुत ही प्रिसाइज या पिन पॉइंट या पर्टिकुलर पॉइंट पर ही काम करती है और ये ही इसका सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपने इसको प्रॉपरली यूज किया तो सिर्फ ये उसी जगह पर काम करेगी और उतना ही काम करेगी जितना आप चाहते हैं, आसपास उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए वॉर में भी आजकल लेजर चल रहा है, मशीनों में भी लेजर चल रहा है, सेम इसमें आया है
0: जी जी।
1: और कुछ फील्ड में लेजर जैसे कि आईस में पहले था, ऑप्थेल्मोलॉजी में, अब जो हमारा सर्जिकल ब्रांच है इसमें बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉमन प्रॉब्लम को मैं बताना चाहूंगा
0: जी, एड्रेस करने जी,
1: जो आम पब्लिक के लिए है वो है फिसर, फिस्चुला यानी भगंदर, पाइल्स यानी

0: हेमरॉइड्स यानी कि जैसे बवासीर भी कहते हैं
1: बवास
0: हिंदी
1: जी।
0: भाषा में, पाइलोनाइडल साइनस जिसमें रीढ़ की हड्डी के नीचे से लैटिंग रास्ते के ऊपर तक एक जख्म सा बन जाता है, कभी कभी पस निकलता है, बाल जिनके ज़्यादा होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। कोइंसिडेंटली मेरा अनुभव यह है कि कोरोना के बाद में इसके इंसिडेंसेस बढ़े हैं, हो सकता है वर्क फ्रॉम होम इसका एक कारण हो सकता है कुछ और हो, और मेल्स के साथ साथ फीमेल्स में भी इसकी इंसिडेंसेस यानी इनकी संख्याएं बढ़ी हैं।
1: जी, तो अब आपने खुद ही एड्रेस किया कि आजकल जो बवासीर कहते हैं, फिसर, फिस्टुला, आपने चारों चीज़ों का कहा, तो ये बड़ा कॉमन सी बीमारी है और इसको लोग आज भी बड़ी हेजिटेट करके देखते हैं, शर्म के उससे देखते हैं, और चीज़ों को साल दर साल बहुत लंबे समय तक दर्द भी सहन करते हैं और छुपाते भी रहते हैं। तो ये जो थोड़ा सा हम इस पे आए कि ये होता है, लेकिन इसके कारण थोड़ा सा हम जान लेते हैं, तब विस्तार से इस पे बात करेंगे कि लेज़र का इसमें प्रयोग कैसे हो सकता है। तो क्या हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान या हमारी आदतें इसको बढ़ा रही हैं? क्योंकि आजकल ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, घर में से अगर चार लोग हैं तो उसमें दो से तीन लोगों में भी ये देखने को आ रहा है कि फिसर फिस्टुला और इसकी बवासीर की जो प्रॉब्लम है वो हो रही है उसमें। तो इसके कारणों पर थोड़ा सा बताएं।
0: सर कारण बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कारणों से पहले मैं एक थोड़े से टाइम में ये बताना चाहूँगा कि ये अलग अलग हैं क्या,
1: जी जी
0: जिससे
1: बिल्कुल,
0: आम पब्लिक
1: हाँ
0: समझ
1: समझ
0: सके।
1: सके जी।
0: फिसर का हिंदी में मतलब होता है दरार या चटकना। तो कभी जब हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत होती है या हार्ड स्टूल यानी कि टाइट लैट्रिन आती है तो लैट्रिन का रास्ता कट जाता है, इसे हम फिसर कहते हैं।
1: जी
0: कटने से आप डेली आपको टॉयलेट जाना है, वो जगह बड़ी नाजुक रहती है जो कटी हुई है, वो फिर से कट जाती है नेक्स्ट डे, और ये सिलसिला चलता रहता है। क्योंकि जगह कटी हुई है इसलिए टॉयलेट जाने के बाद और जाते समय पेशेंट को बहुत दर्द और जलन बाद तक होती रहती है, ये खासियत है फिसर
1: फिसर
0: की।
1: की जी।
0: दूसरा आता है हीमोरॉइड्स या पाइल्स या बवासीर। बवासीर का खास लक्षण यह है कि बिना दर्द के मरीज को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ब्लड निकल गया, या बूंद बूंद करके टपकता रहता है, दिस इज हीमोरॉइड्स। और तीसरा आता है फिस्टुला या भगंदर। इसमें गुदा द्वार के आसपास एक कोई फोड़ा सा दिखता है जो कुछ दिनों में फूट जाता है, फिर दर्द बंद हो जाता है, फिर मरीज सोचता है मैं ठीक हो गया, फिर 15-20 दिन महीने 2 महीने में फिर वो भरता है, फिर फूटता है, दिस इज फिस्टुला। फिस्टुला में एक इसका दूसरी ओपनिंग जो होती है वो भीतर होती है एनल कैनाल यानी गुदा द्वार के अंदर, और वो ही सोर्स होता है इन्फेक्शन का। यही वजह होती है कि कितनी भी आप मेडिसिन खा लें ये ठीक नहीं होती, और इसीलिए सर्जरी इसमें कंपलसरी है।
1: आवश्यक हो
0: जी
1: जाती है इसमें।
0: चौथा आता है पाइलोनिडल साइनस, उसमें कुछ बाल भीतर चले जाते हैं खाल के, उसके भी लक्षण फिस्टुला जैसे ही होते हैं कि पस निकलता है कभी कभी, मरीज को समझ में नहीं आता क्या है, उसके लिए भी सर्जरी ही एकमात्र ट्रीटमेंट है। वो कैसे कैसे मैं अभी
1: जी,
0: बताऊंगा।
1: तो अब यहाँ अपन फिर वो आपने बता ही दिया, थोड़े से कारणों पे
0: जी हाँ
1: अपन
0: सॉरी
1: डाल लें, तो फिर आएंगे कि भाई लेजर का प्रयोग हम कैसे
0: माफी
1: करेंगे, लेकिन
0: चाहूंगा मैं
1: हाँ
0: भूल गया।
1: कारणों को जान लेते हैं
0: देखिए
1: इसमें।
0: जैसे कि फिसर मैंने कहा तो उसमें कट जाता है, कटेगा कब, जब कॉन्स्टिपेशन होगा यानी कि आपकी लाइफ स्टाइल,
1: जी
0: अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, टाइमली नहीं खा रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, लिक्विड कम मात्रा में ले रहे हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेस्ड हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली फिसर को जन्म
1: हाँ,
0: देती
1: एक
0: हैं।
1: तरह से हम कॉमन भाषा में इसको कब्ज और अनियमित जीवन
0: यस
1: यापन
0: यस
1: इसको कह
0: यस
1: सकते हैं।
0: एग्जैक्टली।
1: जी।
0: जो फिस्टुला है कहीं भी कोई भी किसी भी कारण से या इन्फेक्शन हो जाए या कट लग जाए या बाल टूट जाए तो कोई एक फोड़ा बनता है, और इस जगह पे ये फोड़ा दोनों तरफ बढ़ता है, गुदा द्वार के भीतर की तरफ और बाहर खाल की तरफ।
1: अच्छा, दोनों तरफ, मतलब दोनों
0: जी
1: तरफ
0: जी
1: इसका
0: विस्तार होता
1: एक्सपेंशन
0: है,
1: हो, विस्तार होगा जी।
0: और दोनों तरफ ये फूट जाता है, भीतर का हमको दिखता नहीं है।
1: हाँ।

0: बाहर का हमको दिखता है, ये फिस्टुला होता है। तो इसका मेन कारण वही है कि शुरुआत तो देखिए किसी को भी हो सकती है,
1: शायद हिंदी नाम से ये ज्यादा
0: भगंदर,
1: हाँ मतलब स्पष्ट हो रहा है कि जो अंदर गुदा के जा रहा है
0: वो भगंदर
1: है, भगंदर है। जी जी
0: मतलब अगर मैं बहुत ही हिंदी बोलूं तो फिस्टुला या भगंदर का मतलब सुरंग है जो दोनों तरफ खुलती
1: दोनों
0: है,
1: दोनों तरफ खुलती जी। है जी जी जी चलिए ठीक है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो
0: जी,
1: रहा है
0: ये इन्फेक्शन।
1: अब इसमें पाइल्स,
0: पाइल्स जी, पाइल्स का भी वही कारण, पाइल्स होता है कि जैसे उसे हम कहते हैं डायलेटेड टॉर्चुअस इलोंगेटेड एनोरेक्टल वीनस प्लेक्सस, यानी कि चौड़ा बढ़ा हुआ घुमावदार छल्लेदार जो खून की नसें हैं खासतौर से वेन्स हैं रेक्टल एरिया की, वो हो जाती हैं, वो नीचे आ जाती हैं खाल के साथ या म्यूकोसा के साथ, म्यूकोसा भीतरी सतह को कहते हैं, उसे हम बवासीर या हिमरॉइड कहते
1: जी,
0: हैं।
1: मतलब ये क्या जो हमारा मलद्वार है जो जो डेप यूज होता है उसमें, तो वहां पहले से मौजूद रहती है?
0: जी सर, शरीर के हर ऑर्गन की ब्लड सप्लाई होती है आर्टरी, और वहां से ले जाने के लिए वेन्स होती हैं। जब ये वेन्स में कोई प्रेशर पड़ता है और वेन की सप्लाई धीरे धीरे ऊपर कम हो जाती है या लगातार प्रेशर से हमने ब्लड भरा रहता है तो वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम पाइल्स कहते हैं।
1: पाइल्स कहते हैं। अब वो बालों वाली समस्या तो आपने बताई कि जिनके ज़्यादा बाल हैं परेशानी है तो वो वहाँ कॉमन हो सकती है। अब हम अपने जो आज की बातचीत का मेन मुद्दा था वहाँ आते हैं कि एडवांस हुआ है, हर जगह हुआ है, तो मेडिकल साइंस में भी हुआ है लेज़र का प्रयोग, चूँकि लेज़र एक आविष्कार है और जो मेडिकल में आ गया तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं इसमें। तो अब ये जो चारों चीज़ें आपने बताई जिसको आदमी छुपाता है, शर्माता है, सर्जरी में इसका हम कैसे प्रयोग करें लेज़र का, तो यहाँ इसके जो फायदे हैं उस पर थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: सर लेज़र एक, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही प्रिसाइज पिन पॉइंट जगह पर काम करता है, अगर हम इसको प्रॉपरली यूज करें तो एक तरह से एक नाइफ का भी काम करता है, यानी कि ब्लेड का भी
1: जी।
0: और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड सोर्स होता है उसको बंद करता है, प्लस जो खून की नसें फूली हुई होती हैं इनको सिकोड़ के कोगुलेट कर देता है। अगर मैं फायदे के बारे में जाऊं तो पहली बात तो एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर जगह पर काम करता है अगर आपने इसको ढंग से यूज किया तो, दूसरा लगभग दर्द रहित इसकी सर्जरी होती है, तीसरा ब्लड लॉस ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, चीरा या तो लगता ही नहीं है या बहुत ही छोटे की जरूरत पड़ती है, कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स यानी कठिन या जटिल केसों में चीरा भी लगाना पड़ता है। बाकी अगर आप शुरुआत में या मिडिल दौर पे आते हैं 90-70-80-90% में बिना इसके काम हो जाता है, क्योंकि ना ब्लड लॉस हो रहा है, ना बड़ा जख्म बन रहा है, ना चीरा बन रहा है, इसलिए बाद में बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग या इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं, ना तो आपको बहुत लंबी ड्रेसिंग करानी है, ना बाद में बहुत पेन होना है, ना उस जगह से ब्लड निकलेगा, ना इन्फेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, तो इसलिए लेज़र आज की डेट की कमिंग डिमांडिंग इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव
1: प्रोसेस
0: है जी।
1: मतलब आप इसको कहें कि बिना चीड़फाड़ के दर्द रहे तो कम समय में कम रिस्क के साथ
0: बिना खून के रिसाव
1: के
0: जी
1: रिसाव के की जाने वाली सर्जरी ये है जो आजकल मथुरा में भी उपलब्ध है और आप इसको कर रहे हैं, मतलब
0: हाँ मैं
1: ये आपका अपना अनुभव है?
0: मेरा अपना अनुभव है, मैं लगभग कम से कम अलग अलग मिला के एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस कर चुका हूँ, किसी में टचवुड कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे केसों की मैं शुरू में अपने पर्सनली टच में भी रहता हूँ जिससे उन्हें कोई दिक्कत हो तो पता चल जाए, मुझे भी अच्छा मिलता है, नेचुरली सुकून मिलता है जब कोई कहता है कि साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
1: आपकी उससे मेरा तो दर्द कम हो गया,
0: तो बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा स्थिति परिस्थिति स्टेज की हम बात करें तो किन स्टेजेस पे सर्जरी रिकमेंड होती है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लगता है कि यार सर्जरी होगी, लेकिन जब हम एक अच्छी जगह अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो वो कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जिसको हम मान के चलते हैं। तो सर्जरी की जो स्टेजेस है, कई बार हम उस स्टेज में पहुंचते हैं कि जहां सर्जरी भी थोड़ा सा नाकाफी सी

0: प्रोसेस में। तो एक आदमी को किस स्टेज में कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि नीम हकीम के चक्कर में पड़ के हम बहुत सारी समस्याओं को बढ़ा लेते हैं।
1: सर देखिए, पहला तो यह है कि सवाल कि कब जाना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर समस्या है तो आंसर है एज सून एज पॉसिबल,
0: जी,
1: मतलब जितनी जल्दी हो सके,
0: जा सकते
1: बढ़ाना
0: हैं।
1: क्यों। अब रहा सवाल कि ग्रेडिंग का, तो कुछ चीज़ों में वाकई इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हीमरॉइड यानी कि पाइल्स
0: पाइल्स की
1: यानी
0: बात।
1: कि बवासीर। जब मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में रजिस्ट्रार था, तब से मैंने दो चीज़ें एक अपने रिकॉर्ड में रखते हुए की कि कुछ ही को इंजेक्शन दिया, इसे हम स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं, किसी को बैंडिंग यानी छल्ले लगाए और किसी को सर्जरी की। उस समय वहाँ पर लेजर नहीं थी। ग्रेड 1 और इवन ग्रेड 2 में, मतलब मेरा ये उस समय से प्री टॉपिक रहा है, क्योंकि लोग बड़े परेशान रहते थे।
0: जी
1: हम लोग इंजेक्शन पाइल्स लगाते हैं और ऐसे ऐसे पेशेंटों को लगाया है, लेकिन रिस्क समझा के जिनका 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था, कुछ कर भी नहीं सकते थे, उनका ब्लड बंद हो गया, टच वुड। और यूजली किसी को ऐसा लगता है हम लगा देते हैं, उसमें कुछ करना नहीं होता है, ओपीडी में आया, 10 मिनट में लगवा के घर चला गया, कोई दिक्कत अभी तक तो हुई नहीं, और ईश्वर करे हो भी ना। सभी का ब्लड लगभग बंद हो गया है, बहुत सारे लोग बड़े परेशान होके आते हैं और बड़े सुकून से फिर आके बोलते हैं सर थैंक यू। ग्रेड 2 में बैंडिंग है, पर आजकल वो भी इंजेक्शन से काम चल जाता है। ग्रेड 2 और 3 में लेजर इज द बेस्ट, जिसके कि चीरा नहीं, वही बताया मैंने,
0: हाँ, बिना
1: ब्लड
0: चीरा
1: लॉस नहीं, पेन नहीं।
0: रिस्क नहीं।
1: ग्रेड 3 और 4 के बीच में जब पहुंचता है तो एक्सेसिव बड़ी हो जाती है, तब या तो अपन इंटरवल लेजर करते हैं यानी कि एक या दो बार करनी पड़ जाती है, या फिर लेजर प्लस पार्शियल सर्जरी, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि मरीज की स्थिति क्या
0: क्या
1: है।
0: है इसमें?
1: और जहाँ तक सवाल फिस्टुला यानी भगंदर का है, तो इसमें तो ये बहुत ही कारगर है,
0: रामबाण
1: पाल्मेडल साइनस जी बहुत ही कारगर है।
0: रामबाण। अब इसमें जैसे और कहाँ कहाँ इसका लेजर का प्रयोग हम कर सकते हैं इसमें?
1: सर इसके अलावा एक जो अभी इवॉल्विंग ब्रांच है, क्योंकि मैं अभी उसमें एक मास्टर्स कोर्स करके भी आया हूँ, इसलिए मैं टच में हूँ, नाम तो उसका कॉस्मेटिक गाइनी है। इसमें एक जो लेजर है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नया युग बनने जा रहा है, ये एक सुपर स्पेशलिटी बनने जा रही है, एक जेट प्लाज्मा फॉर HER2 करके यूरोपियन डिवाइस है, और एक फोटोना लेजर है जो इसके दो अपर एस्पेक्ट अपर हैंडेड मशीनरीज हैं, तब एक वरदान सा लगती है। हम लोगों ने खुद इसके रिजल्ट देखे हैं, जनरली जो फीमेल्स में कई बार कई डिलीवरी के बाद में या डिलीवरी के बाद टांके टूटने के बाद में कुछ वेजाइनल लैक्सिसिटी रह जाती है, कुछ ढीलापन सा रह जाता है, या थोड़ी उम्र के बाद में सिकुड़न आ जाती है, या लगातार बार बार पेशाब के इन्फेक्शन होते रहते हैं, या लाइकन पेनस एक बीमारी होती वो हो जाती है, या इचिंग परसिस्टेंट रहती है वो ठीक नहीं होती है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके अलावा स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, खांसते और छींकते में महिलाओं को ये शिकायत होती है कि कभी कभी पेशाब निकल जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 30%, ये एक सर्वे है कि 30% महिलाओं को 35 से 40 साल की उम्र के बाद
0: बाद जी।
1: ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। दिक्कत यह है कि कुछ लोग तो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एज के साथ हमें हो गया है और ये सबको होता है,
0: उसके साथ जीने की आदत डाल
1: जीने
0: लेते
1: का
0: हैं।
1: डालते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर आज की डेट में दोनों गलत हैं। ये समस्या थी, ये समस्या है, और इसका इलाज अब है, वो इलाज भी इसी लेजर से
0: लेजर के माध्यम
1: काफी
0: से।
1: हद तक, कुछ केसेस को हमने देखा है, तीसरी सिटिंग में उनको 40% तक रिलीफ है, उनके चेहरे की मुस्कान थोड़ी सी बताती है कि उन्हें अब अच्छा लग रहा है,
0: अच्छा लग
1: वरना
0: रहा
1: एक
0: है।
1: डर बैठा रहता है कि हम कहीं डांस करेंगे तो यूरिन निकल जाएगा, हम कहीं जोर से कूदेंगे तो यूरिन निकल जाएगा, ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं।
0: हाँ, एक

0: एक बड़ा बोझ और डर लेकर के ही जीवन जी रहे हैं, तो वहां अगर राहत मिलती है तो निश्चित
1: सर
0: तौर पे
1: ये
0: एक
1: एक धीरे धीरे आप देखिएगा, 1-2 साल में ये एक नया रिवॉल्यूशन, क्रांति, युग, सिस्टम, मतलब एक फीमेल को फीमेल होने का पूरा एहसास मिलेगा, उसको उसकी मन माफिक चीज़ें मिलेंगी, मेंटली फ्री रहेंगी, अपनी ज़िंदगी को धड़ल्ले से जी सकेंगी, तो ये चेंज तो आएगा
0: आएगा उसमें।
1: जी।
0: और इसका ये विज्ञान के लिए हम इसको धन्यवाद देते हैं कि विकास हो रहा है और लोगों को उसका फायदा हो रहा है, यही एक विज्ञान की देन होती है। अब इसमें डॉक्टर साहब, क्या हर जगह लेजर का प्रयोग हो सकता है, या जहाँ लेजर का प्रयोग नहीं होता वहाँ कुछ अभी भी जो पुराने तरीके वहाँ हम काम कर रहे हैं?
1: सर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 80% जगहों पर कुछ पुराने और कुछ पार्शियल नए तरीके हैं, लेजर अभी तक हर जगह नहीं है।
0: जी जी
1: हालांकि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, डॉक्टर्स में इसका क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि उसके फ़ायदे नज़र आते हैं और पब्लिक को भी नज़र आते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें, जहाँ तक हमारा सवाल है, नॉर्मल डायोड एनोरेक्टल के लिए लेजर, कॉस्मेटिक के लिए जेट प्लाज्मा फॉर हर टू, एक यूरोपियन डिवाइस, वो हमारे पास ये सब है। इसके साथ साथ एक ऑफ द वे लाइन आपको बोलूँगा, एक रोल आया है PRP, मरीज के ब्लड से ही प्लेटलेट प्लाज्मा बना के उसी को उस जगह पर इंजेक्ट करते हैं जहाँ उसको प्रॉब्लम होती है। और सर ऐसी ऐसी जगहों पर करते हैं, इवन मतलब यहाँ तक कि भी अगर फीमेल्स में सेक्सुअल डिजायर कम हो जाए तो उसको बढ़ाती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन
0: लेकिन
1: ये
0: इस
1: दबी हुई चीज़ें हैं
0: हाँ
1: और जो कभी ना कभी तो आएंगी।
0: आएंगी आएंगी जी।
1: चेहरे में जब सलवटें पड़ जाती हैं या एज के साथ चेहरे का कुछ चेंज हो जाता है, उसमें इसका यूज करते हैं, इसको और लेजर को। ये कमिंग फ्यूचर स्किन गायनी
0: मतलब
1: लेजर
0: इसका और
1: है,
0: इसको बढ़ना
1: बहुत
0: है
1: बढ़ना
0: और
1: है
0: हर
1: सर, बहुत
0: जगह
1: बढ़ना
0: इसको
1: है।
0: उसमें, अब जैसे अगर हम कहें कि हेयर ट्रांसप्लांट है या कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से चेहरे पे कुछ चीज़ें निकल आती हैं, क्या जैसे पुरानी हमारी एक समस्या थी अपने ये होते थे अपने मस्से वगैरह का, वहाँ भी उपयोग किया जा
1: सर
0: सकता है?
1: मस्से के लिए तो देखिए ये है कि ये कॉटरी होती जो हम लोग करते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, शून्य की सुई एक होती है, एनेस्थीसिया लोकल बोलते हैं, हम लोग लगा के निकाल देते हैं। बाकी जहाँ तक काले चीज़ों का हल्का सा धब्बे का सवाल है, कुछ झुर्रियों का सवाल है, तो PRP प्लस ये लेजर, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँगा कि एक दो लोगों को हमने किया जिनके कुछ स्पॉटिंग थे, एक दो को चिकन पॉक्स होकर जस्ट चुका था, और हमने कहा तुम ले लो ऐसे ही, हमने नहीं कहा कि आपको आराम मिलेगा, उनने ले लिया
0: हाँ
1: और
0: आराम
1: उन
0: मिला
1: यस
0: मतलब
1: रिमार्केबल आराम मिला।
0: एक आपने प्रयोग किया और सफल रहा
1: जी
0: उसमें, तो मतलब एक तरह से ये वरदान आने वाले समय में लोगों को बहुत सारी चीज़ों से राहत और बहुत आसानी से और बहुत मतलब एक जीवन आसान करने वाली प्रक्रिया, इसको हम कह सकते हैं लेजर को।
1: सर बिल्कुल कह सकते हैं, और समय के साथ देखिए बदलना तो पड़ता ही है। पहले आप बैलगाड़ी पर चलते थे, फिर साइकिल पर चले, फिर लंब्रेटा आया, हीरो पोक आई, अब बैटरी वाले आ गए,
0: तो
1: तो
0: अब
1: इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, तो समय के साथ तो चलना पड़ता
0: चलना
1: है।
0: पड़ता है, तो इसमें अब चूंकि आपने समय के साथ की बात कही, फिर चलते चलते मैं पूछ लेता हूँ कि जो झिझक है कि भाई हम एक समस्या के साथ जी रहे हैं, उसका समाधान है बहुत आसान समाधान है, तो फिर उसको समस्या को लेकर के जब आप जैसे लोग बैठे हुए हैं जीवन में, तो सुगमता क्यों नहीं हासिल कर लिया? ये जो झिझक है ये सर में, मुझे नहीं लगता बहुत हमारे काम की है।
1: सर इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ और इसीलिए आप भी अपना कीमती समय दे रहे हैं कि
0: जी
1: हम अपनी बात पहुँचा सकें,
0: लोगों तक।
1: क्योंकि देखिए इंसान कहीं ना कहीं तो जाता ही है, डिस्कस तो किसी ना किसी से करता ही
0: करता
1: है,
0: है।
1: अब उसे ट्रीटमेंट मिले या ना मिले। अगर हम ये कहें कि आप डिस्कस भी करो, आपकी सीक्रेसी यानी आपकी गोपनीयता को आपकी गोपनीयता ही रखा जाएगा और आपको इलाज भी मिलेगा, कहीं आपकी कोई भी बात लीक नहीं होगी, और सेटिस्फेक्शन नए जमाने के हिसाब से आपको पूरा मिलेगा, तो इंसान समझेगा, वही मकसद है सर।
0: तो अब इसमें चलते चलते हम थोड़ा समय चूंकि सीमित रह गया है, तो अब मैं थोड़ी सी इसको आधुनिकता से

0: जोड़ता हूँ कि आपने कहा कि कोरोना के समय कुछ चीज़ें बढ़ी, ये उसका वर्क फ्रॉम होम काम हो सकता है।
1: सर
0: बच्चों की आजकल जो छोटे छोटे बच्चों हैं, ये पहले प्रॉब्लम थोड़ा ओल्ड एज के साथ 40+ के बाद मानी जाती थी क्योंकि भाग दौड़, लेकिन आजकल बच्चों की कंप्यूटर के साथ उसके साथ सिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, स्टडी का प्रेशर भी आ गया है, तो कम एज में भी ये प्रॉब्लम फाइल्स और

0: आऊंगा तो हो सकता है कि 3-4 घंटे डिस्कशन में लग जाएं।
1: जी
0: कोरोना की वजह से, वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये बीमारियां, फिस्टुला, फिसर, पाइल्स निश्चित बढ़ी हैं। और एक मेरा ऑब्जर्वेशन है और कई डॉक्टर्स का ऑब्जर्वेशन है, हालांकि अभी ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है
1: जी,
0: कि पाइलोनाइडल साइनस, जिसमें कि पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे एक पस का पॉकेट बन जाता
1: जी,
0: है,
1: जी, जी।
0: उसके भीतर बाल चले जाते हैं, वो कोरोना के टाइम से और उसके बाद से काफ़ी बढ़े हैं। और स्पेसिफिकली, सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से फीमेल्स में भी बढ़े हैं, जबकि फीमेल्स में कम होता
1: कम
0: था
1: होता।
0: क्योंकि उनके बाल कम होते थे और मुलायम होते हैं। तो इसका फर्क तो सर पड़ता है, और इसीलिए जरूरी है कि हम पहला सुख निरोगी काया तभी होगा जब हम अपने आप पे ध्यान देंगे,
1: ध्यान
0: और ये
1: देंगे।
0: देना पड़ेगा। तभी शायद आपने सवाल पूछा है कि ऐसे चेंज आ रहे हैं,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: तभी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा तो अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, कुछ
1: जी
0: वॉक, कुछ एक्सरसाइज, कुछ डाइट
1: कुछ
0: मैनेजमेंट
1: व्यायाम,
0: कुछ करना चाहिए।
1: मतलब हम सिर्फ फास्ट फूड पर
0: नहीं सर,
1: या मार्केट फूड पर नहीं रह सकते, उसमें घर की चीज़ें अंकुरित हैं वो कर ले, मतलब जीवन के लिए मेहनत हम कर रहे हैं तो हम कुछ खाने और अपने शरीर के लिए मेहनत के लिए समय
0: करना
1: रखें,
0: चाहिए सर।
1: करना
0: और जब
1: चाहिए।
0: आप करते हैं ना तो उसमें भी मजा आता है, नहीं तो फिर आपको बैठे बैठे अजीब होता
1: जी
0: है।
1: जी जी बात काफ़ी हो गई, कुछ और चलते चलते कहना चाहें इसमें?
0: सर कहना तो मैं चाहूँगा कि पहला तो यह है कि कोई भी दिक्कत हो, जहाँ तक आज के संबंधित विषय का सवाल है,
1: हाँ
0: कि आप संपर्क करें। जो पहले कहीं होता था, वो क्षार सूत्र से लेके सिंपल सर्जरी से लेके नॉर्मल सर्जरी से लेके लेप्रोस्कोपी से लेके लेजर तक, वो हम सब करते हैं, हमको किसी ने मना नहीं किया और सब कुछ हमने पढ़ा है। तो आप आइए, अल्ट्रा मॉडर्न सीखने का मतलब ही ये है कि वो इम्पॉर्टेंट है।
1: जी
0: दूसरा, संकोच से कभी काम नहीं चलते, और सीक्रेसी मेंटेन रखना हमारे प्रोफेशन का नेचर है।
1: ऐसा है।
0: हमसे तो आके लोग क्या क्या नहीं बोल जाते, पर किसी को नहीं पता होता, तो ये हमारे जहन में ईश्वर देता है। और बाकी यह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़े से डाइट, थोड़ी सी लाइफ मॉडिफिकेशन कीजिए, खुश रहिए, समाज में रहिए, एक दूसरे के लिए भी रहिए।
1: जी जी जी जी
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम में बातचीत, शल्य क्रिया में लेजर तकनीक का प्रयोग, और वार्ताकार थे डॉक्टर विजेंद्र तिवारी। आपसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: अभी आपने सुना मुकेश को फिल्म मुक्ति में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, भूपेंद्र और साथियों को। फिल्म का नाम है किनारा।
1: वो आवाज डूब गई, सुन चंदन चेक करना नामुमकिन हो गया। आइडिया ना याद रहे।

किशोर कुमार को भी आपने सुना फिल्म अनुरोध में, और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी, सुषमा श्रेष्ठा और साथियों को। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: आँख में चोली, दाई आँख बंद के बाई आँख खोली।
1: किसने?
2: मैंने?
1: नहीं तो?

मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म ड्रीम गर्ल में, और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत। आवाजें हैं मुकेश की, फिल्म का नाम है धर्म करम।

अभी आपने सुना आशा भोसले को फिल्म उमराव जान में, और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों को, फिल्म का नाम है कर्ज।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों को भी आप सुना फिल्म सागर में। और आइए सुनते हैं जगजीत सिंह को, फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म शराबी में। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति संजय सारस्वत की है।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो,
1: परम आदरणीय सारसा साहब, सादर सप्रेम प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं सर?
1: मानवर, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, आप कैसे हैं? काफी दिनों के बाद आपसे वार्तालाप हो रही है।
0: प्रजापति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत, हम तो बहुत अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं? अपने हाल चाल बताएं।
1: मैं भी अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद है, और घर परिवार में सब लोग आनंद पूर्वक रहते हैं, आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, कार्यक्रम सुनते रहते हैं। अच्छा लगता है, आप लोगों का प्रयास, आप लोगों का प्रयत्न, कोशिश, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा जा रहा है और
0: जी
1: सार्थक
0: जी
1: हो रहा है आपका प्रयास, और
0: आप
1: हम
0: लोगों
1: लोगों
0: को
1: को बहुत ही आनंद की अनुभूति कराते हैं।
0: हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है सर।
1: जी,
0: आज क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में सर, बताइए।
1: मानवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है तुलसी।
0: जी
1: ओ सांवरिया तेरी बांसुरिया, हमें कितना नाच नचाए रे।
0: बिल्कुल, सुनवाते हैं सर आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए।
1: जी, हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
0: स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। कैसे
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: हैं आप?

0: बहुत बढ़िया सर, आपके एसएस में बात और श्याम सोवानी सुनता हूँ और पुनील कार्यक्रम सुनता हूँ।
1: जी, हमें फोन भी करते रहते हैं आप, बड़ा अच्छा लगता है सर।
0: हाँ सर, हमको कार्यक्रम पसंद आते हैं इसीलिए करते हैं सर।
1: दूर दूर के श्रोता जब हमसे जुड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है सर।
0: जी,
1: आज क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में, बताइए।
0: सर हीरो फिल्म का तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है, ये गाना सुना है सर? मित्रों नाम ले सर,
1: हाँ लीजिए।
0: हमारे गौतम जी राय बोले, तुकाराम जाधव जी, मान सिंह जी, केसरी सिंह राजपूत जी और राजेंद्र गंगवार जी और प्रजापति जी मथुरा से, तनुश्री सातारा से, सभी के लिए सर गाना, आपके भी लिए। धन्यवाद
1: बिल्कुल, आपकी पसंद का गाना आइए सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
0: सर।

0: हेलो,
1: आदरणीय सारस्वत जी को सादर सब प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप?
1: सर आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया खनौरी से बोल रहा हूँ। सारस्वत जी
0: स्वागत है लवनिया जी कार्यक्रम में आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सारस्वत जी कैसी है हमारी हेलो आकाशवाणी टीम और आप?
0: सब सकुशल हैं सर, आप भी कुशल होंगे?
1: जी सर अपनी तो वही आंखों की प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रही है अभी, बाकी तो सब ठीक ठाक हैं, बस यही आंख परेशान करती रहती हैं।
0: बीच में थोड़ा आराम भी बता रहे थे आप।
1: जी नहीं सर वो टेम्परेरी आराम पड़ता है और उसके बाद फिर वो 2-3-4 दिन बाद ऑटोमेटिकली कड़कड़ाहट पानी और दर्द शुरू होता है उस।
0: और कहीं बड़े केंद्र पर दिखा लीजिए।
1: सर जयपुर तक दिखाया क्योंकि मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ तो आंखों में हाथ डालना हर कोई डॉक्टर उचित नहीं समझता।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सर, हमारी यही कामना है आपको जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो।
1: जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आज बताइए सर, क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में?
1: सर फिल्म का नाम रहेगा बंदिश,
0: जी
1: इसमें गीत है बोले मेरा कंगना तेरे बिना सजना, ये कुमार सानू और अलका जी ने गाया है।
0: बिल्कुल, सुनवाते हैं लवनिया जी आपकी फरमाइश का गाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती हमारा कॉल शामिल करने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं
0: स्वागत करते हैं आपका बहुत बहुत।
1: जी। शुक्रिया।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: क्या काम चल रहा है सर?
1: खेती बाड़ी काम है भैया अभी तो
0: अच्छा, बारिश वारिश अब तो रुक गई होगी।
1: हाँ जी, अभी तो कल से बहुत धूप कर रहा है
0: हाँ, बारिश के बाद तेज धूप निकलती है तो बड़ा दुख देती है।
1: जी।
0: कार्यक्रम सुन रहे हैं लगातार?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल ऐप पे डेली ऑन कर लेते हैं भैया, ज्यादातर तो घर में या खेतों में ही रहना होता है।
0: आज क्या फरमाइश रहने वाली है सर?
1: फिल्म है मोहब्बतें और गीत के बोल है हमको हमी से चुरा लो।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: शुक्रिया।

0: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
0: मैं ब्रज रेडियो श्रोता, मैं सांवरिया गांव थैरावर तहसील कुम्हेर जिला डीग राजस्थान से। बहुत
1: सांवरिया जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत करते हैं हम।
0: बहुत धन्यवाद सारस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपसे बहुत खुश होते हैं, मिलते हैं हम और आप फोन के द्वारा ही सही चाहे, पर
1: जी
0: बहुत खुश
1: जी
0: होते हैं। और
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, आपके हालचाल क्या हैं?
0: सही है, जन्माष्टमी खूब अच्छी मनी और बरसात हुई है 2-3 दिन, बहुत भारी लगातार।
1: जन्माष्टमी पे तो भगवान कृष्ण की कृपा बरसती रही,
0: हाँ, बरसात कैसी रही आपके यहाँ?
1: रिमझिम होती रही सर, 2-3 दिन।
0: हाँ, ऐसी यहाँ हुई है सर,
1: कृपा है ये ठाकुर जी की।
0: बिल्कुल
1: काफी
0: बहुत
1: गर्मी
0: अच्छे।
1: हो
0: हाँ,
1: रही थी, उससे
0: शांत
1: राहत
0: हुई,
1: मिली
0: अभी
1: है।
0: रात मिली है सर।
1: बिल्कुल, आज बताइए सर, क्या फरमाइश रहने वाली है?
0: फरमाइश आप सुनवाइए। सूरज और चन्ना फिल्म से पूरब दिशा से परदेसी आया।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सारस्वत जी, नमस्कार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम। हेलो आकाशवाणी, आज की प्रस्तुति संजय सरस्वत की थी। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 MHz पर लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत का। साथियों, जब से साक्षरता के अभियान शुरू किए गए हैं, तब से हमने देखा है कि शिक्षा ही प्रमुख है और शिक्षा ही हमारे देश को आगे लेकर जाएगी। और साक्षरता अब सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव-गांव तक फैली हुई है। और ये अभियान आया कहाँ से, इसका आरंभ कहाँ से हुआ? जी हाँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये विषय है। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। आज है 8 सितंबर। तो ये 8 सितंबर को ही क्यों शुरू हुआ? इसका उद्देश्य लोगों को केवल पढ़ाना लिखाना था या कुछ और भी? तो बिल्कुल इसी विषय पर आज अपने कार्यक्रम में करेंगे चर्चा। और अगर आप भी साक्षरता पर अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने कार्यक्रम में गीत, बात और SMS दोपहर 12 बजे से आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 9412225755 पर।

फिल्म बोल बच्चन में अभी आपने सुना मोहित चौहान को। बात कर रहे हैं आज के दिन की। जी हाँ साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो हम बताने वाले थे कि ये दिवस आज ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1966 को अपने 14वें महाअधिवेशन में 8 सितंबर को ही इस दिवस के रूप में घोषित किया था। और आप जानते हैं कि इसका जो पहला आयोजन है वो कब हुआ था? बिल्कुल 1967 में ये दिवस पहली बार मनाया गया था। और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था? इसका उद्देश्य था व्यक्तियों को, समुदायों को और समाज के लिए एक साक्षरता बनाना और उसके महत्व को, उसकी आवश्यकता के प्रति जागरूक करना। यही इसका संदेश था, यही इसका उद्देश्य था। क्योंकि साथियों, एक ही चीज़ नहीं होती है, बहुत सारे बिंदु हमारे इसके ऊपर निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का जो आज का थीम है वो है लिटरेसी फॉर पीपल द प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए साक्षरता, यही इस बार का थीम रखा गया है। तो इस थीम को हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे और विषय पर भी चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

साथियों, ये प्रश्न सभी के मन में आता है कि 8 सितंबर ही क्यों? इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटनाक्रम भी है। वो कुछ इस तरह से है कि 1965 में ईरान के तेहरान में शिक्षा मंत्रियों का विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर निरक्षर खत्म करने और दुनिया भर में साक्षरता बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। इसीलिए 8 सितंबर यानी आज ही के दिन इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। साल 2026 इस दिवस के लिए खास है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यूनेस्को ने इस वर्ष की थीम लिटरेसी फॉर पीपल द प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी यानी कि लोगों, पृथ्वी और समृद्धि के लिए साक्षरता रखी है।

साथियों, कहते हैं साक्षरता जो है वो सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, यानी कि सिर्फ नाम पढ़ लेना या किसी वाक्य को लिख देना ही तो साक्षरता नहीं कहलाता ना, क्योंकि आज का जो युग है वो आधुनिक युग है। तो आधुनिक युग में इसकी जो भूमिका है ना, बहुत बड़ी हो चुकी है। आज साक्ष्य व्यक्ति को जानकारी समझने, सही निर्णय लेने, रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने और समाज में अपनी बात रखने के लिए भी तो पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ना लिखना जो होता है वो सिर्फ अपने लिए ही सीमित नहीं होता है, यानी अपने जो फ्यूचर है हमारे

प्रॉस्पैरिटी भी तो चाहिए ना, हमें समृद्धि भी चाहिए। तो जो हमारी पढ़ाई लिखाई है उसकी जो क्षमता है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम खुद पर निर्भर हो सकें।

जी हाँ साथियों, साक्षरता अभी जैसा कि हमने बताया कि केवल नाम लिखने तक सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि डिजिटल युग है। डिजिटल युग में साक्षरता का संबंध डिजिटल जानकारी को समझना, ऑनलाइन उपलब्ध सूचनाओं का सही इस्तेमाल करना, गलत जानकारी से बचना, इससे भी तो जुड़ गया है। पढ़ाई केवल अब किताबों तक सीमित नहीं है, अब डिजिटल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि अभी हम देख ही रहे हैं कि साइबर जितने भी चीट हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है, उसमें अक्सर महिलाएं फंस रही हैं। बिल्कुल, तो यदि हमारे अंदर इस चीज़ की नॉलेज है तो शायद हम बच पाएंगे। और यही कारण है कि साक्षरता को व्यक्ति की सशक्तिकरण और सामाजिक भागीदारी से भी जोड़ना है, तभी हम असल में साक्षर कहलाएंगे। पढ़े लिखे का होना केवल रीडिंग करने तक अब नहीं रह गया है, बल्कि डिजिटल युग में जीना भी साक्षरता है। इसी को हमें पढ़ना है, समझना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी साक्षरता में सिर्फ और सिर्फ किताब को पढ़ना नहीं, पढ़कर आगे बढ़ने में विश्वास रखेंगे।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम गीत बात और SMS। नमस्कार साथियों, आज कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी RJ मित्र चंद्रा खत्री। स्वागत आप सभी का। आरंभ करते हैं कार्यक्रम। नरवेल महाराष्ट्र से PS नवाकर, निर्मला विशाल और महाराष्ट्र से नारायण इंगले, आशीष मुनेकर और सोपान तायरे का। जी हाँ साथियों, आरंभ हो चुका है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम गीत बात और SMS। छत्तीसगढ़ के साथी मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी एंड आशीष शिवन्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, नाजिया इब्राहिम, शायना हसन, सैयद मजरूर, आप सभी सहारनपुर के श्रोता। इसी के साथ मोहम्मद साजिद, मोहम्मद साबिर परमाना, मोहम्मद जाहिद अली, साइद अली, आप सभी मधुबनी बिहार से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। इसी के साथ जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक, श्रीमती रोशनी और प्रांजल। महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं विजय शगोकार, गुरुजी, जयश्री एंड ऋषिकेश, रेणुका। उमाली से हैं उद्धव, अनुप कुमार, आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका बहुत धन्यवाद। पूर्वी रूही, शक्ति, भक्ति, अनु, अनन्या, आदर्श, लव और नामदेव परिवार हमसे जुड़ रहा है। बाल मनोहर, आप सभी बच्चे हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद। संतोष, अभय, अनिल, अजित, अनिता, ज्योति, संजना, रेखा, भारती, आप सभी श्रोताओं का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, गुजरात गांधीग्राम से। दिलदार, मीरी, ज्योति, जानवी, दीक्षांत, आप सभी छत्तीसगढ़ के श्रोता। नासिर, नाजिया, नासिर, साजिद महाराष्ट्र से जुड़े हैं। अहमदनगर से जुनेद, सबिहा, मिखाइल एंड जैनब। अगला मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र से वासुदेव, अनीता एंड रमेश राव। सुखरी कला से जुड़ रहे हैं अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका एंड अंजलि। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता और प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठाणा से डॉक्टर सुरेश, अनीता, आरती, प्रसाद यादव, सोनल, बेबीसिया, आप सभी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का ये संदेश पहुंचा रहे हैं खंडवा से अब्दुल गफ्फार, डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। कार्यक्रम का ये मैसेज जुड़ रहा है फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र हेयांश और आप सभी छत्तीसगढ़ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। गार्डन रोड पैठण से बाबा साहेब, ज्योति, शुभम और महेश।

मलकापुर से हैं संजय, सौभाग्यवती, उषा। कार्यक्रम का ये संदेश फिरोजपुर से आया है स्वर्ण सिंगल का। दलजीत, राजदीप, गुरनाल, अविराज और गुरनूर, शुभदीप, सभी साथियों को बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं सौरभ, प्रकाश, बल्लू, तरुण, श्रीनिका, श्रीनिजा। कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का हमारा दिल से शुक्रिया। जलालाबाद वेस्ट से जुड़े हैं सुरेश, पूनम, विशाल, दिशानी, निमित। अगला संदेश मधुबनी बिहार से जुड़ रहा है राज कुमार गुप्ता का। विनीत गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार और मित्रगण। इसी के साथ छपरा दालदली बाजार से जुड़े हैं संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार, सर्वजीत और सुधांशु। सभी साथी अपने परिवार और साथियों के साथ हम तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष। पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, रजमत, मुरली, नीरा, ज्योति, प्रहलाद। हमारे अगले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से ही मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार एंड डिकेश। आइए सुने आप सभी की पसंद का एक सदाबहार गीत फिल्म गरोंदा से है, भूपेंद्र और रूना लैला के सुरों में।

0: दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

गीत बात और एसएमएस में हमारा अगला संदेश जुड़ा है सतीश अनेजा विमला अनेजा का चंडीगढ़ से। पुनावाले पुणे से जुड़ रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अभिका, विशाखा, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, क्रांति भगत, कामेश्वर प्रसाद भगत, अरुण कुमार, मालदीव, अंजलि और जय मंत्री, आप सभी का स्वागत। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा एंड कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, आपको भी हमारा नमस्कार। अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्मी मल्होत्रा, कोयल, नानक चंद, आप सभी पानीपत से हैं। और रोहतक से जुड़ चुके हैं पीयूष, कोयल एंड डुग्गू भाविक सिक्का, सारा परिवार हमसे जुड़ रहा है। राजेश, सुरेखा एंड शुभम, अक्षय, खंडवा से, आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र से श्रीराम, उषा, वैष्णवी, पूनम एंड युवराज। इसी के साथ अगला संदेश पहुंचा रहे हैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी। अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है प्रकाश जैन ने नांदेड़ से, लातूर से संगीता, सूरज, पीआर जैन ने।

त्रिपति से हमें अपना संदेश लिख भेजा है प्रकाश श्यामला ने। पप्पू राजा, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और पूरा खुश दिल परिवार खुश होकर हमारा कार्यक्रम सुनता है पंजाब से। हर बार आपका जब भी मैसेज पढ़ते हैं वास्तव में दिल खुश हो जाता है। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव बघेरा दुर्ग से, मोहम्मद अब्दुल, बाबा अंजाना, मोहम्मद यूसुफुद्दीन तेलंगाना भोंगीर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। राम दुलारी, चंद्रेश कुमार, रामशरण, चंद्रकला, शशि कांता छत्तीसगढ़ के श्रोता। छत्तीसगढ़ के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शिद्दत से हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। आरती, पिंकी, मिंटू एंड वर्डिंग, नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार। आपने लिखा नहीं आप कहाँ से हैं। मुकेश, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी, अगेन छत्तीसगढ़। अगला संदेश जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे देशमुख, डॉक्टर प्रशांत एंड जगुताई कुमार, संचित, प्रथमेश, सर्वत, हर्षिता, सानवी और प्रणाली। इसी के साथ अगले श्रोताओं से जुड़ रहे हैं अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमिता पटेल। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी जी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, सभी कार्यक्रम सुन रहे श्रोताओं का शुक्रिया। समस्तीपुर बिहार से मीरा, ज्योति, रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह, सिद्धार्थ, अर्चना, प्रणय, हीरा।

नमन प्रतिबताई, आप सभी अमरावती महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हुए हैं। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुष वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवासी लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये संदेश हम तक पहुंचा है महाराष्ट्र से अभिजीत एंड सरिता, प्रणिता, प्रिंस, एकांश और लाडला टुक टुक। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किस्सुतासु, अनव और सत्यम झारखंड से हमें अपना संदेश लिख भेजा है। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत ब्रह्मचारी फिल्म से। स्वर सुमन कल्याणपुर के हैं।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं गंज डंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख शमा परवीन साइमा सरफराज गुलफराज और बेबी मुस्कान मोहम्मद कलीम जहीरा बेगम मोहम्मद अयान मोहम्मद उस्मान भाई शमशुल यासीन आप गंज डंडवारा से हमसे जुड़ चुके हैं। खंडवा से कुलदीप जगदीश और प्रभा रानी अगला संदेश पहुंचा रहे हैं। खलीफा की बाबरी से राम देवरा और डांगरी से बाबू राम। तेलंगाना से जुड़ चुके हैं अजीज मतीन भाई शेख चांद फारूक फूलवाले सईद खलील मौसा करीम शेख सलीम आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं कार्यक्रम सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र से कल्पना ताई लक्ष्मण राव शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल रक्षता रियांश और पूरा लोखंडे परिवार। शिवाजी चौक कटनी से जुड़ चुके हैं अनिल ताम्रकार और अमर दिलीप राजू रंजन संजीव विपिन अरुण संजय सोनी पवन यादव सुनील जैन लालू सोना मोना हन्नी यश और सोम्या और उनके साथ उनके मम्मी पापा। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सुधा काजल मीरा सोनाली अनामिका आप सभी बिहार रेडियो लिसनर क्लब से जुड़ रहे हैं। अगले श्रोता दुखी राम यादव स्नेहलता और कौशल यादव छत्तीसगढ़ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। संदीप मक्कर ज्योति मन्नत भरत साहनी आप सभी पिंगावाला चौक से हमसे जुड़ चुके हैं। हरदेव बलविंदर जयतेग और मिक्का आप सभी पंजाब के श्रोता हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव छत्तीसगढ़ से कमलेश जितेंद्र और पायल छत्तीसगढ़ से कमलकांत प्रमिला नेहा पुष्पराज और ऋषभ। अगले श्रोता आफिया नौरीन मास्टर अब्दुल आप सभी बनारस से हैं। जौनपुर के हैं इरशाद कामरान अरमान नवीद और अजरा तबस्सुम। रेडियो मथुरा वृंदावन आपको नमस्कार। नमस्कार जी ये श्रोता छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम हमीदुन जीजान अहमद शाहनवाज और सिद्दीकी परिवार बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अगला संदेश हम पढ़ रहे हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान हसीना बानो एलिजा नायाब और लड्डू। कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर अनिल शर्मा माहौली से टीडी मल्होत्रा कालका से शुभचंद्र बजाज बहुत सारे श्रोता हमसे अलग अलग जगहों से मिलते हैं अलग अलग राज्यों से हमें अपना संदेश भेजते हैं बहुत अच्छा लगता है। अभी राजस्थान का ये संदेश दातार सिंह का है संगीता इनके साथ जुड़े हुए हैं तुषार सिंह रिंकी और साथी आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। स्वीटी छावड़ा इंद्रजीत कौर छावड़ा रविंद्र आप सभी दिल्ली के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से शेफाली शेफी डेविस बिमला और सतीश अनेजा अरुणा अनंता चेतन

सुलोचना मस्तानपुरा से हम तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। रमेश और धनंजय आप अकोला से जुड़ रहे हैं। बेगम नजमा, बेगम रुमा और मोहम्मद आसिफ आप सभी मुंबई के श्रोता हैं। बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब। ये संदेश हमें मिला है मजनू का टिल्ला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत फिल्म कटी पतंग से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

कृष्ण, प्रशांत, रुचि, यशराज, सुनीता, आप सभी पांडरपुर सिटी से हमसे जुड़ रहे हैं। मेन रोड राजनगर से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, क्रांति एंड रानी संगीता पासवान, मेनका, भुलिया देवी और कलुआ, आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। मालवा रोड श्रोता संग्राम, आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश, श्रीमती रंजू, युवराज और शिवांगी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। चलते चलते

0: विनोद, वीपी, रंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीके, कैलाश, नीलम, रामा एंड पाली, सुनील पाठक, वीके पुरी, विनोद पुरी, आप सभी हमसे लुधियाना से जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी हमसे जुड़ते हैं और हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अगला जो मैसेज दिया वो लिखा है कि हम भी सुन रहे हैं 12 बजे से, बहुत शुक्रिया, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और इतने संयम से सुन रहे हैं। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागिनी रिया रेणु, दिव्यांशी, आराधना रानी एंड रोनिका यादव, आप बुंदेलखंड से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। साधुल शहर से राम कुमार और चंद्रकला रेवाड़। साथियों, बस इसी के साथ गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रांझा गायन। कलाकार हैं भगवान दास अज्ञानी।
4: हे बांदी, 12 और 24 बरस या जंगल में मोकू, मालिक की इबादत करते करते है गई। आज तक कभी ना मेरे बड़े भैया ने बुलायो और ना मेरी हीर भतीजी ने बुलायो। ये तो बता बांदी कि उसके ऊपर कोई आफत मुसीबत आ गई है। तो बांदी क्या कहती है?

0: आ करके दरवाजे पे बांधी और बाबा के पास हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, बाबा मेरी गलती को क्षमा करना क्योंकि मैं तो उसकी दासी हूं और महाराज आपको मोती महल में बुला रही है।
1: चले
0: आगे बांधी और पीछे बाबा चल दिए। जब महल में आते हैं तो उसके चाचा की नजर जब बेटी के चेहरे पे पड़ती है तो चेहरा देख करके और हीर के चाचा क्या कहते हैं,
1: क्या कह रहे हैं भैया।

चाचा घबरा जाता है कि मेरी एक भतीजी और वो भी जहर खा करके यानी हीरे की अंगूठी को चाट करके मर जाएगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ लड़की नहीं रहेगी। इसलिए चाचा अपनी भतीजी से क्या कहता है, हीरो से,

सज्जनों, इतनी बात सुन करके चाचा बोलो बेटी एक कागज पे परवानो लिख दे और बाकी पहचान तेने बताई दी है, मगर लिख दियो और मैं जा करके तेरे रांझे का पता लगा करके लाऊंगा और तेरा निकाह उससे कराऊंगा। महात्मा सिल्लोड़ी लो करके बैठ गए और अपनी भांग घोंटने लगे। भांग घोंटने के बाद में छान छून करके और चिलम लगाई, चिलम लगा करके और हीर ने परवाना चाचा को दे दिया। परवाना ले करके और चाचा चल देते हैं। तो आज हमारे रांझे में सत नदी कहते हैं, सत की नदी, मगर आज के जमाने में हम उसको सतलज नदी बोलते हैं। बहुत गहरा, बहुत लंबाई चौड़ाई उसकी ज्यादा है। बाबा वहां कर आकर के नदी के पार पर और देखने लगे बड़ा लंबा चौड़ा फांट है। तो एक मलाकी खड़ी हुई थी और मलाकी से क्या कहते हैं बाबा।

फतूरी से कहते हैं। बाबा ने अपनी फतूरी उतार करके और उस सतलज नदी के ऊपर पानी पे बिछा दी और पढ़ पर पढ़ करके बिस्मिल्लाह और अल्लाह का नाम लेकर के अल्फी पे बैठ गए फकीर और धीरे धीरे धीरे धीरे पार हो गए। इधर भूरा भैंसा तैर करके पार हो जाता है और जब पार हो जाता है तो नाप वाली देखती रह जाती है कि ये तो बिना डोंगे के इतनी लंबी, पर मालिक की कृपा थी, उनकी इबादत का फल था उनके पास में। जा करके पल्ली पार पहुंच गए हैं, पानी पैसे अपनी अल्फी पहन करके और अपने चल देते हैं।

जंगल में आकर के बाबा क्या देखते हैं दूर से, एक बहुत बड़ा बच्चों का यानी ग्वारियाओं का झुंड लगा हुआ है और दो भैंसा आपस में लड़ रहे हैं।

0: बाबा धीरे धीरे करके उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो बाबा क्या करते हैं,
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाया रांझा गायन, कलाकार थे भगवान दास अज्ञानी। इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम

इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं। 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए।
0: प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नेते और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डोसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 75,676 पर

0: और निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 23,662 पर था। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए आप जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात्रि 10 बजे से आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विदुषी कृष्णा विष्ट का ख्याल गायन। ख्याल गायन आप सुन सकेंगे राग रागेश्वरी में। कार्यक्रम में तबले पर संगत होगी गुलाम साबिर की, हारमोनियम पर संगत देंगे बाबू खान। राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे से। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा। मनी टॉक 9:30 से, मंथन 9:45 से, दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

अपने सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 से कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसी के साथ आप सुन सकेंगे लघु परिचर्चा। विषय रहेगा जीवन कौशल बुनियादी शिक्षा में नवाचार। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी रहेंगे नरेंद्र तिवारी और कृष्ण वीर। संचालन ओपी सिंह का रहेगा। इसी के साथ युवा साथी फिल्म संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनीता लोग दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय लेकर आएंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसी के साथ एक और विषय लेकर आएंगे डिजिटल फ्रॉड से महिलाओं की सुरक्षा। कहानी शीर्षक होगा पछतावा, कहानीकार होंगी पूर्णिमा। इसी के साथ फिल्म संगीत और घरेलू टिप्स। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आएंगे संध्या 6:15 से। इस कार्यक्रम में सुनिएगा भक्त कथा शीर्षक घना भगत। कथाकार होंगे विष्णु शर्मा।

किसान भाई और बहनों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी। संध्या 6:50 से ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी संध्या 7:31 से आप सुन सकेंगे। संध्या 6:30 पर समय रहेगा संध्या वंदन कार्यक्रम का। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आप सुन सकेंगे। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तरानों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 से।

संवेद सुरों में अभी आपने सुना देशगान FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक।

नमस्कार बहनों, मैं हूं रेशमा अग्रवाल। आकाशवाणी के आपके अपने वनिता लोक कार्यक्रम में आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इल्म की रोशनी से हर अंधेरा मिटाया जा सकता है, एक अक्षर से जीवन का रास्ता बदला जा सकता है। पढ़ेगा हर इंसान तभी आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। शिक्षा से ही बनता है सशक्त समाज और सशक्त इंसान। और इसी सोच के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर हम अपनी बहनों से साझा कर रहे हैं कुछ जानकारी। बहनों, साक्षरता केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मविश्वास, जागरूकता और आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल यानी 8 सितंबर को आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1965 को 8 सितंबर को इस दिवस के रूप में घोषित किया था और पहली बार इसे 1966 में मनाया गया था। बहनों, इसको मनाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक स्तर पर साक्षरता के महत्व और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। साक्षरता का अर्थ केवल अक्षरों को पहचानना या अपना नाम लिखना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वह है जो व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने और सही और गलत में अंतर समझने तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनने की क्षमता देती है। और कहा भी गया है कि शिक्षा वह दीपक है जिसकी रोशनी से जीवन की राह आसान हो जाती है। आज के समय में बहनों, आप देख ही रही हैं कि साक्षरता का स्वरूप भी बदल रहा है। किताब पढ़ना लिखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है डिजिटल साक्षरता। आज मोबाइल, इंटरनेट हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हमें यह भी जानना आवश्यक है कि इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी में क्या सही है और क्या गलत, ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचना है और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित कैसे रखना है। साक्षरता का सबसे बड़ा प्रभाव बहनों, महिलाओं के जीवन में दिखाई देता है। एक शिक्षित महिला अपने बच्चों की पढ़ाई को बेहतर समझ सकती है और आर्थिक मामलों में भागीदारी कर सकती है। और वर्तमान में कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बहनें चल भी रही हैं, तो यह सबसे प्रमाण है साक्षरता का। और अपने स्वास्थ्य तथा अधिकारों के प्रति जागरूक भी रह सकती हैं। इसलिए महिला साक्षरता वास्तव में पूरे परिवार की प्रगति का आधार बनती है। हमें उन वयस्कों को भी शिक्षा से जोड़ना होगा जिन्हें किसी कारणवश बचपन में पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया। किसी व्यक्ति को पढ़ना लिखना सिखाना केवल उसकी मदद करना नहीं, बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर देना है। बहनों, साक्षरता का

संबंध रोजगार और आत्मनिर्भरता से भी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति आवेदन भर सकता है, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है और नई तकनीक सीखकर अपने लिए रोजगार के अवसर तलाश कर सकता है। इस वर्ष साक्षरता दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि शिक्षा का संबंध केवल मनुष्य से नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण और पृथ्वी के भविष्य से भी है। जब व्यक्ति जागरूक होगा तभी वह जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझेगा, क्योंकि बहनों हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसकी थीम है, यूनेस्को की थीम है, लोगों पृथ्वी और समृद्धि के लिए साक्षरता। और इसका महत्व है बहनों, यानी यह दिन हमें याद दिलाता है कि पढ़ना लिखना केवल एक जरूरी कौशल नहीं बल्कि हर व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। तो आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें, अपने आसपास यदि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें, यदि कोई बड़ा पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उसे भी सीखने में सहयोग दें और अपने परिवार में ऐसी संस्कृति विकसित करें जहां कभी सीखना बंद ना हो, क्योंकि साक्षरता केवल शब्दों को पढ़ने की क्षमता नहीं बल्कि जीवन को समझने की शक्ति है। तो अंत में यही कहना चाहूंगी, अक्षर ज्ञान से शुरुआत होती है, जागरूकता से बदलाव आता है और शिक्षा से समाज आगे बढ़ता है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहनों अब सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

माँ और बाप वो हस्तियां हैं जिनकी दुआओं में हमारी पूरी दुनिया बसती है। माँ की ममता और पिता का संघर्ष दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को संवारते हैं।

0: हम अक्सर उनकी कीमत बहनों तब समझते हैं जब वक्त हमारे हाथ से निकल चुका होता है। तो आइए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हमें अपने माँ बाप के प्रति प्रेम और सम्मान का एहसास कराएगी। कहानीकार हैं पूर्णिमा और कहानी का शीर्षक है पछतावा।
1: शहर के सबसे बड़े होटल के बाहर उस रात सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थीं। होटल के अंदर एक बड़ा समारोह चल रहा था। शहर के बड़े बड़े व्यापारी, नेता, अधिकारी और नामी लोग मौजूद थे। मंच पर एक युवक खड़ा था, महंगा सूट, हाथ में चमकती घड़ी और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसका नाम था अभय मल्होत्रा। आज अभय को शहर का युवा उद्यमी सम्मान मिलने वाला था। तालियां बज रही थी, कैमरे चमक रहे थे। एंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, आज जिस युवा ने अपनी मेहनत से इतनी कम उम्र में करोड़ों का कारोबार खड़ा किया है, उसकी सफलता की कहानी हम सबके लिए प्रेरणा है। अभय मुस्कुराया, तालियां और तेज हो गईं। लेकिन तभी भीड़ में पीछे एक बुजुर्ग आदमी, रामदीन, अपनी पत्नी का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं, कुर्ता भी पुराना था। विमला ने भी फीकी सी साड़ी पहन रखी थी। वे दोनों किसी को ढूंढ रहे थे। रामदीन ने जैसे ही मंच की ओर देखा, उसकी आंखों में खुशी छा गई। वह अपनी पत्नी से बोला, देख विमला, हमारा अभय कितना बड़ा आदमी बन गया है। विमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ जी, आज तो हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उन दोनों पर अभय की नजर पड़ी, उसकी मुस्कान अचानक ही गायब हो गई। उसने तुरंत अपने मैनेजर को इशारा किया। मैनेजर उनके पास गया और धीरे से बोला, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रामदीन मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा, हम अभय से मिलने आए हैं। हम माता पिता हैं अभय के। मैनेजर ने अभय की तरफ देखा। अभय ने नजरें फेर ली और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, उन्हें पीछे वाले दरवाजे से बाहर भेज दो। मैनेजर कुछ समय के लिए चुप रह गया। सर, लेकिन, अभय ने इस बार कठोर आवाज में कहा, मैंने कहा ना, बाहर भेज दो। रामदीन ने यह बातें सुन ली। विमला रामदीन का हाथ पकड़कर कहती है, चलो जी। विमला और रामदीन की आंखों में शिकायत नहीं, सवाल था। जिस बेटे के लिए हमने पूरी जिंदगी लगा दी, आज उसके पास हमारे लिए 2 मिनट भी नहीं है। हमें यहाँ देखकर शर्म आ रही है। दोनों वापस मुड़ गए। 15 साल पहले, जब अभय सिर्फ 12 साल का था, उनका घर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में था। उसके पिता रामदीन सिलाई करते थे। घर के बाहर एक छोटी सी दुकान थी। सुबह से रात तक रामदीन लोगों के कपड़े सिलते, कभी पैंट, कभी ब्लाउज, कभी स्कूल की यूनिफॉर्म। कमाई बहुत ही कम थी, लेकिन एक बात थी, वह थी रामदीन का सपना। वह हमेशा अभय से कहते थे कि अभय, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। अभय हंसकर पूछता, कितना बड़ा पापा? रामदीन कहते, इतना बड़ा कि तेरा बाप तेरे सामने खड़ा होकर खुद को छोटा समझे। अभय हंस पड़ता, मैं आपको कभी छोटा नहीं समझूंगा। रामदीन उसकी पीठ थपथपाते, बस यही बात जिंदगी भर याद रखना। बिमला भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। स्कूल की फीस भरनी होती तो घर का राशन कम कर देती। अभय को जूते चाहिए होते तो अपनी साड़ी का बिचार छोड़ देती। अभय को शहर में कोचिंग करनी थी, फीस बहुत ज़्यादा थी। रामदीन ने दुकान का पंखा बेच दिया। पत्नी ने पूछा, इतनी गर्मी में आप बिना पंखे के कैसे बैठेंगे? रामदीन हंस दिए, मेरी गर्मी का क्या है बिमला, बच्चे का भविष्य ठंडा होना चाहिए। समय बीतता गया। अभय पढ़ाई में अच्छा था। 12वीं में उसने अच्छे नंबर हासिल किए। शहर के कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। कॉलेज की फीस और रहने का खर्च बहुत ज़्यादा था। रामदीन ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़, अपनी ज़मीन बेच दी। विमला ने विरोध किया, यह ज़मीन मत बेचो, बुढ़ापे में यही तो सहारा होगी। रामदीन ने कहा, क्यों चिंता करती हो विमला, बुढ़ापे में बेटा सहारा देगा। विमला मुस्कुराई और बोली,

अगर बेटा बदल गया तो? रामदीन ने तुरंत कहा। मेरा अभय नहीं बदलेगा बिमला। बिमला चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। पर माँ कभी कभी वो देख लेती हैं जो एक पिता नहीं देख पाता। अभय शहर चला गया। शुरू में वह हर शाम फोन करता। धीरे धीरे फोन आना कम हो गए। पहले रोज, फिर 2 दिन में, फिर सप्ताह में, फिर सिर्फ जरूरत पड़ने पर। एक दिन अभय ने फोन किया, पापा मुझे पैसे चाहिए। रामदीन ने पूछा, कितने? अभय ने कहा, पापा 1 लाख रुपए। रामदीन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, इतने पैसे? कॉलेज का प्रोजेक्ट है पापा। रामदीन ने अगले ही दिन पैसे भेज दिए। वास्तव में तो कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं। अभय ने वो पैसे एक महंगा मोबाइल खरीदने में खर्च कर दिए थे। कॉलेज खत्म हुआ, अभय को नौकरी मिल गई। फिर उसने अपना कारोबार शुरू किया, व्यापार चल पड़ा। कुछ सालों में लाखों कमाने लगा, फिर करोड़ों। अब उसके पास बड़ा घर था, बड़ी कार थी, महंगी महंगी चीजें थीं, नए नए दोस्त थे। और सबसे बड़ी बात, अब उसे अपने पुराने घर में शर्म आने लगी थी। एक दिन रामदीन और बिमला अचानक अभय से मिलने शहर पहुंचे। बिमला बेटे के लिए घर का बना अचार और लड्डू भी लेकर आई थी। रामदीन भी बेटे के लिए उपहार लाए थे। दोनों बेटे के ऑफिस पहुंचे। रिसेप्शन पर लड़की ने पूछा, किससे मिलना है आपको? रामदीन ने गर्व से कहा, अभय से। हम पिताजी हैं उसके। लड़की ने फोन किया, सर आपके माता पिता आए हैं। दूसरी तरफ कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर अभय ने कहा, उनको बोलो मैं मीटिंग में हूँ। रामदीन ने सब सुन लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, उसे काम होगा। बिमला ने अचार का डब्बा वहीं रख दिया, यह उसे दे देना। शाम को जब अभय ऑफिस से निकला तो वह डिब्बा दिखा। उस पर कागज चिपका था, मेरे बेटे के लिए माँ के हाथ का अचार। अभय ने डिब्बा उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अभय ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। माँ बाप से पूछना तो दूर, बताना तक जरूरी ना समझा। पर माता पिता तो माता पिता होते हैं, बच्चे की हर खुशी में खुशी रहते हैं। अभय की पत्नी रिया आधुनिक विचारों वाली थी। उसे गांव का रहन-सहन और गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन रामदीन और बिमला बेटे के घर आए। रामदीन सुबह जल्दी उठ जाते थे, बिमला भी घर के कामों में रिया की मदद करती रहती थी। एक दिन रिया ने अभय से कहा, आपके माता पिता यहाँ कितने दिन रहेंगे? अभय ने कहा, कुछ दिन। रिया बोली, कुछ दिन मतलब कितने दिन? रिया ने कहा, हमारी सोसाइटी में लोग आते हैं, आपके पापा ऐसे कपड़े पहनते हैं, मुझे अजीब लगता है। अभय ने पहली बार में ही रिया की बात मान ली। उसने माता पिता से कहा, आप लोग गांव वापस चले जाइए। बिमला ने पूछा, क्यों बेटा? माँ हमारी लाइफ अलग है। रामदीन ने कहा, हमने तो सोचा था बुढ़ापे में बेटा तेरे साथ ही रहेंगे। अभय ने नजरें झुका ली। पापा मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। रामदीन मुस्कुराते हुए बोले, हमें तेरे पैसे नहीं चाहिए। अभय ने पहली बार कठोर होते हुए बोला, तो फिर चाहिए क्या आपको? रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बिमला का हाथ पकड़ा और चल दिए। गांव लौटकर दोनों ने पुरानी जिंदगी शुरू कर दी। एक दिन रामदीन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अगली सुबह रामदीन नहीं रहे, बिमला अकेली रह गई। बिमला के कानों में रामदीन के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, अभय को मत बुलाना बिमला, उसे परेशानी होगी। अभय की जिंदगी तेजी से आगे बढ़ रही थी। माता पिता की याद लगभग उसके जीवन से जा चुकी थी। एक दिन उसका भरोसेमंद पार्टनर उसे धोखा देकर करोड़ों रुपए लेकर भाग गया। अभय पर बैंक का कर्जा हो गया। लोग फोन उठाना तक बंद करने लगे थे। अभय ने सिर पकड़ लिया, अब सब खत्म हो गया। तभी उसके पास गांव के वकील शर्मा जी का फोन आता है। तुम्हारे पिताजी की एक चीज तुम्हें देनी है। अभय चिढ़कर बोला, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। शर्मा जी बोले, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अगले ही दिन अभय गांव पहुंच गया। शर्मा जी ने कुछ कागज अभय को दिए जिनमें

0: लिखी हुई चिट्ठी भी शामिल थी। अभय ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। बेटा अभय, जब तू यह चिट्ठी पढ़ रहा होगा, मैं इस दुनिया में ना रहूं। अभय की आंखें नम हो गईं। तुझे याद होगा कि तेरी कॉलेज की फीस के लिए मैंने जमीन बेच दी थी, लेकिन शायद तुझे यह नहीं पता कि उसका एक हिस्सा मैंने जानबूझकर नहीं बेचा था। उस जमीन की कीमत आज बहुत बढ़ गई है। मैंने उसे तेरे नाम कर दिया है। अभय की आंखों में पछतावे के आंसू गिरने लगे। उसे अपने गुनाह याद आने लगे। पापा, आपने मेरे लिए इतना किया। और मैं कहते कहते रो पड़ा। माँ के पास जाकर अभय ने के पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ कर दो। बिमला उसकी तरफ देखी पर बोली कुछ नहीं। बिमला कुछ देर बाद गुस्से में बोलती है, किस बात की माफी? अभय ने सर झुका लिया। हर बात की माफी माँ, हर बात की माफी। अभय ने माँ का हाथ पकड़ लिया और बहुत देर तक दोनों कुछ नहीं बोले, क्योंकि रिश्तों में माफी शब्दों से नहीं, माँ का हाथ पकड़ लेने से मिल जाती है। कहानी यहीं खत्म होती है, पर असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जिन माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, क्या हम उनके बूढ़े कदमों के साथ चलने के लिए अपने जीवन से थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? पैसा कमाया जा सकता है, घर दोबारा बनाया जा सकता है, रिश्तों में आई दरारों को भी कभी कभी भरा जा सकता है, लेकिन अगर माँ बाप भी चले गए तो दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी उनके हाथ का एक निवाला वापस नहीं ला सकती।
1: अभी आप सुन रहे थे कहानी जिसका शीर्षक था पछतावा। कहानीकार थी पूर्णिमा। बहनों, यह बात तो सच है कि माता पिता हर हाल में बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, चाहे उनके बच्चे उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें। फिर भी माता पिता हर हाल में बच्चों के हित के लिए ही सोचते रहते हैं और उनकी गलतियों को माफ़ करते रहते हैं। ऐसे ही होते हैं माता पिता, तभी तो बहनों उन्हें धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है। कहा भी गया है कि माँ की ममता में ईश्वर की मूरत नजर आती है, पिता के साए में हर मुश्किल आसान हो जाती है, जिनके चरणों में मिलती है दुआओं की छांव, माता पिता ही तो हैं धरती पर भगवान का स्वरूप।

बहनों, जैसा कि आप सभी और हम देख ही रहे हैं कि मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन खरीदारी से लेकर बैंकिंग, बिल भुगतान और पैसे भेजने तक अधिकांश काम घर बैठे ही हो जाते हैं। लेकिन बहनों, इसी सुविधा के साथ साइबर ठगी का खतरा भी बढ़ा है। अक्सर ठग फोन कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। कभी तो बैंक अधिकारी बनकर, कभी किसी ऑफिस का नाम लेकर, कभी किसी परिचित की आवाज में और कभी किसी आकर्षक ऑफर के नाम पर लोगों से उनकी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो बहनों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी महिला ही जल्दी ही बातों में आ जाती हैं जानकारी के अभाव के कारण। क्योंकि कई बार ठग नौकरी, ऑनलाइन शॉपिंग, लोन, पुरस्कार और निवेश या सोशल मीडिया से जुड़े बहाने बनाकर विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। और हमारी बहनें तो होती ही हैं, भावुक होती हैं, दयालु होती हैं, तो जल्दी ही उनके विश्वास में आ जाती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप बहनों को OTP, UPI पिन और ATM पिन, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी है। बैंक या कोई भरोसेमंद संस्था आपसे इस तरह की गोपनीय जानकारी फोन पर नहीं मांगती है, यह आपको पता होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति फोन करके आपको कहे कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, आपकी KYC पूरी नहीं है या आपका कोई पार्सल अटक गया है, तो बहनों, घबराने की बजाय पहले उसकी सत्यता को जांच लें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई ऐप डाउनलोड ना करें और ना ही अनजान लिंक पर क्लिक करने से भी आप बचें। UPI से भुगतान करते समय भी विशेष सावधानी रखें। पैसे प्राप्त करने के लिए सामान्यतः UPI पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति पैसे भेजने के नाम पर आपसे पिन डालने को कह रहा है, तो बस आप वहीं पर सावधान हो जाइए। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी सीमित रखें। घर का पता, बैंक संबंधी जानकारी, पहचान पत्र या ऐसी तस्वीरें साझा ना करें, क्योंकि बहनों, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए आप सावधानी से बचें। अगर आपके साथ कुछ कुछ हो भी जाता है गलत, तो आप राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर पर 1930 पर संपर्क करें। तो अंत में बहनों, मैं यही इन लाइनों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। तो वो कुछ लाइनें हैं इस तरह: डिजिटल दुनिया में कदम बढ़ाएं, मगर साब

सावधानी साथ रखें। ओटीपी हो या पासवर्ड, इसे हमेशा राज रखें। अनजान लिंक और कॉल से थोड़ा सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और बेफिक्र रहिए। इन्हीं चंद लाइनों के साथ हमारी प्यारी प्यारी बहनों को आपकी सखी, आपकी सहेली रेशमा अग्रवाल का नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे धुरंधर फिल्म से लिया ये गीत। इस गीत को अपने सुर दिए शाश्वत सचदेवा और बॉम्बे रॉकर्स ने।

अभी आपने सुना सुनिधि चौहान शैल हांडा को फिल्म गुजारिश में। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: कहा भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। GFF वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। GFF 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। GFF में इस वर्ष एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद यह याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
2: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
3: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर

0: दावे के ऊपर। उसके बाद वो कहा सुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई, जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
1: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
3: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह चंघेल, मूरज चंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष चंघेल और नंदिनी चंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियां, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ एनसीईआरटी की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है, वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओं, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था। कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को

0: माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओं, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके संकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी, आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताजी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करें। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ, और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
2: छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
4: जी,
5: हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
2: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
5: 1, 2, 3 सब छुप गए ना। 98, 99 सौ, लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
3: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
6: अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
3: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
5: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
3: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
5: बबली तुम अलमारी के पीछे हो?
6: धप्पा!
5: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
3: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
5: मारिया तुम पलंग के नीचे हो?
7: नहीं, मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
8: अंदर छुपा।
5: मारिया
6: धप्पा!
7: अरे नहीं।
3: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
9: दादी दादी, दादी हिलना मत, जीत आया है, वो मेरे धप्पा बोल देगा।
5: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है, अभी जाके देखता हूँ।

0: हम धप्पा फिर पकड़ लिया।
1: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
2: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।

0: यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा,
0: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
2: जी धप्पा!
0: ओहो, अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।
1: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
0: एक दो तीन।
3: छुपन छुपाई है ना मजेदार खेल? तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ, ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
5: साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापकगण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए, और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
6: साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूं।
7: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
6: नमस्कार। आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों,

0: मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण ये संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी, आप
1: जी
0: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
1: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है।
2: बहुत अच्छे।
1: मीना
3: जी,
1: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
3: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
1: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
3: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
4: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
1: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई। इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
4: अच्छा।
1: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
0: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे?
4: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
0: अच्छा।
4: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
1: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
4: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
1: जी,
4: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
1: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली हो गई थी। उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
4: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
0: जी।
4: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर, इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
1: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
4: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
0: जी। नीलम जी, तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
5: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हील चेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
4: अच्छा, एक बात बताओ
5: जी,
4: सरिता व्हील चेयर का प्रयोग कब से करती है?
5: इसकी माँ ने बताया था कि व्हील चेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह

0: खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
1: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
2: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
0: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
1: हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है, और जो हर बच्चे में अलग अलग दिखाई देता है।
0: जी,
1: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
0: अच्छा,
1: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
0: ऐसा विकार होता क्यों है?
1: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
0: हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
1: सरिता, अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हाँ
2: जी मैडम।
1: हाँ, तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दे।
0: जी,
1: इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
0: जी,
1: केवल बच्चों को और उनके माता पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं, और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
0: जी ठीक है।
3: हाँ दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
0: जी डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है, ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
4: नमस्ते।
3: डॉक्टर पुष्पा, ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनू जी है ना, उनकी बहन की बेटी है।
1: अच्छा अच्छा। सीमा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
4: मैं 7वीं में पढ़ती हूँ।
1: रेनू जी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
5: डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी माँ से विस्तार में बातचीत की है।
1: अच्छा।
5: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी, और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
0: डॉक्टर पुष्पा, सीमा बहुत होनहार है, ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है, गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
5: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं, उस तरह ये खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है, कभी कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
1: अच्छा।
5: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
0: डॉक्टर पुष्पा, कभी कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
5: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
0: जी,
5: कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि ये कोई छूत की बीमारी ना हो,
1: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
0: सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
4: हाँ, समझ तो आता है पर लिख नहीं सकती।
5: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
1: अच्छा।
5: और ये साफ साफ बोल नहीं पाती, इसे लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते।
0: रेनू जी, इसको ये समस्या कब से है?
5: ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी, तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
1: अच्छा।
5: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी, शायद हो सकता है

0: चोट का प्रभाव हो। डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
1: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है, क्योंकि ये सातवीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
0: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
1: देखिए, इसको हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
2: जी, आज हमने तीन प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
0: जी,
2: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
0: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगे?
1: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
2: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
1: अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
3: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
0: भी अकड़ सी जाती हैं,
4: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
0: जी,
4: कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि ये कोई छूत की बीमारी ना हो,
1: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
0: सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
5: हाँ, संभव तो आता है, पर लिख नहीं सकती।
4: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है, पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
1: अच्छा।
4: और ये साफ साफ बोल नहीं पाती, इसलिए लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते।
0: रेनू जी, इसको ये समस्या कब से है?
4: ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी, तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
1: अच्छा।
4: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी, शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
0: डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
1: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है, क्योंकि ये सातवीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
0: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
1: देखिए, इसको हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
2: जी, आज हमने तीन प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
0: जी,
2: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और
6: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हों। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
7: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। एफएम

102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1966 को अपने 14वें सत्र में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया था और इसे पहली बार 1967 में मनाया गया। नीति निर्माताओं, अभ्यासकर्ताओं और आम जनता को अधिक साक्षर, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज के लिए साक्षरता के महत्व को समझाया गया।

और इसके महत्वपूर्ण महत्व की याद दिलाई जा सके, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। साक्षरता को हर व्यक्ति का मूलभूत मानवाधिकार माना गया है। साक्षरता सभी का मूलभूत मानवाधिकार है जो समानता, व्यक्तिगत विकास के रास्ते खोलता है। इस वर्ष के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है वो है लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए साक्षरता। ये लोगों इस बार बनाया गया है।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: और साथियों, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में लघु परिचर्चा, जिसका विषय है जीवन कौशल बुनियादी शिक्षा में नवाचार। इसमें प्रतिभागी हैं नरेंद्र तिवारी और कृष्णवीर, संचालन कर रहे हैं ओपी सिंह।
3: श्रोताओं, शिक्षा समाज का दर्पण होती है। शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा से हमारे जो गुण हैं, जो आंतरिक गुण हैं, वो बाहर निकल कर आते हैं। जीविका का साधन प्राप्त करने के लिए हो, जानकारी के लिए हो, शिक्षा सब में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करें, आधारभूत शिक्षा की बात करें, तो एक व्यक्ति के विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, या ये कहें कि एक समग्र और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हर समय सामने आती रही है, आज भी है, कल भी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, शिक्षा को जीवन से और बच्चों के सर्वांगीण विकास से कैसे जोड़ा जाए, उसमें क्या कुछ नवाचार हो रहे हैं, क्या कुछ पहल इस स्तर पर की जा रही है, आज हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ दो साथी हैं, श्री कृष्णवीर जी हैं और नरेंद्र तिवारी साहब हैं। आप दोनों मास्टर ट्रेनर हैं, इस नवाचार जो प्राथमिक शिक्षा में और आधारभूत शिक्षा में हो रहा है, साथ ही साथ इसी वर्ष आपको एजु लीडर्स जो अवार्ड्स है जो राज्य स्तर पर वो भी मिला है, वो भी इसी के संदर्भ में है। तो आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार तिवारी जी, अगर मैं ये जानना चाहूं कि जो आपका जीवन कौशल का जो कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित तौर पर वो भी इस प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करने के लिए चलाया जा रहा है, इसमें तो इस जीवन कौशल के कार्यक्रम और उसमें हो रहे नवाचारों के बारे में हम कृष्णवीर जी से जाने, लेकिन इस जीवन कौशल का ये जो कार्यक्रम है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये क्या है और इसके पीछे की जो भावना है वो क्या है इसमें।
4: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि सर ने कहा कि शिक्षा जो है हमारे जीवन का बहुत ही आवश्यक अंग है और शिक्षा के द्वारा ही अपने हम जीवन को हर तरह से आगे ले जा सकते हैं और उसी का ही एक पार्ट

0: जीवन कौशल है। जीवन कौशल को क्या है कि बेसिकली ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको प्रारंभ भी किया गया कि जीवन कौशल जो है वो बच्चे के या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहाँ कहाँ किस प्रकार भूमिका अपनी अदा कर सकता है, और स्वास्थ्य विभाग के बाद उसको फिर हमारे विद्यालयों में लाया गया और इसको हमारे जो अध्यापक हैं वहाँ उनको नोडल बनाया गया और उन सभी नोडल अध्यापकों को विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो जीवन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किस प्रकार से बच्चा जो है अपने जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मानसिक दबाव के, और अपने सभी स्वास्थ्य के पहलुओं को ध्यान में रख,
1: मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक हो, उसका मानसिक विकास हो और साथ ही साथ शिक्षा को बेहतर तरीके से आत्मसात कर सके, उससे जुड़ सके और शिक्षा के जो पहलू हैं उनको वो आगे अपने जीवन में अपना सके। ये एक कौशल के रूप
0: बहुत सारी कौशलों के रूप में गतिविधियों को बताया गया है कि ऐसा नहीं कि हम एक थियोरेटिकली रूप में ही बच्चे को बता दें कि जीवन कौशल क्या होता है कि आपको इस तरह से सोचना है, इस तरह से नहीं सोचना है, क्योंकि बच्चा क्या है आगे जब बड़ा होता है तो एक समाज का अंग बनता है और समाज को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: जी जी।
0: तो उसको उस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो किस समाज का अंग है, संवेदनाओं का उसके अंदर प्रादुर्भाव हो, दूसरे की भावनाओं को समझ सके, इसके अलावा उसके अंदर परिवार को लेकर, समाज को लेकर, देश को लेकर एक सकारात्मक सोच को लेकर वो आगे बढ़े। और कौशल का मतलब यह है कि उनको अपने जीवन में उतार रहे हो, मतलब एक दायरे में रहे हो,
1: विचार से चीज जो है क्रियात्मक पक्षता कर रहा है ना, और उसमें सिर्फ मेरा या मेरे परिवार का नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र और एक पूरा जो परिवेश है उससे वो अपना जुड़ाव महसूस करे, ये उस इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है इसमें।
0: दूसरा ये कि हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम एक विषय के रूप में चलता रहा, लेकिन वो एक विषय के रूप में ही रहा, वहाँ पर हम नैतिकता की बात करते हैं, चोरी करना पाप है या जो बुराइयां हैं उनके बारे में बात तो की गई, लेकिन उसको एक कौशल के रूप में बच्चा अपने जीवन में नहीं उतार पाया। तो उसमें लगभग 10 पहलू दिए गए हैं जीवन कौशल के कार्यक्रम में, उन 10 पहलुओं पर गतिविधियों के माध्यम से बच्चा जो है उसमें पूरी तरह से कुशल हो जाए,
1: मतलब जो जीवन के अंग है, चाहे उसमें सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि उस शिक्षा के माध्यम से जीवन को एक उपयोगी बनाना है, बेहतर बनाना है, उन्नत बनाना है और समाज के जो और भी पायदान है उनसे जुड़ना है, ये 10 उसमें कोई एकाध का जिसे उल्लेख करना चाहे।
0: एक महत्वपूर्ण है परानुभूति, एक वर्ड होता है सहानुभूति, एक होता है परानुभूति एम्पैथी। तो परानुभूति के अंतर क्या है कि बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो दूसरे की संवेदनाओं को अपने लेवल पर समझ सके। सहानुभूति तो ये होता है कि चलिए कोई दर्द से परेशान है, हमने सहानुभूति व्यक्त कर दिया, अरे बहुत परेशान है, लेकिन उसके दर्द को हमने महसूस नहीं किया।
1: जी, जी जी जी।
0: लेकिन परानुभूति में ये जीवन कौशल के अंदर है कि उसके दर्द को हम महसूस करें और महसूस करने के बाद हम उसको उस लेवल तक एक मदद के रूप में आगे हमको
1: जी
0: बढ़ सकें।
1: मतलब उस सामने वाले के दर्द को न सिर्फ महसूस करना है बल्कि उससे जुड़ करके उसको एक सहभागिता के साथ उसको मददगार,
0: सामने वाले को ये महसूस ना हो कि मेरे ऊपर कोई दया कर रहा है, तो वो एक जीवन कौशल का ही एक महत्वपूर्ण ये 10 में से एक बिंदु है।
1: इस तरह की चीजों को इसमें जोड़ा गया
0: इसमें।
1: कृष्णमीर जी हमारे साथ है, अगर हम इसमें एक जैसे बहुत बड़ा कॉमन सा होता है कि जब बच्चा स्कूल आता है तो अपना घर छोड़ करके आता है और घर में उसको एक नया वातावरण होता है, नए लोग होते हैं और एक अपनापन वो फील नहीं कर पाता, तो ये बहुत बड़ी समस्या रही कि बच्चे आते हैं ड्रॉप आउट हो जाता है, बच्चे चले जाते हैं, शिक्षा से नहीं जुड़ पाते, अपनापन महसूस नहीं कर पाते और शिक्षा का हमारा जो मूल उद्देश्य प्राप्त करने का उसको नहीं कर पाते उसमें। तो जो नवाचार की बात होती है जैसे आप तिवारी जी कह रहे थे कि इसमें भाई जीवन कौशल में बहुत सारी चीजों को समाहित करके ला रहे हैं और वो सिर्फ सिद्धांत तक नहीं है, उसका हम क्रियात्मक पक्ष लेकर के आ रहे हैं, उसको करके दिखा रहे हैं और टीचरों को करके दिखा रहे हैं उसमें, ताकि वो बच्चे तक वो डिलीवर हो सके। तो आप तो चूंकि उस स्तर पर कर रहे हैं, आप मास्टर ट्रेनर भी हैं, आपको अवार्ड भी मिला है और आप बच्चों तक उसको डिलीवर भी कर रहे हैं, तो इसमें नवाचार में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप करके देख रहे हैं और जो सहज रूप से बच्चे उसको कर सकते हैं उसमें।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि विद्यालय में जब बच्चा पहली बार जाता है अपनी क्लास में तो उसको एक डर महसूस होता है, क्योंकि सारे बच्चे उसके लिए नए होते हैं, सभी शिक्षक उसके लिए नए होते हैं, वो एक परिवार छोड़ के आया हुआ था। तो इसमें हम लोग उसको इस प्रकार से शिक्षा अध्ययन कराएं कि उसको वो माहौल मिले, कि उसको बिल्कुल अपने जैसा ही माहौल मिले और उसको बिल्कुल भी संकोच ना हो अपनी बात को कहने में, और हम भी उससे फ्रेंकली बात करें।

इस संदर्भ में जैसे हमने अभी तक हमको पुराने जमाने में पढ़ाया जाता था वर्णमाला के छोटे आ से अनार बड़े आ से आम, लेकिन आजकल तकनीकी का जमाना है, बच्चे को सहज बनाना है और हमें अपने साथ उसको जोड़ना है, तो उसी वर्णमाला को हम कैसे सिखा सकते हैं? जैसे एक सॉन्ग गा के उसको वर्णमाला भी आ जाएगी और वो सीख भी जाएगा और उसको बहुत ही मनोरंजन भी लगेगा। जैसे आ से अनार होता ही है, अब इसी का हम लोग अपना नया करके नएपन से करते हैं, जैसे आ से

0: चीनी। इस प्रकार से हम उसको, एक तो उसे यही नहीं पता लगा कि मैं बड़माला सीख रहा हूँ, और उस गाने के माध्यम से उसको
1: उसको एक कविता का रूप आपने दे दिया कि भाई उसमें बच्चा भी कंठस्थ करेगा, जुड़ जाएगा
0: जी जी।
1: और वो
0: और उसको वो एक कहानी के माध्यम से वो सोचने लगेगा कि आ से आम का पेड़ लगाओ, आम का पेड़ होता है उस पर आम भी लगता है, ई से इमली होती है वो खट्टी होती है। मतलब एक रटने वाली प्रक्रिया को बंद करके वो समझने वाली चीजें आनी चाहिए,
1: मतलब जो है थोड़ा सा उसमें क्रियात्मक पक्ष,
0: क्रियात्मक पक्ष भी आना चाहिए।
1: अब ये आपके हाथ में बहुत सारे कार्ड देख रहे हैं उसमें, जिसमे बहुत सारे ये कोड बना है, QR कोड बना हुआ है इसमें, तो क्या इन चीजों का क्लास में आप उपयोग कर पाते हैं?
0: जी सर, इसमें ऐसा रहता है, ये हमारे जैसे विद्यालय में जो भी क्रियात्मक चीजें होती हैं अधिगम को लेकर, बच्चों को सीखने सिखाने को लेकर, जैसे कोई बच्चे को हमने मुहावरे सिखाए, अब उसको एक प्रक्रिया तो होती है, आपने मुहावरा बोल दिया और रटा दिया, बच्चा सीख रहा है। एक प्रक्रिया होती है हम बच्चों को ग्रुप में पार्टिसिपेट कराएं, और जैसे 3-4 बच्चे ले लिए, और एक बच्चा जैसे राहुल है, और वो बच्चा संजय के पास जाता है कि अरे जी आपने आपके पर बेटी वाले देखने के लिए आए थे और आपने उनको अंगूठा दिखा दिया, क्या बात थी? तो दूसरा पक्ष बोलता है अरे वो हमसे दहेज मांग रहे थे, वैसे हमने मना कर दिया। तो बच्चा समझ गया कि अंगूठा दिखाना मतलब है कि मना कर दिया, वो मतलब
1: इनकार कर दिया,
0: इनकार कर दिया उस चीज को,
1: इनकार भी इस रूप में कि एक तरह से थोड़ा सा
0: उसको बाकी का प्रयोग भी पता लग गया।
1: अब इसमें जैसे ये तो मुहावरे की बात हुई, और बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, तो इसमें अब जैसे आपने QR कोड बनाए, बहुत सारी आपकी जो गतिविधियां क्लास की होंगी उनको आपने QR कोड के रूप में उस बच्चों के सामने रखा, तो आपकी क्लास में क्या आधारभूत जो सुविधा है इस तरह की है कि आप करके दिखा पाते?
0: लगभग हमारे पास जो भी QR कोड हमारे पास होते हैं उनको हम जैसे कार्ड के रूप में बच्चों के पास होते हैं, और बच्चों के जो कार्ड्स में जो एक्टिविटी लिखी हुई है, तो जैसे हमारा खुद का मोबाइल है, कई मोबाइल्स रहते हैं, तो मोबाइल से ही इसमें सारा कुछ हो जाता है, इसमें कोई लैपटॉप की कंप्यूटर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल उस QR कोड को अपने मोबाइल के जरिए एक ऐप के थ्रू स्कैन करके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं, और बच्चा अपनी वीडियो को देखकर अपने आप को तो बहुत ही अच्छा महसूस करता है, और घर पे भी जाके बताता है पेरेंट्स को कि आज मैंने अपने मोबाइल पे अपनी वीडियो देखी और मैंने उसमें ये काम किया था। तो पेरेंट्स को भी हमारी जो चीजें विद्यालय में गतिविधि हो रही है उनसे वो रूबरू हो पा रहा है, वो हमें एक कंपैरिजन हमारा अभी इस समय है प्राइवेट विद्यालयों से, उसके कंपैरिजन में हमें उनको उस लेवल को बराबर लाना पड़ेगा। हमेशा हमारी सोच यही रहती है कि हमारा विद्यार्थी एक न केवल अच्छे विद्यालय के बच्चा को कम्पीट करे बल्कि उनको पीछे भी छोड़ी।
1: जी जी, तो मतलब वो जो सुविधाएं, वो जो माहौल, वो जो एक क्रियात्मक पक्ष है जो पब्लिक स्कूल के पास होता था, वो आज सरकारी विद्यालयों में क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और उस तरह की जो शिक्षा उनको दी जानी चाहिए वो डिलीवर हो रही है। अब इसको अगर हम जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उससे अगर जोड़ के देखा जाए, तो क्या उसमें इस तरह के है कि भाई प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, उसको उसमें बहुत सारी चीजों को समावेश करने के लिए, जीवन से जोड़ने के लिए, उसको उपयोगी बनाने के लिए जो आवश्यक चीजें रखी गई हैं, क्या उसी के आधार पर ये सब हो रहा है?
0: जी जी, जो हमारी नई पॉलिसी बनी है 2020 में, उसमें लगभग जैसे पहले एक फॉर्मूला हुआ करता था कि बच्चा पहले 10th करेगा, फिर 12th करेगा, फिर BA करेगा, फिर MA करेगा, यानी आपका 10+2+3+4 था, +2 था। लेकिन जो सरकार ने अभी जो नया संशोधन किया है नई शिक्षा नीति में, उसको बच्चों को लेकर एक तो सबसे बढ़िया सरकार ने ये किया है कि करके सीखना है बच्चों को, रटना नहीं है, और बच्चे को वो माहौल देना है हमें कि बच्चा कम चीजों में ही बहुत सारा ज्ञान अर्जित करे। जैसे हम कह सकते हैं कि अभी जो फिलहाल की जो व्यवस्था है उसमें जो किया गया है उसमें 5+3+3+4 बताया है, यानी बच्चा सबसे पहले तो इसमें लगभग दो वर्ष फंडामेंटल का रखा गया है और 3 वर्ष KG नर्सरी LKG जो होता है उसमें है, यानी बच्चा 5 ईयर में लगभग क्लास 2 में आ जाएगा, कक्षा 2 में 5 साल के बाद पास कर लेगा। इसके बाद वो 3 ईयर का प्लान है, उसमें बच्चा 3rd, 4th और 5th में कर लेगा, फिर next 3 ईयर में वो बच्चा 6th, 7th, 8th कर लेगा, फिर next 4th ईयर में 8th, 9th, 10th और 12th कर लेगा। इससे क्या होगा, बच्चे पे जो सरकार

0: सरकार ने क्या है कि पढ़ाई का बोझ ना हो, बच्चा जो भी करे उसको पढ़ाई रुचि लगनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा इतना ढेर सारा बैग भर के ले जा रहा है, उसको डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो सरकार ने कहा है कि बच्चे को समझ आनी चाहिए,
1: करके देखो, सीख के देखो।
0: जी जी जी।
1: तो उसको मतलब उसमें रटना नहीं है,
0: रटना नहीं है,
1: करके सीखना और समावेशित करके और आप उससे जुड़ करके
0: जुड़ करके करना है।
1: तो तिवारी जी, कृष्णवीर जी ने बताया कि भाई ये जो वर्तमान की जो सीख और समझ है बच्चे के लिए वो पॉलिसीगत है, जो हम एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर रहे हैं वहीं से इसको लेकर के अब आधारभूत शिक्षा से उसको जोड़ करके लाया जा रहा है। तो इसमें क्या लगता है कि इस तरह के प्रयोगों से, नवाचार से और इस तरह की जो सुविधाएं और बच्चों को जोड़ करके देखा जा रहा है, करके जो सिखाया जा रहा है, तो इससे जीवन में चीजें बदलेंगी, जो शिक्षा का जो प्रभाव है जीवन में वो और महत्वपूर्ण होगा और बच्चा जब करके और सीख के जाएगा, अपने समाज में जाएगा, तो एक बेहतर परफॉर्मेंस वो दे पाएगा इसमें?
2: बिल्कुल सर, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो NEP 2020 के अंदर जो बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों में सबसे प्रमुख बदलाव है जैसा कि सर ने बताया, करके सीखना। दूसरा ये कि वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया गया है कि बच्चा 6 के बाद ही हम उसको शिक्षा के अंतर्गत विषय तो पढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे विषय भी पढ़ाए जिससे वो स्वरोजगार की ओर उन्मुख हो। पहले की पॉलिसीज में 9th से या 11th से वो चीज शुरू होती थी, अब जो है 6th क्लास से ही इस पर जोर जाने की बात है। दूसरा ये है कि हमारे प्रदेश में NEP 2020 को लागू करने के साथ साथ ये निपुण का जो प्रोग्राम चल रहा है
1: जी जी।
2: वो भी एक उसी का ही पार्ट है कि किस प्रकार से हम जो हमारे बच्चे कौशलों की हम बात करें तो शिक्षा में जो कौशल होती है 4 कौशल होते हैं, इन 4 कौशलों में बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जो रहे थे वो अब जो इस पॉलिसी के बाद उसमें यह कहा गया कि 3 की उम्र से बच्चा जो आएगा प्राइमरी लेवल पर, जिसे प्री प्राइमरी का पार्ट बनाएंगे, तो उसमें क्या है कि ये चारों जो कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसमें कक्षा 3 तक आते आते बच्चा भाषा और गणित, जिसको हमने एक अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंतर्गत तो ट्रेनिंग कराई है टीचरों की FLN के अंतर्गत, कि बच्चा जो है फंडामेंटली रूप से आधारभूत जो है भाषा और गणित के बारे में जानकारी इसको हो,
1: जीवन की जो समझ है वो वहाँ,
2: तो अगर वहाँ वो उसका अवरोध नहीं होगा तो आगे किसी भी प्रकार की जो है चुनौती के लिए बच्चा अपने आप को तैयार पाएगा।
1: जी जी। तो कुल मिलाकर के आप लोगों की बात से जो समझ में आ रहा है, जो हमारे जो श्रोता है वो समझ सकते हैं कि भाई इस उस पर काफी कुछ काम किया जा रहा है, व्यावहारिक काम किया जा रहा है और ऐसा काम किया जा रहा है जो सिर्फ सिद्धांत परक नहीं है बल्कि उसमें क्रियात्मक पक्ष को भी समावेशित किया जा रहा है। जी जी। तो निश्चित तौर पे आपकी ये जो भावना है वो फलीभूत हो और हम इस प्राप्त को, जो लक्ष्य है जो जो सरकार ने भी रखा है और आप लोग भी उसको पूरा करने में मददगार हो रहे, तो ऐसा हो, आप दोनों आए और अपने अनुभव और वाणी से हमारे श्रोताओं से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुनी लघु परिचर्चा जीवन कौशल बुनियादी शिक्षा में नवाचार। इसमें प्रतिभागी थे नरेंद्र तिवारी और कृष्णवीर, संचालन कर रहे थे OP सिंह। और कार्यक्रम में चलते चलते अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: और साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का युववाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्षों को रोकने में मददगार सुझावों और विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है।
2: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC के बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज शाम 7:45 से रात 10 बजे तक मोटर कारकेट का पूर्वा

0: अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की

0: फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे भक्त कथा धना भगत। कथाकार होंगे विष्णु शर्मा। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या 7:31 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। देशगान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:20 पर। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम होगा। रात्रि 8:30 पर आज की फिल्म होगी मेरे हमदम मेरे दोस्त। रात 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे राग रागेश्वरी में ख्याल गायन। कलाकार होंगी विदुषी कृष्णा बिष्ट। तबले पर इनके साथ संगत करेंगे गुलाम साबिर और हारमोनियम पर होंगे बाबू खां। रात 11:00 होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। और अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 9 सितंबर को शाम 6:50 से 30 मिनट की अवधि के हेलो ब्रजगांवी कार्यक्रम में इस बार का विषय रहेगा खरीफ की फसलों की उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, खरीफ की फसलों जैसे धान, बाजरा, मक्का, कपास, दलहनी, तिलहनी फसलों में लगने वाले रोग एवं कीड़ों से बचाव के उपाय और खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं खाद उर्वरक की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर पूछे सवाल हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, कृषि वैज्ञानिक से। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर सीधे फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय रहेगा कल बुधवार शाम 6:50 से लेकर 7:20 तक। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

0: अभी आप देशगान सुन रहे थे FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम या कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में भक्त कथा धना भगत। कथाकार हैं विष्णु शर्मा।
1: भैयाओ, हमारे जा देश में हरेक युग में अलग अलग समय पे भगवान के भक्त होते रहे। भगवान के भक्तन ने बड़े बड़े चमत्कार कीने हैं। ऐसे ही राजपुताना राजस्थान के पास धनुआ गांव में जाट जाति के एक घर में भक्त धनाजी को जन्म भयो। भक्त धनाजी को जन्म 1473 विक्रमी सन 1415 में भयो। उनके मैया बाप बड़े ही गरीब हते। भक्त धनाजी के बचपन तो खेलवे कूदवे में निकल गयो, पर जैसे ही उनकी जवानी आई तो उनके मैया बाप ने उनको गाय भैंस चराने में लगाए दीनो। एक बात को ध्यान जरूर देनो होगो कि हमारे जा भारत वर्ष में जितने भी भक्त भये उनके बारे में विद्वानन की अलग अलग कहानी और राय रही। भक्त धनाजी के यू बारे में तमाम प्रकारन की कहानी मनगढ़ंत कहानी बोली जावे। धना भगत जा दगरे में है के गाय भैसन को चराने जाते, वही दगरे में एक ठाकुर द्वार पड़तो। वा ठाकुर द्वार में कौ पत्थर की मूर्तियां पड़ी भई। वही गांव को एक ब्राह्मण ठाकुर द्वार में जाए के रोजाना सवेरे और शाम को उन मूर्तिन की सेवा करतो हतो। वा पंडित को रोजाना ठाकुरों की पूजा करवाते, नहावते और घंटियन को बजाते भयो। भक्त धना रोजाना देखा करते। भक्त धना जी को यह ज्ञान हैवे लग्यो कि वो ब्राह्मण उन मूर्तिन की पूजा काय के लिए करतो हते। ठाकुर जी बाकू कहा देते हैंगे। भक्त धना जी को यह बात अच्छी तरह समझ में आएगी।

गई कि ठाकुर जी की पूजा सु हमारे वो दुख दूर है जावेंगे। भक्त धना जी को अपने घर की गरीबी को मिटाए काजे जा से अच्छो और कोई उपाय नाय दिख्यो। एक दिना भक्त धना जी सवेरे सवेरे उठकें ठाकुर द्वार में जायके पंडित जी को पूजा करते भयो देख्यो। जैसे ही वह ब्राह्मण महात्मा के पूजा पाठ खत्म भयो, भक्त धना जी ने हाथ जोड़ के कही, पंडित जी जा पूजा पाठ से आपको कहा लाभ होगो, हमको बताओ। पंडित जी ने कही, धन्ना इनकी पूजा करवे ते सबरी खुशियां मिल जावे। जे भगवान हैं जिनके खुश हैवे पे जो कछु मांगो वही मिल जावे। धना जी ने पंडित जी जी से कही, पंडित जी एक ठाकुर मोकू दे दो तो मैं हूँ इनकी पूजा कर लेंगो। जब भगवान खुश है जाएंगे तो मैं हूँ कछु मांग लेंगो। पंडित जी बोले, धन्ना तो पे ठाकुर नाए खुश प्रसन्न होंगे। भक्त धन्ना जी ने पंडित जी सु कही कि मो पे काय प्रसन्न नहीं होंगे, जरा मोकू तो बताओ। पंडित जी ने कही, प्रसन्न नाय होंगे तो नाय होंगे, एक तो तुम जाट जाति के हो और दूसरे अनपढ़ हो, विद्याहीन आदमी तो पशुअन के समान होवे। ठाकुर जी मंदिर में ही रहवे और मंदिर के अलावा कहूँ प्रसन्न नाय रहवे, जा वजह से तुम धना अपनी जिदकू छोड़ देव और अपनी गायन पे ध्यान देव। पंडित जी ने धना को इधर उधर की बातन से बाके मन को समझायो, परंतु बहुत कोशिश कीनी परंतु भक्त धना अपनी जिद पे अड़ो रहो। पर पंडित जी को चिंता भई कि मैं तो शरीर से बहुत कमजोर हूँ, कहूँ धना मेरी पिटाई नाय कर दे। पंडित जी को भय लगने लग्यो और पंडित जी बोले, धना तू इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तो कू ठाकुर जी दिए दे तू। जे कछु के पंडित जी ने भक्त धना जी को मंदिर में फालतू पड़ी सालग्राम की एक बटिया दे दीनी और पूजा की विधियु समझाए दीनी। चदरा में लपेट के भक्त धना जी ठाकुर जी को अपने घर को ले आए और वही समय जाय के बढ़ई से एक ठाकुर जी को चौकी बनवाए दीनी। चौकी को धोए के धना जी ने ठाकुर जी को बा पर बैठाए दीनो। सबरी रात भक्त धना जी को भक्त धना सोए ना सके, चौंके उनके मन के ही अंदर ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करयो जावे। और जब ठाकुर जी प्रसन्न है जावे तो उनसे कहा मांगयो जाए। यही विचार करत करत सबरी रात बीत गई। जैसे ही सवेरो भयो, भगत धना जी नहाए धोए के ठाकुर जी के सामने जाए के बैठ गए। वो कछु पूजा पाठ तो जाने नाए, फिर हु ठाकुर जी से बड़ी श्रद्धा से कही, आप ही जगत के पालन करता हो, मोए सुख देव, मैं रोजाना आपको भोग लगाऊंगो। घर में भगत धना जी ने अकेले ही सबरे काम को निपटायो। घर में लस्सी को गिलास, रोटी और मक्खन को भोग लेके ठाकुर जी के आगे परोस दीनो। भक्त धना जी ने अर्ज की, हे प्रभु भोग को लगाओ, मो जैसे गरीब के पास इतनो ही है, प्रसाद को पाओ ठाकुर जी। इतने कहे धना जी ने भई अपनो आसन जमाए दीनो। धना जी को अब कौन समझावे कि पत्थर कहाँ भोजन करें। पंडित तो भोग को अपने घर को ले आवे, पर भोले धना जी को यह सब कहाँ मालूम। बस जई बात को सत्य मान के भोजन जैसे के तैसे रखे रहे। भक्त धना जी बड़े ही मायूस भये।
और प्रभु से कही।

0: यह प्रसाद जाट के घर को है। जई वजह से नाथ नाय करोगे, यदि आपको जे बात अच्छी नाय लगी तो मोय बताओ। पंडित जी के भोजन को तो आप खूब ग्रहण करो। यदि आज आपने भोजन ग्रहण नाय करो तो मैं हूँ भूखो रहूँगो। आज मैं अपनी हटनाय छोड़ूंगो। यदि तुम्हारो धर्म पंडित के हाथ को भोजन करनो है तो हमारो भी धर्म हटके ऊपर कुर्बान होनो है। भगवान ने सोची कि अब तो पत्थर में ही प्रकट होनो पड़ेगो। भगत धनाजी की आत्मा बड़ी ही निर्मल और निश्चल हैगी। इनको पूरे भरोसो है कि ठाकुर भोजन करवे को आवेंगे। जे मेरे अनन्य भगत हैं, इनको भोजन करवे काजे आनो ही पड़ेगो। यदि सारग्राम की बटिया के आगे जाट ने अपने प्राण को त्याग दीनो तो जे अच्छो नहीं होगो। भगत धनाजी की नज़र उ ठाकुर जी पर ही लगी रही। एक घंटा बाद देखो ठाकुर जी मक्खन के साथ रोटी को खाए रहे। भगत धनाजी खुशी के मारे उछल पड़े और जा घटना से उनके मन को बड़ी प्रसन्नता मिली। मेरो ठाकुर भोजन को खाए रहो है, मेरो ईश्वर आए गयो, जा प्रसन्नता को कोई अपार नाए। भक्त धनाजी अपने मन में बड़े प्रसन्न होने लगे और सबको यही बात बताई कि ठाकुर ने मेरे घर आए के भोजन और प्रसाद ग्रहण कर लियो है।
1: अभी आपने जे भक्त कथा सुनी, धना भगत कथाकार है विष्णु शर्मा। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा में एक लोकगीत दामोदर शर्मा के स्वर में।

0: दामोदर शर्मा के गाए यह लोकगीत की संगई आज को अभ्रस साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

श्री हनुमान जी का जन्म दीपावली के एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन सायंकाल मेष लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य तुला राशि पर थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लग्न अग्नि राशि है, इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस शुभ योग में जन्म लेने के कारण दुखों के समूह को जलाकर राख कर देने की अद्भुत शक्ति श्री हनुमान जी में है। मंगलवार को जन्मे मंगलमय श्री हनुमान जी मंगल भवन अमंगल हारी है। वे मंगल कामना करने वाले अपने किसी भी भक्त का कभी अमंगल नहीं होने देते, उसका सदा मंगल ही करते हैं। श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी में एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं। एकांत में ले जाकर रामचरित्र का उपदेश देकर उन्हें संकट मुक्त करते हैं। संकट मोचन हनुमान के रूप में काशी में वे आज भी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी सचमुच संकट मोचन कृपा निधान हैं।

अभी आपने ये पारंपरिक भक्ति रचनाएं सुनी, स्वर हरिहरन और साथियों के थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल
1: कृषि
0: प्रतीक्षा करें।
1: किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ओ जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।
0: सरला बहनी,
1: हार भैया,
0: देखो, अगर बात की जाए अपनी खेती पाती के, तो हमारे रुपया पैसा की जरूरत बीच बीच में पड़ा करा था। अगर अपने पास में पैसा नहीं रहा था तो ये लागत है के आगे जाए के हाथ फैलावा जाए।
1: भैया हाथ फैलाव जरूरत ना है। खेती में अपन बीज खाद ये सब लावक है ना, अभी
0: हाँ,
1: आसान होगा है। और यह मक काम आवत है अपन किसान क्रेडिट कार्ड, यू सरकार के द्वारा एक चलाई जा रही योजना है भैया। वह मा बना थे एक ठू कार्ड, अगर हम भैया वो कार्ड बनवा लेते हैं ना, तो हम सबके लिए बहुत फायदेमंद है। और वही के माध्यम से भैया हम अपने जो बैंक है वह से ले लेते हैं कर्जा, और जब फसल हो जाए तो बेचो और समय से कर्जा चुकाओ भैया।
0: हम पंच जोन सर द्वारा हाथ फैलाई थे, कभो कभो ऐसा हुआ था कि समय पे कर्जा भी नहीं मिल पावत है, और जोन मिलता है का जोन ब्याज रहा था इतना ज्यादा रहा था कि जितना हम पंच लेहे नहीं ना उससे ज्यादा अदा करे पड़ जाता है। मूल ई योजना जब से चली है तब से जो है बहुत कम ब्याज दर पर हम पंचन का इसे कर्जा मिल जाता है। जब भी हमें जरूरत हुए कर्जा ले लीन जाए, और अपन फसल बेच के जो है ओके समय पे हम पंच अदायगी जब कर दी थे, तो अपन जोन अतिरिक्त जोन पैसा जाते है वो बहुत कम जाते है।
1: और देखो अगर हम सबका जानकारी रहता है ना, तो यू खेती कर्म बहुत आसान हो जाता है। तो जान लीन जाए आज के खबरें।
2: उत्तर प्रदेश में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य कृषि विकास योजना के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने कुल 286 करोड़ 46 लाख रुपए की कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की नई परियोजनाओं के लिए 185 करोड़ 33 लाख रुपए, जबकि पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 101 करोड़ 13 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं के तहत सरकारी कृषि केंद्रों का आधुनिकीकरण, उन्नत कृषि यंत्र, सिंचाई नलकूप और जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके अलावा मृदा परीक्षण और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रयोगशालाओं को मजबूत करने, कृषि यंत्रीकरण और प्रशिक्षण, औद्यानिक विकास, मत्स्य बीज उत्पादन और बीज भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिव SP गोयल ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने, गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और स्वीकृत धनराशि

0: का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य इन परियोजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना और किसानों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाना है।
1: सरला बहनी,
2: हाँ राज भैया,
1: देखो ये जो अपन खरीफ की फसलें चल रही हैं, तो इमा हम पंच मक्का का भी खेती कर रहे हैं।
2: हाँ बिल्कुल कर रहे हैं भैया, हाँ। देखभाल भी बहुत जरूरी है।
1: तो कहे ना आज की बातें सुन ली।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ खरीफ मक्का आपके खेत में है, तो इस समय सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं फसल वैज्ञानिक डॉक्टर अमरीत सिंह यादव साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहाँ खरीफ मक्के की फसल खेत में है, तो इस समय सामयिक देखभाल में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जो खेत में आपकी फसल खड़ी हुई है, तो जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक हुई है और जिसके कारण से जलभराव हुआ है, तो सर्वप्रथम वहाँ पर जो अतिरिक्त जल है उसको निकाल दिया जाए। इसके अलावा तो यदि समय से बोई गई फसल है, तो वहाँ पर खड़ी फसल में उर्वरक का प्रयोग करना है, जिसमें एक एकड़ में लगभग 33 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 33 किलोग्राम यूरिया एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। यदि आपके पास नैनो यूरिया उपलब्ध है, तो उसके लिए एक बोतल 250 ml की एक एकड़ के लिए पर्याप्त है, उसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, जहां देर से मक्के की फसल बोई गई है, तो वहां पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
4: अगर घुटने तक उसकी हाइट हो रही है, तो वहां पर नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा लगभग 33 किलोग्राम नाइट्रोजन पर्याप्त है एक एकड़ के लिए। यदि उनकी लंबी अवधि की फसल है, कम अवधि की फसल है, तो वहां पर वो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, क्या सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता है?
4: अगर खेत की तैयारी के समय जिंक का उपयोग कर दिया गया है बेसल ड्रेस के रूप में, तो आवश्यकता नहीं है। अगर कमी है और उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कत्थई रंग के धब्बे पौधों पर, तो उसके लिए जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं, जिसके लिए 2.5% का घोल बना करके छिड़क दे। उतनी मात्रा में आप भुजा हुआ चूना ले लें और दोनों को मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। जनरली 150 लीटर से लेकर के 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
3: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो खरपतवारों का प्रबंधन कैसे हो खरीफ मक्के में?
4: इसके लिए चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार दोनों ही होते हैं, तो यदि आपने उस समय खेत की बुआई के बाद आपने अगर पेंडीमेथिलीन का प्रयोग कर दिया है और समय से बुआई की हुई है, तो अब जो अवस्था है उस अवस्था में आप एक निराई गुड़ाई ही कर सकते हैं
3: जी।
4: और यदि आपने देर से बोया है, तो उस अवस्था में मतलब अगर 25 से 30 दिन की आपकी फसल है, तो वहाँ पर टोपरा मेजोन या टेम्बोट्राइन जो रसायन है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है खरपतवार को नियंत्रण के लिए,
3: और इसका प्रयोग 20 से 30 दिन की अवस्था पर ही कर सकते
4: जी।
3: डॉक्टर साहब, क्या मिट्टी चढ़ाना भी फायदेमंद होगा?
4: जी हाँ बिल्कुल, मिट्टी चढ़ाने से आपकी जो वर्षा का पानी है वो जड़ों में नहीं लगता है, और हवा तेज चलती है उससे गिरने से बचाव के लिए भी मिट्टी चढ़ाना बहुत ही लाभदायक रहेगा, और उसके लिए मिट्टी पड़ने वाले हल से जो है आप जुताई करके उसको, तो उसमें मिट्टी चढ़ जाएगी फसल के ऊपर।
3: डॉक्टर साहब, इस समय फसल सुरक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई तरह के हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रकोप इस समय हो रहा है।
4: बिल्कुल
3: डॉक्टर साहब, बीमारियाँ कौन कौन सी हैं?
4: मक्का में प्रमुख रूप से तुलसीता रोग, गुलाबी उखटा रोग और पत्तियों का झुलसा रोग प्रमुख है। इससे सावधानी के लिए सर्वप्रथम तो आप जब प्रयोग कर रहे थे बीज का, तो हमको उन प्रजातियों का चयन करना चाहिए जो रोग प्रतिरोधी हो। यदि किसी के कारण से नहीं कर पाए हैं, बीजों की उपलब्धता नहीं हुई है, तो इस अवस्था में अगर आपका फसल पर रोग का प्रकोप दिख रहा है, तो डाइथेन Z78 या जिने की 2.5 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और 8 से 10 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करें। यदि बीमारी का प्रकोप हर वर्ष हो रहा है, तो इसके लिए प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। गुलाबी उकटा के लिए बाविस्टिन या कैप्टन के अलावा, जैसे वैलिडीमाइसिन जो दवा है, 2.5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए।
3: अच्छा, वैलिडीमाइसिन
4: जी हाँ।
3: डॉक्टर साहब, जहाँ पत्तियों का झुलसा रोग आता है, वहाँ
4: ब्लीचिंग पाउडर आता है 33% का, उसका प्रति एकड़ के घोल बना करके मृदा को उपचारित करना चाहिए।
3: डॉक्टर साहब, जो हानिकारक कीट हैं, उनमें ज्यादातर आजकल फाल आर्मी वर्म का प्रकोप हो रहा है, कहीं कहीं तना छेदक कीट का भी प्रकोप हो रहा है।
4: जी हाँ, इसके लिए जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन दो विधियां हैं। तो सर्वप्रथम हमको जैविक प्रबंधन करना चाहिए कि जब कीट दिखाई दे उसकी संख्या के हिसाब से हमको पहले जैविक प्रबंधन करना है। तो बुआई के 15 दिन बाद एक एकड़ क्षेत्रफल में 3 ट्रैकोकार्ड रख दें और उसकी निगरानी करते रहें फसल,
3: यानी उसको काट करके जगह जगह लगा दें
4: पत्तियों में, स्टेपल कर दें उसको।

0: ट्राइको कार्ड।
1: जी, अगर फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप आपको दिख रहा है तो उसके लिए 5% नीम का तेल आता है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। 5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा ट्राइकोग्रामा है या टेलिनोमस रेमुस है, इसकी 50,000 से 10,000 की संख्या का जैविक कार्ड आता है, उसको पत्तियों में उसको लगा देना चाहिए।
0: प्रति एकड़
1: जी हाँ
0: ट्राइको कार्ड या टेलिनोमस रेमोस,
1: जी,
0: ये भी एक तरह का कार्ड होगा।
1: जैविक जैविक प्रबंधन के लिए।
0: अगर नुकसान का स्तर अधिक है जहां फॉल आर्मी वर्म का, वहां
1: वहां पर रसायन का संचित की जाती है, इसके लिए स्पाइनोटोरम 11.7%, इसकी 0.5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें।
0: यानी स्पाइन टोरम आधा ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें।
1: जी हाँ,
0: इसके अलावा
1: इसके अलावा लैम्डा साई हेलोथिन 9.5% की 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर की पानी में घोल के छिड़काव करें, अथवा थाई मेथॉक्साम 12.5% की दवा का भी हम चयन कर सकते हैं।
0: और इसकी कॉम्बिनेशन में भी दवा आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी हाँ
0: डॉक्टर साहब, जहाँ तना छेदक, प्ररोह, मक्खी या पत्ती लपेटक कीट की समस्या है वहाँ।
1: इस अवस्था पे जैसे दीमक एक प्रमुख कीट है, जहाँ हल्की मृदा होती है तो वहाँ पर दीमक का
0: बलुई
1: प्रकोप,
0: दोमट,
1: बलुई दोमट, तो उसके लिए बिवेरिया बेसियाना 2 से 3 किलोग्राम पाउडर को 100 से 200 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला करके इसको 1 एकड़ में छिड़काव कर दें। या अगर आपके खड़ी फसल में दिख रहा है और आपके पास जैविक उपचार नहीं संभव है तो आप रसायन में जा सकते हैं, तो क्लोर पारीफास दवा सिंचाई पानी के साथ में आप मिला सकते हैं इसको 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 700-7840-421, 700-7840-421, 778-40-421।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन के बारे में डॉक्टर साहब?
1: सर्वप्रथम खेत में जल का जमाव ना होने दें, आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें, और कीटनाशक रसायनों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आर्थिक क्षत स्तर से ऊपर निकल जाए, और कीटनाशक रसायनों को नंगे हाथों से ना छुएं व शरीर पे ना लगने दें। इसके अलावा किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 प्रति एकड़ की दर से जो है पक्षियों के बैठने के अड्डे बना दें, जिससे कि वो कीट जो जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो पक्षी जो है चिड़िया है वो आएंगे और हानिकारक कीटों को वो खा लेंगे।
0: डॉक्टर अमरीत सिंह यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
3: परम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: रियाज भैया।
6: हाँ सरला भैया।
5: तो मेहनत जब कर रहा था तब से जरूरी है मनोरंजन, है अपन जो शरीर है मन है वो आनंद से भर जाता है।
6: बिल्कुल, कहे से कि जब कोनो संगीत सुना जाता है तो जो हम पंच काम करत रही थे वो और मन लागत है और अपन काम जो है और बढ़िया ढंग से हुआ चला जाता है।
5: तो काहे ना भैया, सुन लें जा यू खमटा गीत, शंकर यादव और साथी के स्वर में है तो सुना जाए।
7: अरे दिलवा के बतिया, अरे दिलवा के बतिया, मन ना भावे बलम पर।

0: हाउस लगवाया जो कि मेरा आधे एकड़ का है। उसमें हम लाल रंगीन शिमला मिर्च की खेती करते हैं, और खुले में 2 एकड़ में हरी शिमला मिर्च की खेती करते हैं, और 1 एकड़ में सीडलेस खीरा जिसको बोलते हैं उसकी खेती करते हैं।
1: तो आपने कहा कि आधा एकड़ का पाली हाउस है, आपके पास नेट हाउस भी है,
0: नेट हाउस है जिसमें हम खीरे की खेती करते हैं 1 एकड़,
1: यानी सीडलेस खीरा।
0: सीडलेस खीरा।
1: तो इस समय कौन कौन सी फसल आपके पाली हाउस में है?
0: हमारे पास पाली हाउस में लाल पीली शिमला मिर्च की रुपाई का समय चल रहा है, जो कि हमने अगस्त में मैंने रुपाई की हुई है। अब ये पौध हमारी लगभग 60 दिन के बाद फूल और फल की वृद्धि में बदलेगा, फिर वही 90 दिन में हमारा रंगीन शिमला मिर्च का माल निकलना चालू होगा।
1: आपने क्या नर्सरी खुद तैयार की,
0: जो
1: कहीं से
0: है
1: नर्सरी लेकर के रोपाई की?
0: नर्सरी हम खरीद मतलब लेके रुपाई करते हैं, उनको बीज देते हैं नर्सरी वाले, जहाँ पे उनका स्ट्रक्चर लगा होता है, तो वो बीज से करके हमको पौधा देते हैं, तो हम रुपाई करते हैं।
1: तो कोई खास वैरायटी रंगीन शिमला मिर्च की है?
0: इसकी अलग वैरायटी आती है, जिसमें पीले में जो है हमारा डब स्टेप नाम से आता है, और लाल हमारा जो आता है वो हमारा बचाटा के नाम से आता है।
1: इसकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं आप?
0: इस वैरायटी में जो फल की आकृति है वो बहुत अच्छा बनता है, कलर अच्छा आता है, और पैदावार बहुत अच्छी होती है इस वैरायटी में।
1: और जो खुले में 2 एकड़ आप हरी शिमला
0: जी
1: मिर्च
0: जी जी
1: करते हैं, उसकी कौन सी वैरायटी चुनते हैं?
0: उसकी हरी शिमला मिर्च की वो अलग वैरायटी है, जो कि अभी हमने जो लगाई हुई वो आशा वैरायटी है, इंदिरा वैरायटी है, ये हम लगाते हैं।
1: तो उसकी रोपाई कब तक करेंगे?
0: रोपाई उसके हम 15 सितंबर में करेंगे।
1: खड़ी फसल में कौन कौन सी देखभाल करते हैं, जहां पाली हाउस में है और जहां खुले में है, दोनों में?
0: पौधा रोपण करने के बाद मेन जो उसमें खेती में देखना होता है कि पौधे में कोई भी कीड़ा कोई भी कीट जो ना हो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हैं। पौधे में नमी उसके साथ में क्या क्या उसको खाद देनी है। जब छोटा पौधा लगाते हैं तो उसको 15 दिन हमारी जो प्रैक्टिस होती है पर पौधे में ही खाद पानी उस पर ही हम लोग मशीन से देते हैं,
1: यानी फर्टिगेशन करते हैं।
0: फर्टिगेशन बोल सकते हैं उसको। और फिर जब पौधा में जड़ विकसित हो जाता है, तना विकसित हो जाता है, पौधा 20 से 25 दिन का मजबूत हो जाता है, तब उसको हम लोग ड्रिप के थ्रू उसमें फर्टिगेशन करते हैं।
1: और रोग दोख और कीड़ा से बचाव के लिए?
0: रोग दो कीड़ा से बचाव के लिए समय समय पे स्प्रे कराना होता है, वो हम चाहे वो हमारा उसमें कीट का लगा हो या कोई फंगस लगा होता है उसको हमको प्रॉपर देख रेख करनी होती है सुबह शाम।
1: और जहां खुले में आप शिमला मिर्च करते हैं, तो वहां तो आपको विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती होगी।
0: उसमें विशेष सावधानी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो खुले में है और खुले के तापमान में थोड़ा कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, तो उसमें ज्यादा ध्यान देना होता है।
1: और अंतरण क्या रखते हैं उसका?
0: पौधे का पौधा जो दूरी होती है हरी शिमले की वो आती है 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर, और जो दूसरा पौधा का दूरी होती
1: लाइन
0: जो
1: से
0: लाइन
1: लाइन।
0: से लाइन की जो दूरी होगी वो हमारी 1 फीट आती है 30 सेंटीमीटर।
1: और जो पाली हाउस में करते हैं उसका अंतरण?
0: उसमें जो दूरी होती है वो पौधे की पौधे दूरी 45 सेंटीमीटर होती है, और जो पौधे की जो लाइन से पौधे की दूरी होती है वो 35 सेंटीमीटर होती है।
1: खड़ी फसल में जो खुले में आप शिमला मिर्च करते हैं, तो फसल की भूख मिटाने के लिए प्रति एकड़ कितनी खाद की मात्रा देते हैं, उर्वरक की मात्रा देते हैं?
0: 30 दिन के बाद जैसे फर्टिगेशन चालू करते हैं, ग्रेड के हिसाब से फल के हिसाब से हमको उसमें देनी पड़ती है।
1: तो ये काम तो आप पाली हाउस में करते हैं?
0: सेम पाली हाउस में और खुले हरी शिमला मिर्च में दोनों में ही करना होता है, क्योंकि पेड़ वही हैं, बस उसमें वैरायटी का अलग है, पैदावार उससे भी लेना है, पैदावार उससे भी लेना है। ड्रिप पे टपक विधि के थ्रू सिंचाई है, करने का तरीका वही है, सेम मशीन सेम खाद हम उसी से पूरा चलाते हैं, पाली हाउस नेट हाउस और ओपन में।
1: पहली फलत कब तक मिलने की संभावना है पाली हाउस में?
0: पाली हाउस में पहली फलत जो हमारी आती है, जैसे मैंने 10 अगस्त को इस सीजन का रोपाई किया है, तो हम यहाँ से 80 दिन का जोड़ के चलेंगे, तो हमारा वही 10 15 से 10 नवंबर, वही मिड नवंबर जिसको बोलते हैं मध्य नवंबर, उसी में हमारा माल निकलना चालू होगा।
1: उस समय आपको भाव अच्छा मिलेगा
0: सहला चल रही होती है और भाव भी अच्छा रेट रहेगा उस टाइम।
1: और जो खुले में शिमला मिर्च है?
0: खुले की शिमला मिर्च की जो उसकी पैदावार की जो तौड़ाई है वो हमारी आती है 65 से 70 दिन की, उसकी थोड़ा सा 15 दिन पहले आती है,
1: यानी अक्टूबर के लास्ट में।
0: अक्टूबर के लास्ट में।
1: एकड़ पीछे आंकड़ा देखें, जो खुले में आप हरी शिमला मिर्च कर रहे हैं, उसकी एकड़ में क्या लागत गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा कितना होता है? साथ में जो आधा एकड़ की संरक्षित खेती है रंगीन शिमला मिर्च की, उसमें एक साल की लागत क्या गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: संरचित खेती का जो हमारा पूरा एक एवरेज रेट निकलता है, क्योंकि देखिए निकलता माल स्टार्ट होता है तो 70 रुपये से लेकर 200-300 भी जाता है, लेकिन साल का आता है हमारा 80 रुपये का एवरेज, और 10 टन लगभग मेरा माल पूरी कोशिश रहती है निकाल लें, जिससे
1: यानी सौ
0: हमारा
1: कुंतल
0: 100 कुंटल लगभग
1: पाली हाउस से।
0: पाली हाउस है।

0: सरला बहनी,
1: हाँ भैया,
0: देखो अपने एक कार्यक्रम में हम पंच कुछ ऐसे किसानन के बुलाई थे कि जोन अपनी खेती पाती में बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, तो काहे ना आज के किसान में जोन अपने किसान भाई आए हैं उनके बात सुन लीन जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे युवा किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज ब्लॉक के गौरा गांव के शुभम द्विवेदी भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप शिमला मिर्च की खेती, सीडलेस खीरा की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई, इस तरह की खेती से जुड़ा हुआ कब से?
3: मेरी जो पढ़ाई है वो हम इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की है, जिसमें हमने शुरू से ही कृषि बोर्ड और स्नातक परास्नातक में बीएससी एग्रीकल्चर और एमबीए एग्री बिजनेस किया, जो कि शुरू से मेरा उद्देश्य था कि जो हमने शिक्षा ग्रहण की है अपने ही गांव में जाके इसी शिक्षा से रिलेटेड कुछ उद्योग किया जाए। शुरू से पहले मैंने

0: और खुले में?
1: खुले में हमारा वो निकल जाता है जितने निकलना चाहिए तो 50 टन, लेकिन हर साल अभी 2-3 साल से 35 से 40 टन निकलता है
0: यानी 400
1: एक एकड़,
0: कुंटल
1: 400 कुंटल
0: साल में।
1: साल में।
0: तो खर्चा?
1: खर्चा संरक्षित खेती का जो हमारा आता है वो उसको 6, क्योंकि वो फसल अगस्त से चल के मई तक चलती है, तो वो 8 से 9 महीने की फसल है, तो उसके सारे खर्चे हमारे जो आते हैं वो 3 से 3.5 लाख रुपए आते हैं। और जो कि हमने बताया 10 टन 80 रुपए का एक एवरेज पकड़ते हैं, तो हमारा बड़े आराम से 8.5 से 9 टन का माल निकल जाता है, जिससे 3.5 लाख रुपए हम लागत भी हटा देते हैं, तो पाली हाउस से बड़े आराम से बचत बचत हमारा 5-5.5 लाख का हो जाता है।
0: और खुले में जो शिमला मिर्च
1: खुले का जो एकड़ का है वो कम से कम शुरुआत के समय में और आखिरी, वो भी लंबी फसल है क्योंकि सितंबर से लग के मई तक चलती है, 8 से 9 महीने की, 7 महीने की फसल है, तो उसमें भी एकड़ का 2 लाख का खर्चा आता है। और उसकी जो एवरेज रेट होती है वो कम होती है, एवरेज रेट 20 का हम लेके चलते हैं और हम 40 टन भी निकालते हैं, और 2.5 से 3 लाख खर्चा उसमें भी आता है, तो बड़े आराम से एकड़ पे 4 लाख बच जाता है।
0: यानी 4 दूनी 8 लाख 2 एकड़ में आपको बच जाता
1: जी
0: है,
1: जी
0: और 5-6 लाख रुपया संरक्षित खेती
1: संरक्षित खेती
0: से,
1: से। जी,
0: तो आप संतुष्ट हैं?
1: हाँ मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ।
0: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहिए?
1: किसान भाइयों बहनों को ये सलाह है कि आज के टाइम जो संरक्षित खेती में जो आधुनिकता आ रही है उसको अपनाएं, खेती हमेशा ड्रिप और मल्चिंग के थ्रू किया जाए। जो बहुत से किसान आज भी अनभिज्ञ हैं, वो बेडों पे पानी सीधा जो भर के करते हैं, उसमें पैदावार भी कम मिलती है, फसल भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिसलिए उनकी आय और उनका पैसा निकल नहीं पाता है।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 80 90 88 72 82, 8090887282।
0: शुभम द्विवेदी भैया, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
4: सरला बहनी, देखो अपन जो खेती पाती है वो मौसम पर आधारित रहता है, और अगर हम पंच का मौसम की जानकारी रहता है तो उसके प्रबंधन जो है हम पंच निकेतन से कर लिए थे।
5: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार आज यानी 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ही बरसात हो संभावना है। और भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी हर जगह लगभग बरसात हो संभावना है, और कहूँ कहूँ भैया भारी से भारी बरसात हो संभावना है।
4: अपन कार्यक्रम किस लागत है ई के बारे में चिट्ठी पाती के माध्यम से अवगत जरूर करावे, तो उसके लिए पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। इसके अलावा अपने पंच ईमेल के माध्यम से भी चिट्ठी पाती भेज सकते हैं, तो उसके लिए पता है farmandhomeairlko@gmail.com। यही के साथ माँ घड़ी इशारा कर रही है कि अपने बैठकी के समय हो रहा है समाप्त, तो पंचन चलिन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 12,000 रुपये और सहायिकाओं का 6,000 रुपये प्रतिमाह करने का किया ऐलान। 5,00,000 रुपये तक कैशलेस इलाज की भी मिलेगी सुविधा। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ। 5,196 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के किए गए एमओयू। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल वाराणसी में करेंगी 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित यूपी स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, बदलते भारत में स्टार्टअप आज के समय की जरूरत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में राज्य स्तरीय समारोह में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये और सहायिकाओं का 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं और उनके परिवारों को हर वर्ष 5,00,000 रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने का ऐलान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट हो चुके हैं और इनमें काम करने वाली महिलाएं सम्मानजनक मानदेय प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बचपन अगर सुरक्षित रहेगा तो स्वस्थ और समर्थ भारत के संकल्प को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र विकसित भारत की संकल्पना का आधार बनेंगे।
1: बचपन अगर सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो यही स्वस्थ बचपन एक समर्थ और स्वस्थ भारत की संकल्पना को पूरा करेगा और स्वस्थ और समर्थ भारत ही प्रधानमंत्री जी की संकल्पनाओं को पूरा करेगा, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत होगा। उसका आधार कोई बनने वाला है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बनने वाले हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक वस्त्रोद्योग केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल पहचान आज की नहीं बल्कि हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि यूपी टेक्सटाइल 2026 प्रदेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नई दिशा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी का मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास विरासत है, हुनर है, मानव संसाधन है और दुनिया का सबसे यंग वर्कफोर्स भी हमारे पास मौजूद है। इसी ताकत के सहारे उत्तर प्रदेश को

0: ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना है। श्री योगी ने कहा कि विगत 9 वर्षों में सरकार ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट से जोड़कर एक नई इंडस्ट्रियल स्टोरी लिखी है।
1: कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाला कोई सेक्टर है तो वह ये वस्त्र उद्योग का सेक्टर है। पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी समृद्ध विरासत को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़कर एक नई इंडस्ट्रियल स्टोरी लिखने की व्यवस्था भी यूपी के अंदर हम लोगों ने तैयार की है।
0: इस दौरान उन्होंने यूपी टेक मित्र पोर्टल लॉन्च करने के साथ हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में टेक्सटाइल सेक्टर में 5,196 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों के एमओयू साइन किए गए। इसके साथ ही 163 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ कंफर्ट और 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी का वितरण किया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से कल वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अभियान की शुरुआत करेंगी। पेश एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन, दीप प्रज्वलन, लाभार्थियों के अनुभवों पर आधारित वीडियो प्रदर्शन तथा केंद्रीय मंत्री और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पोषण मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। यह अभियान पूरे सितम्बर माह में देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, पंचायतों और घरों में सामुदायिक भागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण और प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी से मनीष सिंह के साथ समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में यूपी स्टार्टअप संवाद 3.0 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम विचार से अवसर तक, नवाचार से निवेश तक और प्रतिभा से उपलब्धि तक की यात्रा को गति देने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज का भारत बदल रहा है और स्टार्टअप आज के समय की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि इनोवेशन को केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में भी इनोवेशन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा रहा है। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य रहे मोहसिन रजा को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। इसके साथ ही 8 सदस्य भी नामित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आज इस संबंध में पत्र जारी किया गया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहसिन रजा और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। प्रदेश भर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जौनपुर, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर सहित कई जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर देहात में जिला जज रविन्द्र सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को रवाना किया। प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने लोगों से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने वादों का निस्तारण कराने की अपील की।
3: लोक अदालत में ऐसे वाद जैसे वैवाहिक वाद होते हैं, बैंक वसूली ऋण वाले मुकदमे होते हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल और किसी भी तरीके के सिविल वाद या शमनीय वाद जो होते हैं, जो सुलह समझौते से निपट सकते हैं, उसके लिए बिना किसी अधिवक्ता शुल्क, बिना न्याय शुल्क के जनता सुबह 10 बजे से 5 बजे तक न्यायालय आ सकती है।
0: राजधानी लखनऊ सहित आज प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में

0: कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रदेश में 26 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अब तक 6,83,000 से अधिक लंच पैकेट और 1,11,000 से ज्यादा बाढ़ राहत किट जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा चुके हैं। वहीं 19,496 प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बदायूं और बलिया में गंगा नदी, शाहजहांपुर में रामगंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या तथा तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फर्रुखाबाद में गंगा के बढ़े जलस्तर के चलते कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
1: कल रात को भी कुछ कटान हुआ है, टोटल 38 जो घर हैं गांव में कटे हैं, तो उसी के संदर्भ में कुछ लोगों को यहां से बाढ़ छटाने में मोबिलाइज किया गया है और जो दूसरे मजरे में हैं उनको राहत किट का वितरण किया गया और मेडिकल कैंप भी लगवाया गया है वहां पर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 12,000 रुपये और सहायिकाओं का 6,000 रुपये प्रतिमाह करने का किया ऐलान। 5,00,000 रुपये तक कैशलेस इलाज की भी मिलेगी सुविधा। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ। 5,196 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के किए गए एमओयू। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल वाराणसी में करेंगी 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित यूपी स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, बदलते भारत में स्टार्टअप आज के समय की जरूरत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
3: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे, और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
3: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
2: दादी, हाँ, आपके नाम?
4: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो। क्या
4: RBI कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
7: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थे पंकज उदास और साथी। फिल्म थी नाम, गीतानंद बख्शी कथा, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को, शब्द रचना समीर की, संगीत निर्देशक नदीम श्रवण, फिल्म का नाम बरसात।

ये थे सोनू निगम और अलका याग्निक, फिल्म थी दिल ने फिर याद किया। गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे आदेश श्रीवास्तव। और आइए सुनते हैं अलका याग्निक, एला रोण और साथियों को। फिल्म है नाजायज, गीत माया गोविंद का, संगीत निर्देशक अनु मलिक।

इससे में आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला फिल्मी गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस बुधवार दिनांक 9 सितंबर 2026 को शाम 6:50 से 30 मिनट की अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार का विषय रहेगा खरीफ की फसलों की उचित देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, कृषि वैज्ञानिक KVK मथुरा। किसान भाइयों, खरीफ की फसलों जैसे धान, बाजरा, मक्का, कपास, दलहनी एवं तिलहनी फसलों में लगने वाले रोग एवं कीड़ों से बचाव के उपाय और खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं खाद उर्वरक की व्यवस्था पर जैसे मुद्दों पर पूछिए सवाल। हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, कृषि वैज्ञानिक KVK मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा हमारे मोबाइल नंबर 9412-2255-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं।

हैं। कार्यक्रम का समय रहेगा कल बुधवार शाम 6:50 से लेकर 7:20 तक। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई और अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

ये थे कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़। फिल्म थी लव 86, गीत SH बिहारी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, गायक स्वर किशोर कुमार और अलीशा चुनॉय के, फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया।

ये थे अनुराधा पौडवाल, मनर उदास, सुखविंदर सिंह और साथी। फिल्म थी कर्मा, गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

संवेद स्वरों में अभी आपने सुनी कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त। पहले सुनिए इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में गाया ये गीत।

0: ये थे मोहम्मद रफ़ी। इसी गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी मेरे हमदम मेरे दोस्त। इस फिल्म के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।
1: कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
2: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35

0: हजार करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के तीन प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के तीन गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
4: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 273 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
2: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
3: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंग क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने

पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया, कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: From chips to ships, India is now building a new manufacturing future. He said that a complete self-reliant supply chain has been forged within the country, spanning high-tech electronics to heavy maritime shipping.
1: अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा

0: And that is all in the news at 9. Good night.
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने।

ये थे मोहम्मद रफ़ी और मुकेश। फिल्म थी समझौता। गीत वर्मा मलिक का था, संगीत निर्देशक थे कल्याण जी, आनंद जी। और आइए अब सुनते हैं दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के स्वरों में, शब्दकार समीर, संगीत निर्देशक नदीम श्रवण।

कसम तेरी कसम, इस फिल्म का गीत अभी आपने अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वरों में सुना। गीत संगीत का था, संगीत निर्देशक थे नरेश शर्मा। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की

0: Manthan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त भारत की आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंथन। आज का हमारा विषय बेहद गंभीर भी है और वह देश के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ भी, नशा मुक्त भारत, भारत का 3 वर्षीय एक्शन प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ अगले 3 वर्षों के लिए एक व्यापक रोड मैप सामने रखा है। इस योजना में ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई से लेकर अवैध ड्रग लैब को खत्म करने, फरार आरोपियों को भारत लाने, नशे की मांग कम करने और डी एडिक्शन सेवाओं को मजबूत करने तक कई पहल शामिल हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं SPYM यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार। मंथन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: थैंक यू श्रेया जी।
2: डॉक्टर राजेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए अगले 3 वर्षों का एक स्पष्ट रोड मैप भी तैयार किया गया है, आप के तौर पर इस लक्ष्य को किस तरह देखते हैं और क्या 2029 तक नशा मुक्त भारत एक व्यवहारिक लक्ष्य है और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है?
3: ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अच्छी बात यह है कि इसको उन्होंने मिशन मोड में लिया है और जो जो इस पे कॉन्टूर्स में जो इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है उन्होंने डाला है, से इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, बाहर से जो क्रिमिनल्स हमारे जो ड्रग इंडिया में लेकर आते हैं उनको पकड़ के लाना है, ट्रीटमेंट सेंटर स्टार्ट करना है, वॉलंटियर्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और ये अगर मिशन मोड में सारे मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स अगर जुड़ेंगे तो थोड़ा चैलेंजिंग तो है नेक्स्ट 3 ईयर्स में पूरे देश को नशा मुक्त करना, मगर कंफर्टेबली अचीव हो सकता है, मगर 29 तक नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, चूंकि मैं पिछले लगभग 40 सालों से इस सेक्टर में काम कर रहा हूं, मगर एटलीस्ट एक मिशन मोड में काम तो शुरू हुआ और वो बहुत बड़ी चीज है।
2: जी, इस एक्शन प्लान को 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित बताया गया है, वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
3: देखिये, ये चारों इम्पॉर्टेंट है, हम इसको कोई ये नहीं कह सकते ये नंबर 1 है या नंबर 2 है। नो, फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले महीने में भारत सरकार ने एक बड़ा क्रिमिनल है बुसया जिसको दुबई से लाया गया, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग विद इन द कंट्री और बिटवीन कंट्रीज ये हो रहा है और इसमें काफी पॉजिटिव अब उसका रिजल्ट दिखने लग गया। विद इन द कंट्री जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो ड्रग पुशर्स हैं, जो ड्रग कार्टेल्स हैं, उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो रही है और काफी लोग अब इस धंधे से निकल रहे हैं जैसा हमें लग रहा है। अब इसका इम्पैक्ट तो समय पे ही मिलेगा। सो पहला जो है वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग, दूसरा इम्पॉर्टेंट है जिसको कहते हैं वो जो प्रीकर्सर एंड केमिकल ड्रग्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, जो केमिकल ड्रग्स है, दो तरह के ड्रग होते हैं, एक होता है जो नेचुरल ड्रग होता है जैसे गांजा है, भांग है, अफीम है, कोकीन है, ये सब नेचुरल ड्रग है, इसको नार्कोटिक्स ड्रग कहा जाता है, और जो केमिकल ड्रग है उसको साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो केमिकल ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली विद इन द कंट्री वो अवेलेबल है, तो उसको अगर आप जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं जो बना रहे हैं केमिकल्स उसके ऊपर निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से ही कुछ ऐसे केमिकल पदार्थ निकलते हैं जिससे जैसे फॉर एग्जांपल अफीम को प्रोसेस करने के लिए जिन केमिकल की जरूरत होती है वो भी हम ही बनाते हैं, और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे मेथामफेटामिन टाइप के जो केमिकल ड्रग्स हैं उसको भी बनाने के लिए केमिकल्स हम ही बनाते हैं। तो प्रीकर्सर्स को भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है जिससे कि वो ड्रग नहीं बन पाए जो अभी बाजार में अवेलेबल।

0: है, और जो केमिकल ड्रग्स हैं वो भी नहीं बन पाए, जो अभी नया ट्रेंड पिछले 4-5 सालों से शुरू हुआ है। तो जो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो पिलर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो यंग पॉपुलेशन है, ये अब चूंकि ये स्टिमुलेंट टाइप का ड्रग है जो लोगों को अच्छा लगता है अगर इस तरह का ड्रग लेते हैं, फिर बाद में बहुत परेशानी होती है, इसका इलाज भी मुश्किल है, जो केमिकल ड्रग्स हैं, जो मेथ टाइप के ड्रग्स हैं, एमडीएमए हैं, मगर ये ड्रग केमिकल ड्रग है और ये तेजी से फैल रहा है, तो इसके लैब्स को भी रोकने की जरूरत है, और उसके ऊपर काफी कार्रवाई पिछले 1 सालों में मैंने देखा है।
1: जी, जैसा कि हम बात करते हैं ड्रग्स की, तो डिमांड और सप्लाई दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें समझ में आते हैं। तो आपके हिसाब से क्या सिर्फ सप्लाई रोकना काफ़ी है? क्योंकि क्या भारत को अब ड्रग्स पकड़ने के साथ साथ अगर हम देखें तो ड्रग्स की मांग क्यों पैदा हो रही है, इस सवाल पर भी उतना ही गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है?
0: देखिए, आपने सही बोला, ये डिमांड एंड सप्लाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सप्लाई है तो डिमांड जनरेट होता रहता है, और अगर सप्लाई कम हो रहा और डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाता है, तो फिर सप्लायर नए तरीके से मार्केट में आता है ना। फॉर एग्जांपल, नार्कोटिक्स ड्रग की जगह अब जो केमिकल ड्रग्स आ रहा है, उसका कारण यही है कि नार्कोटिक्स ड्रग को सप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, काफी उसके ऊपर रोकथाम है, जो केमिकल ड्रग्स है उसको बनाना आसान है, और केमिकल ड्रग चूंकि मार्केट में आ रहा है और डिमांड है, तो उसके लिए नया नया कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है। कभी हो सकता है सप्लाई रिडक्शन पे ज्यादा हमें सफलता मिल सकती है, और कभी हो सकता है डिमांड रिडक्शन पे ज्यादा सफलता मिलती है, मगर दोनों को एक साथ लेके चलने की जरूरत है, और भारत सरकार ने, इसके अलग अलग मंत्रालयों ने इसके ऊपर काफी काम करना शुरू कर दिया है।
1: सिंथेटिक ड्रग्स और नए तरह के नशीले पदार्थ तेजी से चिंता का विषय बन चुके हैं। आपके अनुभव में युवाओं को इन पदार्थों से दूर रखने के लिए स्कूल, विश्वविद्यालय, परिवार और सरकार, इन तीनों स्तरों पर क्या काम करने के लिए आवश्यकता है मतलब बना सके?
0: देखिए, अच्छी बात यह है कि 99% बच्चे नशा नहीं करते हैं, और वो फैक्ट है, अलग अलग डेटा में वो दिखता भी है। दूसरी अच्छी बात यह है कि अधिकतर बच्चे अब स्कूल में हैं, तो स्कूल बेस्ड अभी भारत सरकार ने एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है नवचेतना। इसमें लगभग 10 लाख मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन हो रहे हैं, और वो 10 लाख 20-20 टीचर्स को ट्रेन करने जा रहे हैं, और ये प्रोसेस शुरू हुआ है,
1: जी
0: और इसका भी इनिशिएटिव माननीय अमित शाह जी ने लिया था, और ये प्रोग्राम स्कूल बेस्ड है, टीचर लेड है, तो ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। दूसरा इनिशिएटिव होना चाहिए घरों के अंदर। परेशानी यह है कि अधिकतर माँ बाप को पता नहीं है कि मेरा बच्चा नशा करने लग गया या नशा में अब वो लिप्त हो रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है,
1: जी
0: तो माँ बाप को भी सजग होने की जरूरत है।
1: सरकार ने देश में डी एडिक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाकर 1751 करने की बात कही है। आपके अनुसार इलाज और पुनर्वास को और प्रभावी बनाने के लिए किन-किन स्तरों पर सरकार का फोकस जरूरी है?
0: ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी तक जो नंबर ऑफ सेंटर्स अवेलेबल थे मेरे ख्याल से 500 के आसपास था, और देश बहुत बड़ा है, और एक जो भारत सरकार का आंकड़ा है जिसको एम्स ने स्टडी किया था, उसमें करीब 6 करोड़ लोग हैं जिनको आज इलाज की जरूरत है, तो ये अगर नंबर बढ़ा है 1000 जो भी आप नंबर बता रही है 751,
1: जी
0: अगर ये हो रहा तो ये सब वेरी पॉजिटिव स्टेप। समस्या दो है। पहली समस्या ये है कि लोग इलाज के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने परिवारजन को ट्रीटमेंट तक नहीं लेके जाना चाहते हैं, और उसमें स्टिग्मा एक बहुत बड़ा कलंक, एक बहुत बड़ा बैरियर है, तो सरकार को भी चाहिए, परिवार को भी चाहिए कि इस स्टिग्मा को एड्रेस करें, क्योंकि होता यह है कि अगर फादर को पता चला या मदर को पता चला कि मेरा बच्चा नशा लेता है, तो वो उसको छिपाते हैं, जब वो छिपाते हैं तो धीरे धीरे वो समस्या और बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि घट रहा है, और दूसरी बाय द टाइम उनको पता चलता है कि हाँ अब इसको इलाज के ले जाने की जरूरत है, तब तक शायद वो बच्चा इलाज के लिए अब तैयार नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टिग्मा को घटाने की जरूरत है। दूसरा, जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स खुले हैं वहां पे जो स्टाफ है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। देखिए, ट्रीटमेंट का 4 फेज होता है। पहला फेज जिसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशन का फेज, तो उसमें परिवार और काउंसलर्स की भूमिका होती है, टीचर्स की भूमिका होती है कि आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ। दूसरा फेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिटॉक्स का फेज। डिटॉक्स का मतलब जिसमें उसकी जो टूटन है, उसका जो विड्रॉल है, उसको मैनेज किया जाता है। तीसरा है रिहैबिलिटेशन का फेज। रिहैबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब है कि जब वो नशा करना शुरू किया था उसके पहले उसका जो लाइफ स्टाइल था वो वापस लाइफस्टाइल उसको मिलना चाहिए और अटेंड करना चाहिए, तभी तो वो वापस सोसाइटी में और परिवार में रीइंटीग्रेट होगा। और चौथा उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी सपोर्ट, कि जब वो उसका इलाज हो गया, इलाज होने के बाद

0: उसकी मदद करनी चाहिए कि वो रिलैप्स नहीं करे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो सरकारी जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स बन रहे हैं उसमें जितने भी हर लेवल के जो स्टाफ है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। और अमित शाह जी ने अपने वो जो चौथा स्तंभ है क्षमता निर्माण है वो यही एग्जैक्टली, मतलब सप्लाई रिडक्शन में भी क्षमता निर्माण होना चाहिए और ड्रग ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन में भी क्षमता निर्माण होना चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें दो और मैं छोटी बात कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा पॉपुलेशन है जिसको जो हमें दिख नहीं रहा है वो है बच्चों का पॉपुलेशन, जो बच्चे नशा करना शुरू कर दिया है, और महिलाओं का पॉपुलेशन। तो इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशलाइज प्रोग्राम हो। स्पेशलाइज प्रोग्राम का मतलब है जो बच्चों का ट्रीटमेंट है वो एडल्ट के ट्रीटमेंट से बहुत डिफरेंट होता है। और महिलाओं का ट्रीटमेंट, चूंकि वो महिलाएं निकलना नहीं चाहती और परिवार निकलने नहीं देता है कि छिपाता है, तो ये जरूरी है कि दोनों के लिए स्पेशलाइज प्रोग्राम हो।
1: जी, सरकार ने 1,00,000 नशा मुक्त मित्र बनाने का भी लक्ष्य अपने सामने रखा है। आप इस पहल को किस तरीके से देखते हैं और नशा मुक्त मित्र जो ये अभियान है इसको जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए ये किस तरह का योगदान दे सकता है?
0: देखिए, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि नशा आम बीमारियों से बहुत अलग है। और अधिकतर जो यंग बच्चे जब नशा करते हैं तो उसके संपर्क में कौन होता है? माँ बाप नहीं होते, टीचर नहीं होते हैं, उन्हीं के हम उम्र के लोग होते हैं। तो अगर वो हम उम्र वाले बच्चों को अगर हमने ट्रेन किया, उनको हमने ओरिएंट किया, एक प्रोग्राम है जिसको पीयर लेड इंटरवेंशन कहा जाता है, तो उसके माध्यम से अगर हम उन बच्चों तक पहुंचे जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिन्होंने इनिशिएट किया है कि साहब अभी हम थोड़ा थोड़ा लेना हमने शुरू किया है, तो ये जो 1,00,000 वॉलंटियर्स है, और ये 1,00,000 वॉलंटियर अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। NSS है, NCC है, माई इंडिया है, इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोग्राम भारत सरकार के चल रहे हैं उनके माध्यम से ये अचीवेबल है और ये होना भी चाहिए।
1: जी, अंत में डॉक्टर राजेश, मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि हम अक्सर नशे की समस्या को केवल कानून व्यवस्था या स्वास्थ्य का मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन इसके पीछे परिवार, मानसिक सामाजिक परिस्थितियां, बेरोजगारी, साथियों का दबाव और सामाजिक वातावरण जैसे कई कारण भी हो सकते हैं। अगर किसी परिवार का कोई सदस्य नशे की गिरफ्त में हो तो आपका सबसे पहला संदेश क्या होगा और एक नशा मुक्त भारत बनाने में एक आम आदमी या आम नागरिक आज क्या भूमिका निभा सकता है?
0: बहुत लंबा सवाल है, संक्षेप में कहना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं बताऊं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि परिवार अपने बच्चों को जाने, उनसे बात करे। आजकल बच्चे परिवार के साथ नहीं बात करते हैं, वो रील से बात करते हैं। उन्होंने कुछ अगर सोशल मीडिया पे डाला और अगर उनको थम्सअप नहीं मिला तो वो निराश होते हैं, वो परेशान होते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सारा गेम डोपामिन का है। अगर उसको डोपामिन स्पोर्ट्स से मिल रहा है, डोपामिन उसको परिवार से बात करने में मिल रहा है, अपने दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात करने में मिल रहा है, तो उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। तो इन सबसे काटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल और परिवार दोनों बच्चों को समझे, बच्चों के स्वभाव को समझे, बच्चे के बदलते हुए जो मानसिक स्थितियाँ हैं उसको समझे और उनसे बात करें।
1: जी, तो डॉक्टर राजेश, आपने हमें बड़े नशा की समस्या को सिर्फ एक कानून के नज़रिए से नहीं बल्कि रोकथाम, इलाज, पुनर्वास और समाज की भागीदारी, इन सभी पहलुओं से समझाया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू श्रेया जी।
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त भारत की आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044। मंथन।

0: का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र का योगदान है।
1: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में हम बात करेंगे क्याकिंग और कैनोइंग की उभरती हुई खिलाड़ी आंचल और भूमि सोनकर से, और हम सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो उभरती हुई खिलाड़ी क्याकिंग और कैनोइंग में, जिन्होंने प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है और भविष्य में इनकी योजना है कि पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करने की। तो आइए स्वागत करते हैं आंचल और भूमि का। आंचल, भूमि, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: आंचल, आप बताइए, आपको क्याकिंग और कैनोइंग में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुई इस खेल में जाने की?
3: सर, अभी हम बचपन से स्विमिंग करते थे तो हमारा लॉकडाउन हुआ था, तो इसकी वजह से स्विमिंग हमारा बंद हो गया था। तो फिर से हम स्विमिंग स्टार्ट कर रहे थे, तो फिर हम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम स्विमिंग की, तो
2: यूनिवर्सिटी गेम्स की।
3: हाँ, तो फिर सर उसके बाद जब हम स्विमिंग कर रहे थे तो वहाँ पे देखा तो कुछ नाव चल रही थी, क्योंकि वो पहली बार देखा था, ऐसा कभी गेम सुना भी नहीं और पहली बार देखा था। तो फिर वो गेम देख के लगा कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम स्विमिंग पूरे 12 महीने नहीं कर सकते, ठंड आ जाती है। फिर हाँ हुआ कि ये गेम करना है, अच्छा लग रहा था देखने में। फिर गए, बगल में ही था जस्ट बोट क्लब प्रयागराज है कीड़गंज के पास, तो वहाँ पर गए हम। वहाँ कोच थे धवन सर, तो उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो उनसे हमने बात की, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट डे से आना, तो फिर हमने वहाँ पे ज्वाइन किया।
2: वहाँ से आपकी शुरुआत हुई?
3: जी सर।
2: तो जैसा कि आंचल ने बताया कि शुरुआत आप लोगों ने स्विमिंग से की थी, तो स्विमिंग कहाँ आप करती थी? भूमि, स्विमिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्या शौक से करती थी या सीखने के लिए करती थी, तो कौन लेके गया आपको स्विमिंग के लिए?
4: मेरे फादर का नाम मिस्टर राजा बाबू सोनकर है, वो हमें शुरू से ही मतलब गेम में डालना चाहते थे, क्योंकि गेम में जितना हम लोग जाएंगे उतना ही खुल के रहेंगे। तो उन्होंने हम लोगों को पहले टैकांडो सिखाया था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें उसे छोड़ना पड़ा। हम जब 5 साल के थे और ये 7 साल की थी, तब हमने टैकांडो किया था, तो फिर येलो बेल्ट करके हमने छोड़ दिया था। फिर 1 साल तक घर पे बैठे थे, कोई गेम नहीं, बस पढ़ाई कर रहे थे। फिर पापा मेरे रोज गंगा जी जाते हैं नहाते, तो उन्होंने देखा था कि हाँ वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उन्होंने एक सोचा कि हम लोगों को कराते, तो एक दिन वो ले करके गए, बस दिखा करके आ गए। फिर उस दिन संडे था, उस दिन ऑफ था, हमें कुछ पता नहीं था। फिर अगले दिन हम खुद से गए, ये लगा था कि शौक के लिए कर रहे हैं। फिर स्कूल में गए तो पता चला कि हाँ एक कॉम्पिटिशन वगैरह होता है। फिर स्कूल स्टेट खेला, उसमें अच्छे रिजल्ट आए, मतलब पहली बार गए तो मेडल आए अच्छे खासे। फिर दूसरी बार 10th में गए, उसमें भी मेडल आए, लेकिन जब 11th में खेलने की बारी आई तो लॉकडाउन लग गया, तो वहीं पे सब चीज रुक गई।
2: लॉकडाउन के बाद आप लोग
4: 2 साल एकदम रुक गया था,
2: 2 साल कुछ नहीं किया,
4: कुछ नहीं, घर पे ही थे,
2: पढ़ाई की है।
4: हाँ, फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारा 12th कंप्लीट हुआ। 12th के बाद हम कॉलेज में एडमिशन भी लेना था, ये था कि स्विमिंग से अपना करेंगे आगे का, लेकिन स्विमिंग का ना यहाँ कोई फैसिलिटीज थी, कोई स्विमिंग पूल नहीं था, स्विमिंग का कोई अच्छा कोच नहीं था, बहुत उसमें प्रॉब्लम थी। तो फिर बस हमने कैकिंग कैनोइंग ज्वाइन किया।
2: अच्छा, और भूमि, आप दोनों सगी बहने हैं, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? क्या कोई परिवार में पहले से स्पोर्ट्स में था, या फिर आप लोग ही पहले शख्स हैं जो इस फील्ड में जा रहे हैं?
4: सर, अभी तक मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, और जहाँ से सर हम बिलोंग करते हैं वहाँ से ऑलमोस्ट कोई भी नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पे बस्ती है।
2: आपके पिताजी क्या करते हैं?
4: हमारे पापा अभी चाय की दुकान है।
2: आपके पिताजी की चाय की दुकान है, वो अशिक्षित हैं, फिर भी उन्होंने ये योजना बनाई, ये प्लान किया और ये प्रेरणा दी आप लोगों को कि आप लोग आगे बढ़िए, स्पोर्ट्स में आगे बढ़िए, पढ़ाई लिखाई भी, लेकिन खेलकूद में आगे बढ़ने का अवसर दिया। आपको स्विमिंग के लिए ले गए गंगा जी में, जहाँ पे आपको किसी ने सिखाया और आपने उस समय शौक के लिए ही स्विमिंग सीखनी शुरू की, और कोविड के बाद आप लोग क्याकिंग और कैनोइंग में आए। तो वहाँ पे आपके कोच कौन थे, कैसे आप लोगों ने सीखना शुरू किया, और शुरुआत में क्या क्या मुश्किलें आई आप लोगों को?
4: पहले तो हम स्विमिंग में स्कूल स्टेट खेले थे, तो इतना कुछ जानते नहीं थे। क्याकिंग कैनोइंग में जब आए तो हर चीज एकदम नया था, मतलब वो ऐसा गेम था कि आज तक न देखा था और न ही तो सुना था, पहली बार देखा भी था, पहली बार सुना भी था। बस वो भी लग रहा था कि ऐसे शौक से होगा, ठंडी में छुट्टी होगी, लेकिन ये गेम में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ असल में अब हम गेम में आए हैं। वो तो स्कूल स्टेट था इसलिए उतना कुछ लगा नहीं, फिर इधर जब आए तब गेम का अहमियत पता चली कि गेम क्या होता है। एक खिलाड़ी हम अगर बने तो क्या किंग कैनोइंग से बने, एक एथलीट हम अपने गेम से ही बने। बस स्विमिंग एक जरिया था हम लोगों को इस गेम तक पहुंचाने के लिए,
2: स्विमिंग माध्यम था जो आपको लेके गया कैकिंग और कैनोइंग में। तो आंचल ये बताइए कि जब आप लोगों ने कैकिंग और कैनोइंग शुरू की

0: आप लोगों ने क्याकिंग और कैनोइंग शुरू की, तो उसमें एक K1 होता है जिसमें एक ही प्लेयर पैडल करता है, और K2 होता है जिसमें दो होते हैं। तो आप लोग क्या शुरुआत में ही साथ में किया करते थे, K2 ही किया करते थे, कि शुरुआत में K1 और उसके बाद में फिर आपने टीम बनाई दो लोग मिलकर K2?
1: नहीं सर, हम जब ये गेम ज्वाइन किए थे तो इसमें एक बोट में क्या होता है कि हमें पहले बैलेंस बनाना पड़ता है, उस टेक्निक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
0: तो वो अकेले करते थे?
1: हाँ, तो कोई भी बच्चा होगा वो उस गेम में जो जो भी जाएगा तो उसमें उसको अकेले प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब उसकी बोट बैलेंस हो जाएगी, बोट चलने लगेगी, तब वो डबल और फोर पे बैठ के पैडल चलाता है।
0: तो आप
1: डबल
0: लोग K1 में भी करती हैं, K2 में भी करती हैं, तो पहली ऐसी कौन सी प्रतियोगिता थी जिसमें जाके आप लोगों ने कोई मेडल जीता हो या कुछ ऐसा सीखा हो जो आप लोगों को लगा हो कि नहीं, हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं?
2: हम लोग ने अगस्त 2022 में गेम ज्वाइन किया था, तो और फिर नया नया गेम था उस समय, एक खिलाड़ी की तरह शरीर में इम्यूनिटी भी नहीं थी, तो बीच में ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर दिसंबर 2022 में हमने अपना पहला नेशनल खेला था जो कि भोपाल में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि हम पांच लड़कियां थी, तो मैं अकेले गई थी, K1 से खेला था हमने और इन्होंने K4 से खेला था। उस समय खेलो इंडिया हुआ था, तो हम गए थे K1 से खेलने, मेरी 200 मीटर की रेस थी, तो उसमें पलट गए थे। तो पलटने के बाद उसमें काफी लोगों ने ऐसा कमेंट पास किया, तो फिर वो चीजें बहुत ज्यादा हो गया कि हम उस समय मेरी बोट इन चारों से थोड़ी सी सही चल रही थी, लेकिन फिर भी हम पलट गए थे। तो उस चीज को लगा कि ये चीज गलत है, तो अब गेम पे ध्यान देंगे।
0: वहां से आपको जो
2: सबक
0: सीखने
2: ये,
0: को मिला,
2: हाँ,
0: सबक मिला, उसके बाद आपने मेहनत और ज्यादा करनी शुरू की और इसको ज्यादा सीरियसली, ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। तो आंचल, आपको कब लगा कि भूमि तो अच्छा कर रही है, भूमि तो अब ज्यादा सीरियसली, ज्यादा गंभीरता से ले रही है, तो क्या आपने भी तभी से गंभीरता से लिया या आपने उस समय शौक से ही लिया?
1: सर उस टाइम तो हमारी वो जब खेलो इंडिया हुआ था तो उस टाइम हमारा बैलेंस था, हम ढंग से पैडल भी नहीं मार पाते थे। तो फिर उसके बाद खेलो इंडिया खेल के आए, यूपी को फाइनल में पहुंचाया था, उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट किया फाइनल में यूपी को। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हुआ, स्टेट हुआ, उसमें फिर गोल्ड आने चालू हुए। मेरा बैलेंस बहुत लेट से बना था बोर्ड पर, उसमें सबसे मुश्किल वर्क होता है बैलेंस बनाना
0: बैलेंस
1: बोर्ड
0: बनाना
1: पर।
0: जैसा कि भूमि ने बताया कि वो उस प्रतियोगिता में अच्छा तो खेल नहीं थी, लेकिन अचानक से उनकी बोट पलट गई, यानी कि बैलेंस आपका गड़बड़ हो गया। तो आप लोग बहने जब साथ में करती हैं, मैं जानना चाहता हूँ K2 में, जब K2 में आप लोग साथ में पेडल करती हैं, तो क्या आपस में थोड़ा सा लड़ाई होती है कि तुम ठीक से नहीं चला रही हो, तुम ठीक से नहीं चला रही हो?
2: हाँ सर, होती है बहुत हद तक। सर शुरुआत में तो बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि जो अपना K2 पार्टनर होता है या भी कोई भी अगर अपना पार्टनर होता है, तो हम लोगों का माइंडसेट एक होना चाहिए, एकदम एक, कि अगर एक आगे वाला क्या सोच रहा है पीछे वालों को बिना बताए पता चल जाए, इतना ज्यादा माइंडसेट एक होना चाहिए। तो एक बार की तो ये चीज हुई नहीं सर। फिर हम K1 करते थे सर, K2 बस हमने ऐसे चलाना शुरू किया, लेकिन हमारा ऐसा कुछ था नहीं कि हम साथ में K2 चलाएंगे, बस ऐसे उतारा एक दिन K2, वो सही चलने लगी, सही चलते चलते कॉम्पिटिशन करते करते एक एक्सपीरियंस मिलने लगा, और सर हमारा 3 साल के बाद मेडल पड़ना शुरू हुआ था।
0: पहला मेडल कब मिला आपको?
1: दिसंबर 2025 में नेशनल में आया था, खेलो इंडिया में।
0: खेलो इंडिया में उसमें आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला 200 मीटर में।
1: जी सर।
0: तो जैसा कि आपने बताया, K2 में सबसे जरूरी है कि आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय बना के रखना, क्योंकि घर में भी आप लोग साथ रहते हैं तो घर में भी एक समन्वय बना के रखना पड़ता है, और खेल में भी आप लोग साथ हैं, तो इससे आपको एक सहयोग मिल जाता होगा, एक एडवांटेज मिल जाता होगा साथ में खेलने का, क्योंकि कोई और खिलाड़ी बाहर से आता, किसी और डिस्ट्रिक्ट से आता, तो आप समन्वय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता क्योंकि आप लोग साथ रहती हैं। अब मैं भूमि आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि क्योकिंग और कैनोइंग, ये इस खेल के बारे में लोग कम जानते हैं, और इस खेल में जो प्रशिक्षण के अवसर भी हैं प्रयागराज में कम है, बहुत कम खिलाड़ी होंगे, गिनती के खिलाड़ी होंगे जो आप लोगों के साथ प्रशिक्षण ले रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो यहाँ कहाँ पे सीखती हैं, आपके कोच कौन है, और कितनी सुविधाएं हैं, कैसा लगता है आप लोगों को वहाँ पे?
2: यहाँ पे हमारा बोट क्लब है प्रयागराज, जो ये चौखंडी पे अपना सर, वहाँ पे हमने जब ज्वाइन किया था, हमारे बोट में क्या होती है, जो यहाँ पे बोटे हैं वो कार्गो है,
0: कार्गो,
2: और जिससे हमारा कॉम्पिटिशन होता है वो नैलो है। और सर हमारा गेम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, हमारी केवल पैडल ही 50 से 60 हजार की आती है, और बोट तो और ही ज्यादा आती है, नैलो अपनी आती है लैक्स 2 लैक्स में, तो सर अपने पास नहीं है वो। सर हम 3 साल से यहाँ पे इसीलिए पीछे थे क्योंकि सर अपन यहाँ पे कार्गो चलाते थे, और वहां जाके नैलो एक बार की इतनी अच्छी नहीं चलती जितना अपना कार्गो चल जाता है, इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते थे। और सर यहाँ पे पैडल भी है लेकिन कम है, बच्चे अगर 50 है तो पैडल 10 है, तो सर अपने पास फैसिलिटीज भी कम थी, बस बच्चे मेहनत करते थे, मेहनत से भी थोड़ा तो हम लोग पीछे हो जाते थे। क्योंकि अपने गेम में डाइट भी बहुत ज़्यादा रहता था, डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट है, रिकवरी का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे घर पे

0: एम करते हैं सर, वो उतना अच्छा डाइट तो ले सकते हैं सर, लेकिन जहाँ तक रिकवरी नहीं ले सकते सर, इसलिए गेम में थोड़ा सा अपने को रिकवरी भी चाहिए और डाइट भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए और सर फैसिलिटीज भी चाहिए।
1: तो आप लोगों को अभी डाइट रिकवरी या फिर जो प्रशिक्षण है वो कहाँ आप कर रही हैं अभी फिलहाल?
0: सर अभी तो हम भोपाल में कर रहे हैं, हमको 1 साल हो गया, और सर भोपाल में ये हमारे कैकिंग कैनोइंग का एक तरीके से हब है,
1: अच्छा,
0: वहाँ के ऑल इंडिया के प्लेयर जो अपने स्टेट में नहीं कर पाते अच्छा, वो हमारे क्लब पे आते हैं, मतलब भोपाल पे आके प्रैक्टिस करते हैं।
1: तो अभी आप लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ सारी सुविधाएं आपको मिल रही
0: जी
1: हैं,
0: सर।
1: और जैसे आपने बताया कि यहाँ पेडल्स कम थे, आपको कार्गो बोट्स मिलती थी, वहाँ पे अलग बोट्स होती थी,
0: नैलो बोट।
1: नैलो बोट्स, तो वहाँ पे वो बोट्स मिल रही
0: हाँ
1: हैं,
0: जी सर।
1: वहाँ पे आपको कोचेस भी अच्छे मिल रहे होंगे,
0: हाँ
1: सारी सुविधाएं मिल रही होंगी, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे होंगे।
0: वहाँ पे एक खुद का एसोसिएशन है।
1: अच्छा, ये एसोसिएशन है, तो आप लोग एसोसिएशन ज्वाइन की होंगी तो वो आपको ये ट्रेनिंग दे रहे होंगे। तो आंचल, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप पहली बार भोपाल में गई होंगी, आप लोग यहाँ से वहां पे जाने के बाद आपको क्या अंतर महसूस हुआ कि जो यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा था वहां आपको मिल रहा है, तो आपको क्या लगा कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ और ज्यादा मेडल्स अचीव कर सकती हूँ?
0: सर एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ा चीज होना चाहिए इन्वायरमेंट, क्योंकि हम जहाँ पे अभी प्रयागराज में गेम करते हैं सर, केवल हम ही बच्चे हैं सर, बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो 50, लेकिन जहाँ सर हम भोपाल में आज प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे सर कम से कम 500 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। उसमें कुछ जॉब वाली टीम है, जैसे कि सर्विसेस है, SSB है, CRPF है, BSF है, और इंटरनेशनल प्लेयर भी वहीं प्रैक्टिस करते हैं, और भोपाल में इंटरनेशनल कोचेस भी हमें प्रैक्टिस कराते हैं।
1: वहाँ आपको सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती हैं और कंपटीशन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल लोगों के साथ खेलेंगे तो आपके खेल में और निखार आएगा। खेल से अलग हम बात करते हैं अब आंचल, पढ़ाई में आपका क्या है अभी, आपको कौन सा विषय पसंद है, अभी आप क्या कर रहे हैं?
0: सर अभी तो हम BA कर रहे हैं, अभी हमारा BA फर्स्ट ईयर चल रहा है इसलिए सर, लेकिन आगे हमें BPED करना है।
1: BPED करना है, और पढ़ाई में कौन सा विषय ऐसा है जो आपको ज़्यादा पसंद है?
0: हिंदी
1: हिंदी, हिंदी साहित्य।
0: जी सर।
1: तो भूमि, आप दोनों लोग प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं कयाकिंग और कैनोइंग के, आप लोग इसी में अपना करियर बनाना चाहती हैं, इसके अलावा आप पढ़ाई में आप लोगों कितना समय दे पाती हैं? और ऐसा तो नहीं होता कि आप जब प्रशिक्षण लेके आती तो आप लोग बहुत थक जाते होंगे, तो पढ़ाई में उतना समय नहीं दे पाते होंगे, तो पढ़ाई के साथ कितना जस्टिस कर पाते हैं आप लोग?
0: सर हम सुबह उठते हैं 5 बजे, वर्कआउट जाते हैं, फिर रूम पर आते आते 10 बज जाते हैं, फिर सर ब्रेकफास्ट बना के अपना करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर सर 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो फिर सर प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, फिर रात को आते हैं 7 बजे 8 बजे तक।
1: जब वापस आते हैं तो बहुत थके होते होंगे,
0: बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि वर्कआउट कंटिन्यू चलता
1: लेकिन
0: रहता
1: इसके
0: है।
1: बावजूद भी पढ़ाई के लिए आप लोग समय निकाल लेते
0: हाँ
1: हैं,
0: सर।
1: पढ़ाई जो भी करते हैं मन से करते हैं। तो आगे आप लोगों की क्या योजनाएं हैं, नियर फ्यूचर में कौन से कंपटीशन है जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हैं?
0: सर अभी तो हमारा नेशनल गेम है, 2 से 3 महीने में हमारा नेशनल गेम आने वाला है सर, उस बार हम 1 सेकंड से चूक गए थे, तो इस
1: मेडल
0: बार
1: से
0: नहीं सर, नेशनल गेम
1: क्वालिफाई
0: क्वालिफाई
1: करने
0: करने
1: से?
0: से,
1: अच्छा,
0: तो सर वो चीज़ें इस बार रिपीट नहीं करना है, इस बार नेशनल गेम में जाना और मेडल भी लेना है उसमें सर, बाकी अपने आगे का तो इंटरनेशनल है, अपनी K2 को और बेस्ट करना है और इंटरनेशनल खेलना है।
1: तो अभी जैसे आप लोग ने कई कंपटीशन में, जैसे मैं देख रहा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 उदयपुर में, 200 मीटर्स में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप फरवरी 2026 ब्रॉन्ज मेडल 200 मीटर में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 सांगली महाराष्ट्र में जो हुआ था उसमें 3 सिल्वर K4 में आपने जीता, और इसके अलावा अस्मिता जोनल नेशनल में 2 गोल्ड 1 सिल्वर K2 में और K4 में जो छत्तीसगढ़ में हुआ था आपने जीता था, और अस्मिता नेशनल चैंपियनशिप भोपाल में 2 ब्रॉन्ज मेडल आपने K2 में जीता था। तो इन सब प्रतियोगिताओं में कौन सी ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें आपको लगा कि इसमें ज्यादा मुश्किल हुई, ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ा जीतने के लिए, सबसे मुश्किल जो लगा हो?
0: सर हमारा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप था सर, उसमें हमारा 2 इवेंट था, एक 5 किलोमीटर का और एक 200 मीटर का। 5 किलोमीटर में सर हमारी एक दिन पहले थी, तो सर उसमें हमारे साथ BSF की टीम थी, MP की टीम थी, सर्विसेज की टीम थी, तो हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए गए सर, हम मेडल पे ही चल रहे थे, सेकंड थर्ड पे चल रहे थे, स्टार्टिंग में हम फर्स्ट पे चल रहे थे, फिर सर हम सेकंड पे हो गए थे, 2 किलोमीटर की रेस होने वाली थी तब तक सर हम कैप्साइज हो गए, तो सर उस दिन तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया था कि अब आज कुछ नहीं हुआ तो कल भी कुछ नहीं होगा, सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्या करना है,
1: आप
0: इतनी
1: लोग
0: मेहनत
1: मेडल की
0: करी,
1: रेस में थी, अचानक से ही आपकी बोट कैप्साइज हो गई।
0: कैप्साइज हो गई सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम क्या होगा, सब चीज़ हिम्मत टूट गई थी कि जब हमारा मेन इवेंट था, हमने इतनी मेहनत करी, उसमें नहीं हुआ, 200 मीटर में क्या ही हुआ।

0: लेकिन सर रात तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे। फिर उस समय फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिला सर, और हमारे सर का भी, क्योंकि सर हमारा कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो गया था कि हम अगली रेस के लिए प्रिपेयर भी नहीं थे, लग रहा था कुछ नहीं होगा। फिर घर वालों का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा था, घर वालों का भी बार बार फ़ोन आ रहा था, सर भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि ठीक है जो आज ठीक है, कल का ध्यान दो, अगर आज का दिन तुम्हारा नहीं है तो क्या पता कल का दिन तुम्हारा हो। सर फिर अगले दिन हमारी पहली ही रेस थी 2 बजे, फिर सर हम उसमें उतरे थे। उसमें उड़ीसा की टीम थी, एमपी थी, और एसएसबी थी, इंडिया पुलिस थी, बहुत सारी टीम थी। तो सर हमारा उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया था
1: 200 मीटर में, केटो में
0: 200
1: आपने जीता
0: मीटर
1: था
0: में।
1: उसमें।
0: हाँ जी
1: चलिए बहुत अच्छा था, क्योंकि एक बार गिरने के बाद फिर उठ के चल देना, फिर उसमें मेडल लाना, वो बड़ी चीज है, क्योंकि आपकी बोट कैप्साइज होना आप लोगों के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली घटना थी,
0: बहुत ज्यादा सर।
1: क्योंकि जो दबाव था तो उससे निकल के आप लोग अगले दिन बढ़े और न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि आपने मेडल जीता। तो आंचल और भूमि, जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में ही बताया था कि आप लोगों को खेल के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरणा आपके पिताजी से मिली। पिताजी ने आपको सबसे पहले स्विमिंग के लिए प्रेरित किया, उन्होंने एडमिशन कराया, आप लोग सीखने लगे गंगा जी के तट पे, वहां पे तैराकी में। उसके बाद आप लोग कायाकिंग और कैनोइंग में थे, तो और कहाँ से आपको सबसे ज्यादा सहयोग मिला इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, कहाँ से प्रेरणा मिली?
0: सर हमारे पिताजी के बाद तो हमारे अभिषेक सर हैं, उन्होंने ही हमारा सब चीज़ किया। क्योंकि सर अभी मैंने बताया कि हमारा गेम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और सर हम इतने कैपेबल नहीं है उसको करने के लिए, तो अभिषेक सर ने ही पूरा पूरा साथ दिया था। और सर पेरेंट्स ने तो बस एक परमिशन दी है, बाकी पूरा गेम का हर चीज़ अभिषेक सर देख रहे हैं।
1: अभिषेक जी से मुलाकात आप लोग कैसे हुई, कहाँ उन्होंने देखा आपको खेलते हुए?
0: सर उन्हें खेलते हुए नहीं देखा था सर, वो स्कूल में हमारे आए थे हम लोगों को कुछ बताने के लिए, फिर उनसे हम लोग कनेक्ट हुए कंप्यूटर क्लास के थ्रू। तो कंप्यूटर क्लास करते करते सर को हमने एक दिन ये सारी चीज़ें बताई कि हम स्विमिंग करते थे पहले, सर ने सुना, फिर पूरी बात जानी, हमारे सर्टिफिकेट देखे, मेडल देखे, फिर सर ने बोला कि ठीक है बच्चे गेम करेंगे। तो उन्होंने बहुत ही दिन तक हमारे बारे में कोई गेम सोचा, बहुत से लोगों से राय ली कि बच्चों के लिए इंडिविजुअली कौन सा गेम अच्छा होगा, क्योंकि टीम में अगर सब अच्छे हैं तभी, लेकिन इंडिविजुअली खुद के ऊपर होता है। तो सर ने बहुत दिन तक सोचा, फिर हमने भी ये गेम देखा, समझा, सर को बताया, तो सर को ये गेम सही लगा, फिर हमने ये गेम ज्वाइन किया।
1: अभिषेक सर ने ही आप लोगों को खेल को चुनने के लिए प्रेरित किया और सहयोग कर रहे हैं, आपको प्रेरित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। जैसा कि आपने बताया, जब आपकी बोट कैप्साइज हो गई थी तो शाम को भी उन्होंने फोन करके बोला था कि कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से आप प्रयास कर सकते हैं, अगला दिन आपका होगा।
0: जिस दिन हम कैप्साइज हुए थे सर उसी समय वहां पे मौजूद थे।
1: अच्छा, अभिषेक जी साथ में थे आपके?
0: हाँ, फिर उनकी उसी दिन ट्रेन थी, अगले इवेंट में वो हमारे साथ नहीं थे, तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर में कॉल कर रहे कि तुम लोग घबराना मत, कल के लिए प्रिपेयर रहो, कल के लिए प्रिपेयर रहो, डाउन मत हो, तुम लोग कर लोगे, आज खराब गया कल अच्छा होगा, तुम लोग कर लोगे कर लोगे। फिर हम लोग ने अगले दिन किया।
1: आंचल और भूमि, आप लोगों ने इस खेल में अभी तक काफी कुछ अचीव किया है, काफी उपलब्धियां रही हैं आपकी जो हमने अभी तक चर्चा की, लेकिन आगे भी आपको बढ़ना है। आपको न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है, लेकिन इस खेल में प्रयागराज से ही और कई छोटे शहरों से कई नए खिलाड़ी भी आ रहे होंगे, कई नए खिलाड़ी हैं जो आपको सुन रहे हैं, चाहते होंगे कि आपकी तरह वो भी इस खेल में आगे बढ़े, तो उनके लिए आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: सर बस एक तो यही मैसेज जाएगा कि एक लड़की के लिए गेम करना बहुत टफ होता है, बट उसको करना चाहिए, जैसे कि वो घर में रह के लड़ती है अपने आप से, उसको बाहर दुनिया से लड़ना चाहिए ताकि वो एक अच्छी नारी बन सके। और आज तो लड़कियां चांद पे पहुंच रही हैं, प्लेन चला रही हैं, देश के लिए लड़ रही हैं, तो फिर हम तो अभी एक एथलीट है, तो हम देश का मान बढ़ा सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात कही आंचल आपने, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में, खासकर क्योकिंग और कैनोइंग जैसे खेल में, जैसा कि आपने बताया भी कि काफी महंगे खेल हैं, इसमें इस पृष्ठभूमि के लोग कमतर, जो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनके लिए अवसर कम उपलब्ध हैं, और खासकर लड़कियां जिनको माना जाता है कि वो अभी काफी पीछे हैं इस क्षेत्र में, वो आगे बढ़े, वो आप लोग देख के प्रेरित हों और अपना नाम रोशन करें, तो अभाव का बहाना नहीं रह जाता। तो भूमि, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
0: सबका अपना अलग अलग पैशन होता है, हमारा गेम है, किसी का कुछ और होगा, किसी का डांस होगा, किसी का सिंगिंग होगा, किसी का कुकिंग होगा, कुछ भी, हर चीज़ स्किल बेस्ट होती है अपनी अपनी जगह। बस एक ही चीज़ है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आप किसी भी फील्ड में रहो, कोई भी चीज़ करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन बस मेहनत करो, क्योंकि फील्ड चुनने से ही कुछ नहीं होता,

0: उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कि जब तक मेहनत नहीं रहेगी तो फिर वो स्किल भी किसी काम की नहीं रहेगी,
1: मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और रास्ता अपने
0: अपने
1: आप
0: आप निकल
1: बनता चले
0: जाएगा।
1: जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे आंचल और भूमि, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से निकल के आप लोग यहाँ तक पहुँची हैं, हम यही चाहते हैं कि आप न सिर्फ प्रयागराज उत्तर प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बनाएं। आप लोग हमारे स्टूडियो में आई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में खेले गए क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश पर 3-0 से जीत हासिल कर 20 वर्षों में पहली बार AFC अंडर 20 एशियाई कप के मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी के अपने आखिरी क्वालिफायर मैच में डेनेई मेतेई लैशाम ने पहला गोल, विशाल यादव ने दूसरा गोल तथा सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मोहम्मद अरबाश ने तीसरा गोल किया। AFC अंडर 20 एशियन कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में आयोजित किया जाएगा। बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को 11-21, 21-23 और 21-27 से हराकर चाइना मास्टर्स में भारत का पहला खिताब हासिल किया। दुबई में खेले जा रहे महिला T20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की टीम 18.1 ओवर में मात्र 55 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से युवा स्पिनर श्री चरनी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 8.4 ओवर में निर्धारित लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शूटिंग स्पर्धा में भारतीय टीम जापान में इस महीने के अंत में शुरू होने वाले एशियाई खेलों 2026 से पहले भोपाल स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रही है। इस दल में मनु भाकर, ईशा सिंह और ऐश्वर्य प्रताप सिंह जैसे शीर्ष निशानेबाज शामिल हैं। मेघालय में 2026 की हाफ मैराथन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 11,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। 5वीं सोहरा इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 का आयोजन मेघालय राज्य ओलंपिक संघ द्वारा किया गया। पिकलबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन 30 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक वियतनाम के दा नांग में हुआ। ICC ने महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के नए मेजबान के रूप में भारत को मंजूरी दे दी है। 6 टीमों का यह टूर्नामेंट 14 से 28 फरवरी 2027 तक मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे अर्जेंटीना के लिए उनके 20 साल के कैरियर का अंत हो गया। उनके कैरियर में 1 विश्व कप जीत, 2 कोपा अमेरिका खिताब और देश के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेलना शामिल है। 39 वर्षीय मेसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने इस फैसले की जानकारी दी। मेसी ने कहा, यह फैसला उनके लिए बेहद मुश्किल था, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में राष्ट्रीय टीम और अर्जेंटीना के समर्थकों के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य दक्षिण अफ्रीकी संघ के नेताओं के साथ किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 6ठे नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में आयोजित एशिया कप के पूल मैच में दक्षिण कोरिया को 7-3 के अंतर से हराया। क्रिकेट में दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर बनाया है। ईस्ट जोन की ओर से कप्तान ईशान किशन ने 270 रन तथा कुमार कुशाग्र ने 101 रन बनाए। US ओपन में एलेना रायबाकिना ने पूर्व US ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका को 6-1, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई।

0: टेनिस में भारत के करण सिंह ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित पुरुष विश्व टूर M15 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यह करण का चौथा और उनका 2026 सीजन का तीसरा खिताब है। हरियाणा के करनाल में रहने वाले चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में न्यूजीलैंड के पांचवी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इसाक ब्रेकऑफ को 7-5, 7-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज जिसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है, शीतल देवी ने आज तीसरे चरण के तीसरे दिन महिला कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया। भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुए सेमीफाइनल में जम्मू की तीरंदाज ने सरिता को 145-143 से हराकर स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में उनका मुकाबला कजाकिस्तान की आईजादा सिदान से होगा। सरिता के पास कांस्य पदक के मैच में चीन की वांग हुईटिंग से भिड़ने पर भारत के पदक तालिका में पदक जोड़ने का एक और अवसर होगा। इस प्रकार महिला के कंपाउंड इवेंट में भारत को एक पक्का पदक मिल गया और एक अन्य पदक अभी भी दौड़ में है, जिसमें विश्व नंबर एक शीतल शीर्ष स्थान पर नजर रखे हुए। आज के अंक में इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दर्पण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, प्रस्तुति हमारे प्रयागराज केंद्र की थी।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग रागेश्वरी में ख्याल गायन। कलाकार हैं विदुषी कृष्णा विष्ट। तबले पर इनके साथ संगत की है गुलाम साबिर ने और हारमोनियम पर हैं बाबू खां।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग रागेश्वरी में ख्याल गायन। कलाकार थी विदुषी कृष्णा बिष्ट। तबले पर इनके साथ संगत की गुलाम साबिर ने और हारमोनियम पर थे बाबू खां। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2,400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर।

0: Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening.
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है. एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है. अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदलें.
0: The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting